पवन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज़ों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। लविन शिबला फिल्म से ये गीत था। 1960 रिलीज फिल्म, इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण की लिखी रचना। मित्रों, जीवन का सबसे सुंदर एहसास है अपने देश अपनी धरती पर गौरव होना, और ये एहसास हम सभी को बिल्कुल होना भी चाहिए दिल से। हमारे भारत की संस्कृति, धरोहर, विरासत और इसके हर मौसम ऋतु पर गर्व है हमें।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना एक ही रास्ता इस फिल्म से अभी आपने सुनी। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। मित्रों, हेमंत कुमार का संगीत था मजरूह, सुल्तानपुरी की लिखी रचना। बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, कहीं सबसे खूबसूरत यादें होती हैं। उनमें अगर खटास भी भरी हो तो वो यादें भूल पाना नामुमकिन होता है। इसलिए हर बच्चे का बचपन अच्छी सुंदर यादों से सजा रहे, ये कोशिश हमारी रहे। वो कोई भी बच्चे हो, उन्हें अपनापन दीजिए।

शमशाद बेगम लता मंगेशकर के स्वरों से सजाई गीत अभी आपने सुना। नौशाद की संगीत रचना थी शकील बदायूं ने गीत लिखा था। फिल्म का नाम दीदार, जो रिलीज हुई थी वर्ष 1951 में। मित्रों, भोर काल का समय बहुत ही सकारात्मक समय भी माना जाता है, जब मन मस्तिष्क में सकारात्मकता अधिक रहती है। और वैसे भी यदि हम अपने मन से आत्म विचार हम करें तो एक आम इंसान क्या और राजा क्या, सभी अपना मन बदल सकते हैं,

आशा भोसले मन्ना जी के स्वरों से सजा ये गीत, अनिल विश्वास का संगीत, भरत व्यास की लिखी रचना, 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम अंगुलीमाल। इसी रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल श्रोता साथी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में। 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं 6:05 पर। कार्यक्रम अर्पण का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 6:10। 6:44:30 पे श्रोता साथी सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। आज अयोध्या कांड सुनवाया जाएगा भाग 11। संस्कृत में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 6:55 पर। 7 बजे हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर।

हिंदी में समाचार होंगे प्रातः 9 बजे, अंग्रेजी में 9:05 पर। साथियों, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की कुछ रूपरेखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्र मौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद

होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रावण शब्द श्रवण से बना है, जिसका अर्थ है सुनना। यह महीना आध्यात्मिक कथाएं, ज्ञान और ईश्वर का गुणगान सुनने के लिए समर्पित है। जिस प्रकार वर्षा तपती धरती को ठंडक पहुंचाती है, उसी प्रकार ज्ञान का श्रवण हमारे मन को विश्राम और शांति प्रदान करता है। महादेव हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें, इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं अर्पण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सिला साफ मोचन चरण सुमिरहु तुलसीदास, तजहु सोच संकट मिटहि पूजहि मन की आस। तुलसीदास जी कहते हैं कि सिला रूपी अहल्या को शाप से मुक्त करने वाले श्री राम के चरणों का स्मरण करो और सब चिंताओं का त्याग कर दो। इस प्रकार अनन्य चिंतन से तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे और मनोकामना पूर्ण हो जाएगी।

श्री राम के युवराज पद पाने की पूर्व संध्या। अयोध्या में बधावे बज रहे हैं और अंतःपुर में रानी कैकेयी को भवन में बैठी राजा दशरथ की गुहार सुन रही हैं। हे सुनैनी, मैं कल प्रातःकाल ही राम को युवराज पद दे रहा हूं, तुम मंगल साज सजो। कपटयुक्त प्रेम दिखाते हुए मुंह मोड़कर हंसती रानी कैकेयी बोली, कभी आपने दो वरदान देने को कहा था, किंतु अब तो उनके मिलने में भी संदेह है। निष्कलुष हृदय राजा ने अपनी तरह से रानी का मर्म समझा, हंसकर बोले, वे दोनों वर तो थाती की तरह तुमने संजो रखे हैं, कभी मांगा ही नहीं। रघुकुल में तो सदा से यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर वचन नहीं जाता। कैकेयी ने वर मांगे, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक का, दूसरा वर भी हे नाथ मैं हाथ जोड़कर मांगती हूं। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्षों तक वन में निवास करें।

0: सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। एतेषु त्रयोदश स्वर्णपदकानि, सप्तदश रजतपदकानि, नव कांस्यपदकानि च सम्मिलितानि सन्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्तपानी के पास स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में यह बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न होगी।

गोल्ड सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। पूजा है आपके साथ, सुप्रभात। आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार जयदेव को, हिंदी फिल्मों के महान संगीतकार जिन्हें उनके बेहतरीन शास्त्रीय संगीत के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। उन्हें हिंदी सिनेमा में सरल, सादगीपूर्ण और गंभीर धुनों के लिए याद किया जाता है। आइए सुनते हैं उनका संगीत बद किया ये गीत फिल्म घरोंदा से।

अब बात करते हैं मौसम की। तो आज गरज के साथ आंधी और बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। सूर्य उदय हुआ 5:42 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:10।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये पंक्तियां लिखी मैथिली शरण गुप्त ने। आज के दिन 1886 में उनका जन्म हुआ था। वे हिंदी के महान कवि थे। उन्हें खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महत्वपूर्ण कवि और दद्दा उपनाम से जाना जाता था। उनके प्रसिद्ध रचना भारत भारती से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि कहा था। सात बजकर 7:25 और 58 सेकेंड गोल्ड सुप्रभात में अब सुनते हैं बातों बातों में फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में प्रोग्राम का आखिरी गीत।
1: सुनिए
2: कहिए कहिए,
1: सुनिए
2: सुनिए कहिए कहिए ना।

0: सुप्रभात, एक नई सुबह और नई आशाओं के साथ कार्यक्रम आज सवेरे में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह हम एक बार फिर उपस्थित हैं लेकर न्यूज़ मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक देश और दुनिया के समाचार और वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं विशाल शर्मा और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। गुड मॉर्निंग शगुन।
1: गुड मॉर्निंग विशाल एंड टू आवर लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी। अ ब्रांड न्यू डे, इट्स ऑगस्ट द 3rd टुडे एंड वेल आई वांट टू स्टार्ट बिगिन विद दिस वेरी इंस्पायरिंग क्वोट, और यू कैन से दिस इज व्हाट आई वाज फीलिंग इन द मॉर्निंग, दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स वेकिंग अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज एंड इंस्पायर्ड टू अचीव आवर गोल्स एवरी डे, बिकॉज दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, आवर गोल्स, आवर एक्टिविटीज व्हिच मेक अस हैप्पी। सो ऑन दैट वेरी ऑप्टिमिस्टिक नोट, लेट्स बिगिन आवर प्रोग्राम आज सवेरे। सो फर्स्ट वी विल बिगिन विद द हेडलाइंस।
0: जी शगुन, सबसे पहले मुख्य समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का शुभारंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे करने नहीं देती। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थ करियर, पारिवारिक जीवन और लोगों का भविष्य बर्बाद करते हैं।
1: The meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia and the United Arab Emirates will be held under the chairship of India from today till tomorrow in Lucknow. Our correspondent has the details.
2: India's BRICS chairship is guided by the overarching theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Within the BRICS statistics track, India has adopted the theme Quality Statistics as Driver of Change, reflecting an unwavering commitment to data quality, innovation, effective dissemination and people-centric statistical systems. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data dissemination and accessibility, strengthening microeconomic and sectoral statistics. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: अखिल भारतीय कोटा के अंतर्गत MBBS और दूसरे अंडर ग्रेजुएट चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए काउंसलिंग का पहला दौर कल से शुरू होगा और 2026-27 बैच का शैक्षणिक सत्र 8 सितंबर से शुरू होगा। चिकित्सा काउंसलिंग कमेटी MCC के जारी कार्यक्रम के अनुसार डीम्ड और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए काउंसलिंग का पहला दौर 4 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा। काउंसलिंग में शामिल होने की अंतिम तिथि 22 अगस्त होगी। काउंसलिंग का दूसरा दौर 24 अगस्त से 2 सितंबर तक होगा और इसके बाद तीसरा दौर 10 सितंबर से 18 सितंबर तक चलेगा। बची हुई सीटों को भरने का दौर 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा।
1: Let us tell you about Tri-Services Warfare Course, the 4th edition of it. The Tri-Services Future Warfare Course will commence in New Delhi and this will begin today. This will commence today. The 4-week course is being conducted under the aegis of the Headquarters, Integrated Defence Staff and coordinated by the Centre for Joint Warfare Studies. The course brings together officers from the 3 services along with representatives from government organizations, industry and strategic think tanks. The curriculum of the course covers subjects including geopolitical developments, artificial intelligence as well, quantum technologies, cyber and cognitive warfare, information warfare and technology.

0: technology-enabled warfare. So this was about tri-services warfare course.
1: घरेलू अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में इस बेहतर दृष्टिकोण का श्रेय अप्रैल जून तिमाही के दौरान संकेतकों में व्यापक सुधार को दिया गया है। एसबीआई रिसर्च ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया संकट के बीच वैश्विक माहौल अनिश्चित बना हुआ है, लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मानसून की स्थिति में सुधार से आने वाले महीनों में आर्थिक गतिविधियों को और अधिक समर्थन मिल सकता है।
0: So, Rupakheda village in Dhar district is now known as the mini Holland of Madhya Pradesh. And there is a reason for that because of its flower cultivation. So, Rupakheda village, this is in Dhar district of Madhya Pradesh and it is becoming a new model of modern farming. Earlier, farmers here were dependent on traditional crops like wheat, gram, maize and soybean. Now they grow roses, lilies and other flowers as well, along with high quality vegetables in poly houses and shade net houses. So the village has 44 poly houses and 13 shade net houses. Farming in a controlled environment has increased production and farmers' income as well. So under the Government of India's Mission for Integrated Development of Horticulture, farmers receive financial support to build poly houses and shade net houses.
1: जी शगुन, मध्य प्रदेश के धार में जो आपने बताई खबर, और काफ़ी आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं किसान, और फसल विविधीकरण की जो योजना है इससे मिट्टी का उपजाऊपन भी बना रहता है और किसानों की आय में भी बहुत वृद्धि होती है, जैसे कि फ्लावर की खेती के बारे में आपने इसमें बताया। बहरहाल रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने खाड़ी देशों के अपने सहयोगियों कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के कहने पर ईरान पर अमरीकी सेना के नए हमले करने के आदेश को टालने का फैसला किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित खाड़ी देशों के प्रमुख नेताओं और ईरान के कुछ अधिकारियों की बात सुनने के बाद उन्होंने इस योजना को रद्द करने और कूटनीति को समय देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जो समझौता हो रहा है उसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात शामिल होगी। समझौते से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंताएं भी दूर होंगी।
0: नाउ स्पोर्ट्स अपडेट, and this is about the Glasgow Commonwealth Games 2026, and after 11 days of intense competition, so Commonwealth Games concluded with the flag and baton handed over to India. We will be the hosts of the centenary edition in a glittering ceremony at Glasgow. So this happened at Glasgow today. The 2030 Games will be held in Ahmedabad, and the Scotland officials handed over the Commonwealth Games flag and baton to Indian representatives, Olympic gold medalist Neeraj Chopra, Indian Olympic Association President P.T. Usha and Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi. India will depart from Glasgow as a satisfied bunch after 39 medals at the 2026 Games. This includes 13 gold, 17 silver and 9 bronze. Such a great performance, and to end in fourth position on the standings.

0: और अब कुछ खबरें महानगरों से, मेट्रो सिटीज से। तो शगुन, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से क्या खबरें आपके पास?
1: सो विशाल, लेट्स बिगिन विद चेन्नई ओनली. द फर्स्ट अपडेट, द तमिलनाडु गवर्नमेंट विल विथड्रॉ ऑल द केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट नीट इन द स्टेट. स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर राजमोहन सेड दैट द डिसीजन

0: taken based on the directions of the Chief Minister, C. Joseph Vijay. The decision has come after the Supreme Court's directive. In Tamil Nadu, some students were removed from the protest site and cases were registered against them. And the withdrawal of cases was one of the key demands raised by student demonstrators. Another update, Vishal, from Chennai only. Heavy rainfall across the catchment areas of Kerala and Karnataka led to sharp rise in the inflow into the Kabini Reservoir in Mysuru, leading to increased discharge to Tamil Nadu to 25,000 cuseks. And this happened on Saturday night, as rains cautioned in Cauvery catchment areas, the Water Resources Department has issued a flood alert for downstream areas of the Cauvery. Now we will head to Bengaluru. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar has appealed to the political parties and Kannada organizations to call off Bandh, called by them over the Cauvery water sharing issue with Tamil Nadu. The Kannada organizations have called for Karnataka Bandh on August the 13th against the release of Cauvery River water to Tamil Nadu in response to the order of Cauvery River Water Regulation Committee and Management Authority. The Chief Minister has assured that highest priority will be towards protecting the interests of the state. Speaking to the media persons after an all-party meeting in Bengaluru yesterday, he said that 3,500 cuseks of water is released to Tamil Nadu every day as Kabini Dam is now full. Now we will focus our attention on Hyderabad. Union Coal and Mines Minister Kishan Reddy has hailed the launch of India's first commercial electric bus by Kito Motors as another milestone in the country's clean transport journey. Electric buses, first commercial electric bus. Speaking at the launch event, the minister praised the engineers and staff behind the specially designed 9-meter electric bus, which was handed over to an operating partner. The minister said India has moved from decades of dependency to self-reliance, citing the COVID vaccine as an example, and noted this, that the spirit is visible in the automobile sector. He highlighted the government's full support for electric mobility, covering manufacturing, batteries, charging infrastructure, as well as research. He also referred to the National Critical Mineral Mission, backed by 34,000 crore rupees, and described Telangana as a growing hub for electric mobility and semiconductor design. So these were the updates from Chennai, Bengaluru, Hyderabad. Now Vishal will tell us about Delhi, Mumbai, Kolkata.
1: जी शगुन, दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में अभिरक्षा के दौरान होने वाली अप्राकृतिक मौतों के मामलों में मृतक कैदियों के निकटतम परिजन और वैधानिक उत्तराधिकारियों को मुआवजा देने की योजना अधिसूचित की है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये से 7,50,000 रुपये तक की मुआवजा राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप यह योजना पीड़ित परिवारों को निर्धारित परिस्थितियों में समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ प्रशासनिक उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत करेगी। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह कल दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री इंद्राज ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से मुक्त, जागरूक और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रेरित किया। श्री इंद्राज ने कहा कि यह अभियान केवल नशे के विरुद्ध जागरूकता का प्रयास नहीं बल्कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और सामर्थ्य को राष्ट्र निर्माण की दिशा में समर्पित करने का एक व्यापक जन आंदोलन है। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कल रोहिणी सेक्टर 15 स्थित श्री अपार्टमेंट हाउसिंग सोसाइटी में एरोबिन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर महापौर ने कहा कि एरोबिन की सहायता से एक बार में एक बिन में 10 किलो गीले कचरे को बायोकल्चर की सहायता से 40 दिनों के भीतर कंपोस्ट खाद में बदला जा सकेगा। इस तकनीक के माध्यम से स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण और निस्तारण करने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं मुंबई का। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद शहर व्यापी स्वच्छता अभियान शुरू किया है। अभियान में कूड़ा कचरा जमा करने वाले प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी, अवैध रूप से कूड़ा फेंकने पर सख्त जुर्माना और कूड़ा कचरा प्रदूषण वाले क्षेत्रों को स्थायी रूप से समाप्त करने के उपाय शामिल हैं। नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े ने वार्ड अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने और बाजारों, सड़कों, फुटपाथ, समुद्र तटों, नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुंबई नगर निगम के जल अभियंता विभाग के अनुसार शहर को पेयजल आपूर्ति करने वाली मुंबई की 7 झीलें अब 89.08% तक भर गई हैं। मोदक सागर,

0: विहार, तुलसी और तानसा झीलें उफान पर हैं, जबकि ऊपरी बैतरणा झील में पिछले 24 घंटे में जलग्रहण क्षेत्र में सबसे अधिक 112 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। बीएमसी ने कहा है कि वर्तमान जल भंडार पर्याप्त है और मानसून की बारिश के कारण जलाशयों में लगातार पर्याप्त पानी आ रहा है। और अब कोलकाता से एक खबर। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कलकत्ता विश्वविद्यालय में आयोजित विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्होंने युवाओं से मादक पदार्थों की लत और मादक पदार्थों से जुड़े आतंकवाद के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। उन्होंने शिक्षा संस्थानों से नशा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। और अब बात मौसम की कर ली जाए
1: जी,
0: तो राजधानी दिल्ली की बात करें, आमतौर पर आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
2: So Chennai is likely to witness a generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperatures are expected to range between minimum 26 degrees Celsius and maximum 37 degrees Celsius. Bengaluru is forecast to experience a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature is expected to be 21 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad is likely to see a generally cloudy sky with again light rain or drizzle. Temperatures are expected to range from 24 degrees Celsius to 33 degrees Celsius. So now let's tell our listeners, Vishal, about the special day it is today. Today it's Indian Organ Donation Day, which is observed every year on 3rd of August to commemorate India's first successful deceased donor heart transplant. And this was performed on 3rd of August in the year 1994, right?
0: Ji.
2: So this day is dedicated to honoring the selfless individuals and families who have chosen to donate organs, giving countless patients a second chance at life. The day also serves as a beacon of hope for patients who are awaiting life-saving transplant and their families, reminding us that one organ donor can save multiple lives.
0: Ji, ek tarike se ye jeevan daan dena hai.
2: True, Vishal.
0: और भारतीय रेलवे ने चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस की मदद से दान किए गए हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक लगभग 250 किलोमीटर की दूरी बहुत कम समय में पहुंचाया गया। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ, गुजरात पुलिस और डॉक्टरों ने मिलकर एक विशेष ग्रीन कॉरिडोर बनाया। ग्रीन कॉरिडोर ऐसी विशेष यातायात व्यवस्था होती है जिसमें एम्बुलेंस या अंग ले जा रहे वाहन को बिना किसी रुकावट के तेजी से अस्पताल तक पहुंचाने का रास्ता दिया जाता है। सभी ट्रैफिक सिग्नल और रास्तों को पहले से खाली कराया जाता है ताकि अंग समय पर मरीज तक पहुंच सके। इस विशेष व्यवस्था की मदद से हृदय सुरक्षित और समय पर अहमदाबाद के यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर पहुंचा, जहां उसका सफल प्रत्यारोपण किया गया और मरीज को नया जीवन मिला। ये अभियान भारतीय रेलवे, पुलिस और चिकित्सा टीम के बेहतरीन तालमेल का उदाहरण है और अंगदान के महत्व को भी उजागर करता है। एक व्यक्ति का अंगदान कई लोगों को नया जीवन दे सकता है।
2: Right, Vishal, and it is an invaluable gift, right? Organ donation is an invaluable gift. And so on this occasion, let us recognize and inspire more people to pledge their organs, help build a healthier and more compassionate society, right?
0: Ji, Shagun, yahan par main ek baat aur jodna chahunga ki जब हम अपने आज के दिन इतिहास में क्या क्या घटा था, तो उसमें यहाँ पर एक 3 अगस्त 1994 को आज ही के दिन दिल्ली एम्स अस्पताल में डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने भारत का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था।
2: एग्जैक्टली, इन द ईयर 1994।
0: जी, और तारीख, आज की तारीख पर कौन कौन सी इतिहास की घटनाएं दर्ज हैं?
2: Let's tell our listeners about that.
0: जी, 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

0: जिसने इस संघर्ष को प्रथम विश्व युद्ध में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: सो अगेन वी आर गोइंग वे बैक विशाल। क्रिस्टोफर कोलंबस सेट सेल फ्रॉम पैलेस स्पेन ऑन हिज फर्स्ट वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन सर्च ऑफ अ वेस्टवर्ड रूट टू एशिया एंड दिस एक्सपेडिशन इवेंचुअली लेड टू यूरोपियन अवेयरनेस ऑफ द अमेरिकास। In 1936, Jesse Owens won the first of his four gold medals at the 1936 Summer Olympics in Berlin, establishing himself as one of the greatest athletes in Olympic history. In 1958, the nuclear-powered submarine USS Nautilus became the first vessel to travel beneath the North Pole. In 1960 now, Niger gained independence from France, bringing an end to decades of colonial rule. Hamani Diori became the country's first president and led the newly established republic.
0: और 1977 में आज के दिन दुनिया का पहला होम कंप्यूटर TRS-80 मार्केट में लॉन्च हुआ था। इसकी कीमत उस समय $599 थी, यानी कि $600 से $1 कम। और इस कंप्यूटर को उम्मीद से ज्यादा रेस्पॉन्स मिला और पहले ही महीने में अनुमान से 10 गुना ज्यादा 5,000 कंप्यूटर की बिक्री हुई
1: थी। In the first month itself, wow.
0: और 1985 में आज ही के दिन भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे को कुष्ठ रोगियों तथा अन्य उपेक्षित और दिव्यांग लोगों के पुनर्वास के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सार्वजनिक सेवा श्रेणी में रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
1: How great.
0: तो ये तो बात हुई इतिहास में आज के दिन दर्ज प्रमुख घटनाओं की, और अब रुक करते हैं अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ।
1: Much और जब
0: हम,
1: well.
0: जी हाँ, जब हम बात करते हैं उन विशिष्ट व्यक्तित्वों के बारे में जिनकी आज जन्मतिथि है और या फिर जिनकी आज पुण्यतिथि है। और
1: यहाँ
0: मैं कुछ एक पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: यहाँ
0: देश प्रेम और देशभक्ति से जुड़ी हुई ये पंक्तियां हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त की हैं और राष्ट्र कवि की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया गया। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य के ऐसे महान कवि थे जिन्होंने कविता को केवल सौंदर्य का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार का साधन बनाया। उनकी रचनाओं में देशभक्ति, संस्कृति, नारी सम्मान, मानवता और नैतिक आदर्शों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। आज भी भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी कृतियां हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं। इनका लेखन ऐसे समय में आया जब देश स्वतंत्रता आंदोलन से गुजर रहा था। इनकी रचनाओं ने जनता में राष्ट्रीय चेतना और आत्मगौरव की भावना जगाई। भाषा बहुत सहल थी, सरल थी, संस्कृत निष्ठ थी और प्रभावशाली रही। वे मानते थे कि साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि समाज को दिशा देने का भी माध्यम है। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की एक ऐसी रचना रही है, प्रसिद्ध कृति रही है, जिसमें भारत के गौरवशाली अतीत, वर्तमान की चुनौतियों और उज्जवल भविष्य की कल्पना का चित्रण किया गया है। इस कृति ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में देशभक्ति की भावना को प्रबल किया था।
1: सो एग्जैक्टली मैथिली शरण गुप्त गेव हिंदी लिटरेचर अ पावरफुल वॉइस ऑफ कल्चर नेशनल अवेकनिंग एज वेल। हिज लिटरेरी लेगेसी कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशंस विद इट्स मैसेज ऑफ पेट्रियटिज्म, सोशल रिफॉर्म एंड कल्चरल Pride and celebrated as Kavi Divas. Poet's Day is honor author of timeless works like you also told Saket, Yashodhara, Panchvati, and honored with the title Rashtra Kavi as well. He was awarded the Padma Bhushan in 1954.
0: जी, और आज के दिन हुआ जन्म हुआ था शकील बदायूनी का, महान शायर और गीतकार। अपनी शायरी की बेपनाह कामयाबी से उत्साहित होकर इन्होंने आपूर्ति विभाग की सरकारी नौकरी छोड़ दी थी और वर्ष 1946 में दिल्ली से मुंबई पहुंच गए थे। शकील बदायूनी ने करीब 3 दशक के फिल्मी जीवन में लगभग 90 फिल्मों के लिए गीत लिखे, और इनके फिल्मी सफर पर एक नज़र डालें तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा फिल्में संगीतकार नौशाद के साथ ही की थी इन्होंने। और वर्ष 1947 में पहली ही फिल्म दर्द के गीत अफसाना लिख रही हूं कि अपार सफलता मिलने के बाद शकील बदायूनी कामयाबी के शिखर पर जा बैठे थे। और शकील बदायूनी की जोड़ी प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद और हेमंत कुमार के साथ खूब जमी।
1: And yes, Shakil Badaoni, the one of the most famous Urdu poet and lyricist of the 50s and 60s. Well, we obviously remember him for his songs with music director Naushad.
0: और इनको जो है तीन बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया जी गीतों के लिए इनको. और जो 14वीं का चांद फिल्म का एक गीत था और वर्ष 1960 में इसके लिए इनको फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था. ये सुनते हैं गीत.

और 1962 में एक फिल्म आई थी 20 साल बाद, उसका भी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत नगमा ये सुनते हैं, जरा नजरों से कह दे।

आज के दिन जन्म हुआ था संगीतकार और बहुत ही प्रतिभाशाली संगीतकार और संवेदनशील संगीतकार जयदेव का। और इन्होंने अपनी भावपूर्ण धुनों से भारतीय सिनेमा को कई यादगार गीत दिए। जयदेव हिंदी फिल्म संगीत के उन विरल संगीतकारों में थे जिन्होंने लोकप्रियता से अधिक संगीत की गुणवत्ता को महत्व दिया। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत, कविता और भावनाओं का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। और जयदेव का संगीतबद्ध एक ये गीत फिल्म हम दोनों से, आइए सुनते हैं।

0: मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नभर टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइन।

0: शाम 4 बजे जुलूस निकाले जाने से कबल महाकालेश्वर मंदिर में खुसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जुलूस रामघाट पहुंचने से पहले गोदरी चौक बख्शी बाजार से होकर गुजरेगा, जहां भगवान महाकाल को शिप्रा दरिया के पवित्र पानी के साथ अभिषेक और आरती पेश की जाएगी। ये जुलूस शाम मंदिर लौट आएगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए वसी तर इंतजाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान व निकोबार जजायर, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और शिमाल मशरकी भारत के बाज इलाकों में इसी तरह के हालात रहने का इम्कान है। मौसमियात की एजेंसी ने साहिली आंध्र प्रदेश, केरला, माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार जजायर में कल तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। ग्लासगो में मुनक़िदा दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम के साथ ही अहमदाबाद में 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों की उल्टी गिनती बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई है। पेश एक रिपोर्ट।
1: इख्तितामी तकरीब में भारत ने कदीम फलसफे, जदीद फनून और अपनी शानदार सकाफती रिवायात का हसीन इम्तिजाज पेश करते हुए दुनिया भर के मुल्कों को अहमदाबाद आने की पुरजोश दावत दी। इसी तकरीब के जरिए 2030 में मुनक़िद होने वाले दौलत मुश्तरका खेलों के 7 साल एडिशन की तैयारियों का बाज़ाब्ता आगाज भी हो गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं के नुमाइंदे प्रिंस एडवर्ड्स ड्यूक ऑफ एडिनबरा ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों के इख्तिताम का बाज़ाब्ता ऐलान किया और तमाम शरीक ममालिक और खित्तों के खिलाड़ियों को अहमदाबाद आने की दावत दी। 11 रोज तक जारी रहने वाले सख्त मुकाबलों के बाद भारतीय खिलाड़ी 39 तमगों के साथ ग्लासगो से वतन वापस लौटे। नई दिल्ली से मुइनुद्दीन खान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
2: शुक्रिया अमर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों की सुर्खी है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुनशियात के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम का आगाज करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी इख्तियार करना चाहिए। मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राबता, खित्ते में जारी कशीदगी रोकने के लिए मुजाकरात पर दिया जोर, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों में हुए जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती आज, सभी तैयारियां मुकम्मल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है। रोजनामा इनकलाब की खबर है, उत्तर प्रदेश असेंबली का मानसून इजलास आज से, कई अहम बिलों को पेश किए जाने की उम्मीद।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 100 हफ्तों तक जारी रहने वाले नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का आगाज किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद, जहनी तौर पर मजबूत और एतमाद से भरपूर नौजवान नस्ल जरूरी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश के 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो गई है। ब्रिक्स मुल्कों के आदादोशुमार के कौमी दफातर के सरबराहान का इजलास आज लखनऊ में शुरू हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए मुजाकरात आज होंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अमन रैली के दौरान खुदकुश हमले में 14 अफराद हलाक हो गए और अहमदाबाद ने ग्लासगो में इख्तितामी तकरीब के दौरान 2030 दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी के हकूक बाज़ाब्ता तौर पर हासिल किए। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं सुधार सकती, इसलिए वर्तमान ही सब कुछ है। 8:46 और 3 सेकेंड म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, नमस्कार। म्यूजिकल दिल लगी में आप सुनते हैं दहक फिल्म से हरिहरन की आवाज में ये सॉन्ग।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अब आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जुलाई सेशन 2026 के लिए आप स्टूडेंट्स 15 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले लास्ट डेट 31 जुलाई थी। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन और ओडीएल दोनों ही प्रोग्राम के लिए लास्ट डेट बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट्स 16 अगस्त तक बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कई कोर्सेज के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
1: पूछो जरा पूछो मुझे

0: लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है, और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा चुनावों पर सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों समेत 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। गोवा ने मजबूत राजकोषीय वृद्धि दर्ज की है। जुलाई 2026 के दौरान राज्य को केंद्र सरकार से कर वितरण के तौर पर 398 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। साथ ही वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में भी अच्छी वृद्धि हुई। राज्य का कुल जीएसटी संग्रह जुलाई 2026 में 622 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो पिछले साल की इसी अवधि के 584 करोड़ रुपए से बढ़कर 7% की वृद्धि को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has launched Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan through video conferencing in New Delhi yesterday. In his address, the Prime Minister said that achieving Viksit Bharat fundamentally requires a physically healthy, mentally robust and highly confident younger generation completely free from self-destructive habits.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है। क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ

हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:16 और ठीक 16 सेकंड। जी हाँ, हमने माना कि ये खूबसूरत सी जो दुनिया है कई बार मुश्किल जगह लगती है, लेकिन सिंप्लिसिटी इसी में है कि हम इस दुनिया को कौन से वाले चश्मे से देखते हैं। दो नावों पे पांव पसारे ऐसे कैसे, वो भी प्यारा और हम भी प्यारे, ऐसे कैसे हो सकता है। सूरज बोला बिन मेरे दुनिया अंधेरी है, तो हंसकर बोले चांद सितारे, अरे भाई ऐसे कैसे। तो उसी खूबसूरत सी जिंदगी को सलाम करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। आपका हमारा साथ है, यूं ही इसे कह सकते हैं कि ये काफ़ी मैजिकल है, क्योंकि हर बार हम अपने आप को, हम मतलब हम और आप, हम सब इंस्पायर करते हैं एक बेहतरीन दिन को शामिल करने के लिए अपनी ज़िंदगी में।

समझेंगे तो तब जब हमको समझने का मन करेगा। वैसे बहुत सारी चीजें हमें सुबह शाम बचपन से लेकर के अब तक समझाई जाती हैं। कितना समझ में आया ये तो हम ही जानते हैं। 31 जुलाई निकल गई ये तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद फिक्र तो बनती है। फाइनेंस एक्ट 2026 के बाद अलग अलग टैक्स पेयर्स के लिए 31 अगस्त, 31 अक्टूबर और 30 नवम्बर की नई डेडलाइन तय की गई है। उसके बाद भी अगर आप आहें भरते हैं तो फिर हम क्या करें। हमने तो समझा दिया, बड़े अच्छे से बता दिया कि देखिए ये है और ये नहीं, बाकी तो छोड़ दिया समय पे कि वो ही डिसाइड करेगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे ये है म्यूजिकल दिल्ली हमारे साथ।

ऊपर लिखा होता है कि ये देखिए बहुत हेल्दी है, शैम्पू साबुन क्रीम सब कुछ हेल्दी का टैग अगर लगा होता है तो हमारा विश्वास ना बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बढ़ जाता है और यही लगता है कि हाँ ये सब कुछ तो बहुत अच्छा है। बाज़ार की हर चीज़ का हेल्दीफिकेशन हो गया है, हर आदमी अलग अलग तरह के प्रेशर में है और ये टैग इतना सक्सेसफुल है कि हम उसको संबंधों के ऊपर भी लेकर के आते हैं। कहते हैं ना हमारी दोस्ती ना बड़ी हेल्दी है। देखिए जनाब, आज ना वही वाला कल है जिस कल की फिक्र हमें कल थी, परसों का इसे तो हमें पता नहीं कह सकते कि हाँ क्या होगा, लेकिन इतना पता है कि दोस्ती का खुमार अभी तक चल रहा है। म्यूजिकल दिल्ली में भी, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे भी दोस्ती हमारी और आपकी एकदम पक्की वाली है।

और अब ऐसे माहौल में कोई ये कहे कि ना तो कोई हमारा दोस्त है ना डेट पे है लेकिन फिर भी कोई समस्या नहीं है, तो यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अकेलेपन को एक लाइफस्टाइल की तरह अब दिखा रहे हैं, और कुछ लोग बिना दोस्तों वाली ज़िंदगी जीने के

लिए जोर भी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको ऐसे कई सारे कंटेंट भरे पड़े दिख जाएंगे जहाँ पे अकेलापन अकेलापन नहीं है बल्कि ये एक लाइफस्टाइल है। मैं, मेरा हेल्दी खाना, हमारा कुत्ता, हमारी बिल्ली और हमारे थॉट्स। लेकिन पता है मुझे क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि सच्चाई ये है कि हमें मिलना जुलना चाहिए, क्योंकि हम सब की बुनियादी ज़रूरतों में से ये एक चीज़ है, है ना? आपको क्या लगता है? आप हमें मेल कर सकते हैं fmgold@gmail.com पे बता सकते हैं कि हाँ भाई, दोस्ती हमारी सिनेमा वाली हो, पुरानी हो, जो भी हो, सुपर हिट है। अच्छे दोस्त कभी भी कंपटीशन नहीं करते, मन भेद मत भेद दोनों को छोड़ के वो आगे चलते हैं। ट्रेन वाली दोस्ती, मेट्रो वाली दोस्ती और ये रेडियो वाली दोस्ती।

0: वैसे तो हमें ब्रेक लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम सबको इंतजार इस बात का रहता है कि यार एक ब्रेक मिल जाए बस।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

फिल्म का नाम हम दोनों। साहिल लुधियानवी ने इस गाने को लिखा, जयदेव ने इसको म्यूजिक दिया, मोहम्मद रफ़ी ने गाया और ये गाना फिल्माया गया देवानंद के ऊपर। कुछ गाने सुनने के लिए होते हैं और कुछ गाने देखने के लिए, और कुछ सुनना और देखना दोनों के लिए होते हैं। तो ये गाना एक लापरवाह और जिंदा दिल फौजी अधिकारी की भूमिका में देवानंद के ऊपर है, जो जीवन की मुश्किल पलों में भी मस्त रहने का एक मैसेज देते हैं। किरदार का अंदाज भाई वाह, चिंता रहित एकदम फिलॉसफी है कि आप बस आगे बढ़ते चले जाइए। और गीत सिखाता है कि दुखों के आगे टूटने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, और जो मिला है उसे अगर हम अपनी किस्मत मांग लें तो क्या बुराई है।

0: अकेले नहीं, हम हैं आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, और ये है म्यूजिकल दिल्ली।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: कहते हैं कि जब संसार एक रंगमंच हो और जीवन अभिनय, तो फिर वहाँ पे हार जीत का क्या लेना। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, जैसे कि म्यूजिकल दिल्ली है इस वक्त आपके साथ। वैसे हम सब सोचते हैं ना कि कोई तो ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मजा आ जाए, कुछ तो ऐसा हो जाए कि हम देखते रह जाएं। ये नहीं नहीं, इसको उल्टा कर देते हैं, कुछ तो ऐसा हो कि दुनिया हमें देखती रह जाए और पता नहीं चलता कि कब ऐसा अच्छा वाला समय बीत गया और हम वहीं खड़े के खड़े हैं। तो फिर एक एक गाने को एंजॉय कीजिए, एक एक बात सुनिए, और उसके बाद भी बात ना बने तो फिर आप हमें मेल कर सकते हैं, fmgold@dili@gmail.com।

0: की लड़ी।
1: आएगी आएगी बारिश आएगी। 3 बजे के आसपास मौसम कहता है कि भाई देखिए हम बरसेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण के बारे में। भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरियों में कुपोषण की समस्या को दूर करना। और उसके साथ साथ आज पता है बड़े सारे दिन हैं, जैसे कि आज है नेशनल वाटरमेलन डे, तरबूज खाइए और उसके महत्व को समझिए। और दूसरा है मेवे खाने का दिन, फर्श साफ करने का दिन, एस्थर डे। ये दिन हमें ना याद दिलाते हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी कम नहीं होती है और हर चीज़ को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं।

और अगर ये माया है तो फिर हमने ये भी पढ़ा है कि ये जो माया है ये महाठगनी है, हम जाने। तो इसी माया में हम सब ने अपना दिल लगाया है। यूं ही आप भी दिल लगाते रहे, आगे बढ़ते रहे और म्यूजिकल दिल्ली हमारे साथ सुनते रहे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:55

नहीं 9:56 हो चुके हैं और ये गीत है हम सबके लिए 1975 की फिल्म जमीर से किशोर कुमार की आवाज़ और एक फ्रेशनेस जो हमें एक मैसेज देती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है।

0: और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए मतगणना जारी है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात में मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल बढ़त बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धाओं के दौरान भारत के प्रतिभाशाली एथलीटों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises, Jitin Ram Manji, is likely to move the bill which seeks to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 be taken into consideration and passing. The meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries will be held under the chairship of India from today till tomorrow in Lucknow. India's BRICS chairship is guided by the overarching theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, BRICS. The meeting aims on strengthening core BRICS statistical products, innovation and reform in national statistical systems, data

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
1: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर दो विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुश्मन देश षड्यंत्र करके भारत के युवाओं को नशे की लत में खींचने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है और इसीलिए हमें प्रत्येक युवा को नशे के चंगुल से फंसने से बचाना है। उन्होंने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत होना और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जनभागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को विशेष गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे परिवार, समाज तथा राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है।
2: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं।
3: सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले को रोक दिया है। इस हमले की योजना पहले से ही बनाई गई थी। ये भी संकेत है कि होर्मुज जल डमरू मध्य के प्रबंधन के बारे में भी समझौता हो सकता है। ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर भी समझौता किया जाएगा। कूटनीति की ओर ये अचानक झुकाव ऐसे समय में आया है जब मध्यस्थ अमेरिका और ईरान के बीच एक सक्रिय ढांचे को फिर से शुरू करने करने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्रीय मध्यस्थ पिछले महीने हस्ताक्षरित समझौते को फिर लागू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रणनीतिक जलमार्ग 60 दिनों तक बिना किसी शुल्क के खुला रहे। उधर समुद्री गलियारे के संचालन के लिए संयुक्त कार्यप्रणाली पर ईरान और ओमान के बीच बातचीत अंतिम चरण में है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए।
4: ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। स्थानीय जनजातीय परिषद ने क्षेत्र में शांति की मांग करते हुए स्वात शांति रैली आयोजित की थी। परिषद ने आरोप लगाया कि पुलिस की निष्क्रियता से पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति बदतर हो गई है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
0: जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि अगर आवश्यक हुआ तो वॉर कार्रवाई को तैयार है। जापान के वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमरीकी वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री

0: कातायामा सात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद जापानी मंत्रालय ने संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने घोषणा की थी कि वॉशिंगटन मित्रता के प्रतीक के रूप में और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सहयोग देने के लिए येन को मजबूत करने में मदद कर रहा है। ये कार्रवाई हाल के महीनों में येन की अत्यधिक अस्थिरता से निपटने के लिए की गई थी। अमरीकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी जापान और अमरीका के समन्वित हस्तक्षेप की पुष्टि की है। इस कार्रवाई से येन के अनियंत्रित उतार चढ़ाव को रोकने के प्रयास किए गए हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारत के खिलाड़ियों की सराहना की है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कहीं गुना ज्यादा, तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है। और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
0: मुख्य कोच सत्यनारायणन ने आशा व्यक्त की कि भारत 2030 के खेलों में अच्छा प्रदर्शन करेगा।
2: ओवरऑल इंडियन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आगे होने वाला हम अच्छा करेगा। मेरा एथलीट बहुत खुश है, आप लोग देख सकते हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। इवन स्कॉटलैंड ग्लासगो लोग को भी मैं धन्यवाद बोलता है, हमारा प्रिपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दिया है। इवन गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो बहुत अच्छा इंटरेस्ट ले रहा है।
0: राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। जापान और अमेरिका ने येन को मजबूत करने के लिए संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good morning, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the World News. The headlines. Meeting of heads of national statistical offices of BRICS countries starts in Lucknow today. US President Donald Trump says new talks with Iran to take place today. 14 people killed in suicide attack during peace rally in Pakistan's Khyber Pakhtunkhwa. Japan and US confirmed joint intervention to bolster yen. And Ahmedabad formally receives the Commonwealth Games hosting rights for 2030 at the Glasgow closing ceremony. The meeting of heads of National Statistical Offices, NSO, of BRICS countries, Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates, UAE, will be held under the chairship of India from today in Lucknow. Our correspondent has the details.
4: India's BRICS chairship is guided by the overarching theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability within the BRICS Statistics Track.

0: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

दो नहीं कई सारे दीवाने हैं इस वक्त हमारे साथ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे। ये है दिल का मेल बॉक्स, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मुसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, सलीम अख्तर, रेशमा बेगम अलीगढ़ से दिल का मेल बॉक्स में है। हमारे साथ रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, शाजीनगर बेंगलुरु से नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता के साथ साथ हैं मास्टर जी मारियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवीएम सरधना से ही इन्होंने कई सारी मेल हमें की है इसलिए हमने दो बार आपका नाम पढ़ दिया। वेरी सिंपल, स्वागत है आपका दिल का मेल बॉक्स में और ये रहा आपका गाना।

सौर अवधि तो हम भी कहेंगे कि आपके मैसेजेस इस तरह से आते रहे दिल का मेल बॉक्स में तो फिर रौनक लगी रहेगी। नमस्कार करते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भेजते हुए बोलते हैं कि भाई क्या आप हमें भूल जाती हैं, बताइए ऐसा कैसे हो सकता है। दिल का मेल बॉक्स है ही सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक है। नमस्कार करते हैं और बोलते हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोर्ड, निखिल तन्वी बोर्ड, अंकित कांगड़ा, किशोर नगर अमरावती से हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ हैं और होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खुरवाल हैं, सचिन खुरवाल हैं, अमन, दीपांशु, फिल्म का नाम इन्होंने बताया जो इन्होंने अपना जो चॉइस थी वो अभी इन्होंने सुन भी ली अपनी चॉइस का गाना। और इसके अलावा

अवा हमसे नाराज़गी भरे बड़े सारे जो हमारे पास मेल आते हैं वो सब लोग खुश हैं। वो खुश इसलिए हैं क्योंकि कुछ दिन ऐसे मैजिकल से होते हैं ना कि हमको अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि यार हमने तो ऐसे बोल दिया था। ये है नवाब अहमद, अरहान अहमद, सूफिया नवाब और शबाना भारती बल्ली मारान से, और ये रहा आपका गाना।

वैसे मुश्किल तो आपके लिए भी नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चॉइस हो यहाँ पे आपका गाना, तो फिर आप हमें मेल कीजिए FM Gold AIR Delhi @gmail.com।

0: com, बताइए कि कौन सा गाना है और आपको क्यों अच्छा लगता है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर,
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
5: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

दिल का मेल बॉक्स है ये। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हेना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। दिल्ली रेडियो लिसनर्स क्लब से हैं नवाब अहमद भारती, बबलू कश्यप, महेश अग्रवाल, अशरफ अली, सिराज मिथुन, संजय डींगिया और उसके अलावा सलीम हैं, रेशमा बेगम हैं अलीगढ़ से, जिन्होंने इस गाने की फरमाइश की है।

ऐसा ही कुछ अंदाज हमारा भी है कि एक मेल को देखा तो ऐसा लगा जिसमें खुशी है, नाराजगी है और दिल का मेल बॉक्स बिल्कुल फुल है। नबी हसन अब्बासी हैं, शहनाज अब्बासी हैं, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम, यशफ, रसीद वारसी और किदवई नगर सिद्धूपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान हैं। आपकी मेहरबानी होगी, हमारा नाम शामिल कर लीजिए तो फिर हो गई। होस्ट मैम जी, गुड मॉर्निंग करते हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य मस्कीन और मेघा हैं। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हैं और सत्यप्रकाश सनोठिया हैं रोहिणी दिल्ली से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी और ये सब लोग मुझे कहते हैं नमस्ते। नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हो गया है 10:55 और ये हैं मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे कि मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा, श्रीमती रंजूबाई हैं, युवराज सिंह हैं, शिवांगी धाकड़ हैं, बबलू कश्यप हैं, नवाब अहमद हैं, अशरफ अली, इनका नाम हमने पहले भी ले लिया है, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल, अनम, इनका भी नाम आ चुका है, किदवई नगर सिद्धूपुरा टाउन से जुबैर अली, इनको भी आप सुन चुके हैं। तो आई एम श्योर आप सब ने अपनी पसंद के सारे गाने ज़रूर ज़रूर से सुन लिए होंगे, लेकिन एक गुजारिश है इनकी भी। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा और मैं हूँ इंदु आपके साथ दिल का मेल बॉक्स में और ये गाना है फिल्म तुम्हारी कसम से।

जवाब तो जरूर आएगा, बस आप हमें मेल यूं ही करते रहिए और अपनी बात बताते रहिए अपने गाने के साथ। जैसे कि ये अब्बासी परिवार हमसे कहता है कि देखिए हमारी चॉइस का गाना प्ले कर दीजिए ताकि थोड़ी हम राहत की सांस लें, सोमवार को हम मिले। तो सोमवार तो अभी चल रहा है, अभी तो हम मिल ही रहे हैं। फिलहाल समय हो रहा है समाचारों का, उसके बाद फिर से होगी आपसे मुलाकात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक

0: त्रिसैन्य भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का चौथा आयोजन आज नई दिल्ली में हो रहा है। चार सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। इस पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबुल कस्बे में थाने के सामने से गुजर रही थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में सर्वमान्य राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Lok Sabha is scheduled to take up the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal is likely to move the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 for increasing the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. Meanwhile, the Rajya Sabha is scheduled to take up the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 today. Union Minister of Micro, Small and Medium Enterprises Jitan Ram Majhi is likely to move the bill which seeks to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 be taken into consideration and passing. Counting of votes is underway for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Polling for the Bakipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat and Datia in Madhya Pradesh was held on the 30th of last month. In the first round of counting for Bakipur seat, Jan Swaraj Party's candidate Prashant Kishore is leading by 1,000-plus votes, while in Manjalpur, Gujarat, Satendra Bhai Patel of the Bharatiya Janata Party, BJP, is leading by 1,000-plus votes, whereas Ashutosh Tiwari of the BJP is leading by 800-plus votes at Datia in Madhya Pradesh. President Draupadi Murmu will arrive in Odisha today on a 3-day visit. During a stay, she will inaugurate Jagat Guru Kripalu University in Cuttack and participate in a series of official educational and cultural programs in Bhubaneswar, Cuttack and Ganjam districts. We have a report from a correspondent.
2: President Draupadi Murmu will arrive in Bhubaneswar this afternoon on a 3-day

आइए चलते हैं हम एक ऐसी जगह, अरब सागर के तट पे खड़ा श्रद्धा का अमर प्रमाण है, बार बार जो फिर से उभरा वो पावन श्री सोमनाथ है, जहां चंद्र ने तप कर पाया महादेव का पावन साथ, ज्योतिर्लिंग बन स्वयं विराजे, जग में प्रसिद्ध हुआ सोमनाथ। तो आज तस्वीर है सोमनाथ की, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पे ये है तस्वीर, और तस्वीर है ये सोमनाथ की, जहां लहरें भी शीश झुकाती हैं, पवन सुनाती है शिव की बात। आस्था, साहस और विश्वास का अमर प्रतीक है सोमनाथ। आप गए हैं? अगर नहीं तो फिर आज मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊंगी, और अगर जा चुके हैं तो एक बार फिर से उस जगह को याद कीजिए और फिर बताइए कि कितना अच्छा और पावन है वहाँ पे। एक बार जो होके आए उसकी यादें अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगी।

तो फिर मैं आपका ये पूरा का पूरा ट्रिप प्लान करती हूँ। तो सुबह सोमनाथ मंदिर में दर्शन और आरती देखिए, मंदिर के पीछे अरब सागर का जो सुंदर व्यू है उसको देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। त्रिवेणी संगम जाइए, फिर उसके बाद बलका तीर्थ और गीता मंदिर में घूमिए। शाम को मंदिर की आरती और लाइट एंड साउंड शो देखना, उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। आप आराम से, बड़े आराम से सोमनाथ पहुंच सकते हैं। वेरावर रेलवे स्टेशन ट्रेन से अगर जाते हैं, और अगर फ्लाइट से जाते हैं तो दीव एयरपोर्ट सबसे पास है, और उसके बाद सड़क मार्ग से आप सोमनाथ पहुँच जाइए। और फिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है सोमनाथ, उसकी आप कीजिए दर्शन, और उसके आसपास की चीज़ें उनको तो देखना बिल्कुल भी आप भूलिएगा मत। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोमनाथ में मिलेंगी। तो फिर आज तस्वीर है सोमनाथ की, जो है गुजरात में।

सोमनाथ है तो जैसा कि हर जगह की एक कहानी होती है, तो फिर एक छोटी सी कहानी हम भी आपको सुना दें। कहते हैं कि सबसे पहले चंद्रदेव यानी कि सोम ने भगवान शिव की आराधना करके इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम सोमनाथ पड़ा। इतिहास में इस मंदिर को कई बार आक्रमणों में नुकसान पहुंचा, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। और ये मंदिर जब आप देखेंगे तो इसका जो स्टाइल है वो चालुक्य शैली में और उस तरह के ये आर्किटेक्ट में बना हुआ है, और जो इसकी ऊंचाई है लगभग 50 मीटर है, और शिखर पर जो लगा ध्वज है वो दिन में कई बार बदला जाता है। अगर आपको मौका लगे तो आप इसको भी देखिएगा। मंदिर अरब सागर के किनारे है, जहाँ से सूर्यास्त का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। और घूमने के लिए सबसे अच्छा वक्त है अक्टूबर से मार्च तक, यहाँ का मौसम सुहाना रहता है। जाइए, घूम के आइए, देखिए सोमनाथ गुजरात का, बहुत अच्छा लगेगा।

ये सच में सच है कि यो जो भी हम यात्रा करते हैं वो हमें संवारती हैं, एक विश्वास तोड़ती हैं तो एक विश्वास बनाती हैं। इस वक्त हम हैं तस्वीर में और तस्वीर है ये सोमनाथ गुजरात की। तो यहाँ पे जाइए तो फिर बिना गुजराती थाली खाए बिना तो आप आ नहीं सकते हैं, तो वो तो आपको ज़रूर टेस्ट करनी होगी, जिसमें दाल कढ़ी रोटी सब्जी खिचड़ी मिठाई होगी। और उसके अलावा काठियावाड़ी थाली भी आप इसका मज़ा ले सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगा ढोकला खांडवी थेपला जो कि बहुत ही फेमस गुजरात के स्नैक्स हैं। और उसके बाद फिर आप आइए आगे बढ़िए, गाठिया और चाय जाओ वहाँ का एक बहुत ही फेमस नाश्ता है वो लीजिए। फिर उसके बाद मौसम के हिसाब से अगर आप पहुँचे हैं तो आमरस गुजरात की खास मिठास है वो मिलेगा। ये थोड़ा सा और आप आगे जाएंगे तो पास के वेरावल में आपको फ्रेश सी फूड भी वहाँ का बहुत फेमस है, और यहाँ से आप गुजराती हस्तशिल्प की चीज़ें ले सकते हैं। वैसे जहाँ भी कहीं जाना होता है तो हम आपको बताते हैं कि क्या क्या करें, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ये भी हम सबको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर जाएँ तो हम क्या ना करें। तो अपने मंदिर के अंदर मोबाइल आपको नहीं ले जाना है, कैमरे और जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो सब प्रतिबंध है, उसके ऊपर वो नहीं ले जा सकते। इसलिए जाने से पहले नियम को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद अपनी यात्रा शुरू करें।

0: क्या आप जानते हैं कि सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा ऐसा कुछ आपको पढ़ने को भी मिल जाएगा जिससे बहुत अच्छा लगेगा। तो जब भी मौका लगे आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से जुड़ी हुई चीज़ों को मतलब किताब की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें तो वो चीज़ ना देखने में और भी अच्छी लगती है और लगता है कि हाँ जो हमारी जानकारी है वो काफ़ी उम्दा हो गई है। ये है तस्वीर सोमनाथ की।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर,
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

और अगर सावन के महीने में आप सोमनाथ जाएंगे तो वहाँ की जो लबधक है, जो रौनक है, वो देखते ही बनती है। अरब सागर की लहरें ऐसा लगता है कि जैसे गा रही हो शिव महिमा का मधुर गान, और वहाँ विराजे भोले शंकर, यही है हमारी पहचान। सोमनाथ की पावन धरती श्रद्धा का अनुपम वरदान है, बार बार जो फिर से जागा बना अटल विश्वास महान। और वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि बहुत अच्छा लगेगा मंदिर का जो मुख्य आकर्षण है शिवलिंग, यहाँ पे आप जब देखेंगे, दर्शन करेंगे तो मतलब एक अलग अनुभूति होती है। नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा है जो शिवलिंग के सामने विराजमान है, भक्त पहले नंदी के दर्शन करते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। सुंदर नक्काशी है बहुत प्यारी, वो भी देखिए। और जो गर्भगृह है वहाँ पे बहुत ही शांत, और जो पूरा का पूरा वातावरण है काफ़ी अच्छा है। सुबह और शाम दोपहर की आरती, ये आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और उसके बाद मंदिर अरब सागर के किनारे है, इसलिए बाहर से समुद्र का मनमोहक नज़ारा दिखाई देता है और बहुत अच्छा लगता है। और पता है वहीं पास में एक बाण स्तंभ है, उस पे ज़रूर पढ़िएगा। वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि इस बिंदु से दक्षिण दिशा में अंटार्कटिका तक बीच में कोई भी भूमि नहीं है। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी डिटेलिंग को जानना। आप भी करके देखिए।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आपका स्वागत है। ये है तस्वीर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। सोमनाथ मंदिर जो कि दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिम छोर पे गुजरात प्रदेश में है,

घूमिए, जितना हो सके घूमिए, जैसा कि हर बार हम तस्वीर में आपसे यही कहते हैं, और सोमनाथ आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई सारी चीज़ें याद आएंगी, जैसे कि बुत जो टूटे तो किसी तरह बना लेंगे उन्हें, टुकड़े टुकड़े सही दामन में उठा लेंगे उन्हें, फिर से उजड़े हुए सीने में सजा लेंगे उन्हें। और तुम बनाओ तो खुदा जाने बनाओ क्या, अपने जैसा ही बनाया तो कयामत होगी, प्यार होगा न ज़माने में मोहब्बत होगी। और ये जो यात्राएं होती हैं ना, ये हमें सिखाती हैं कि हमें किस तरह से एक होके रहना है। ये हमें सिखाती हैं कि बहुत कुछ है जो अभी भी हम जान नहीं पाए हैं। और अगर ये बोध है हमें कि हमें तो सब कुछ पता है, तो असल में हमें पता ही नहीं कि हमें क्या नहीं पता है। कीजिए यात्रा और बनाइए अपने आप को बहुत धनवान। यही हम कहते हैं हर बार आपसे, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। तस्वीर आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर।

रखा, खाए ना खाए ते गल मिठी मिठी जरूर बोले। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर से मिलने के लिए 12 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 3 दिवसीय ओडिशा यात्रा का कार्यक्रम है। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीट के लिए मतगणना सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है, जहां 20 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज भी बाधित रही। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विपक्ष के सदस्यों ने फिर नीट पेपर लीक मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्ष से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया। विपक्ष के सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
1: सदन चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है।
0: राज्यसभा में भी

भूषण शरण सिंह और सहारोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया है। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि छह महिला पहलवानों में से एक द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने इस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम की धुन के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और झारखंड में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और आंगन। लेकर ढेर सारी जानकारियों और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। और आज के अंक में आपके साथ है आपकी रेडियो सखी कल्पना
1: और रश्मि कुकरेती। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल यानी कि मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: तो दोस्तों, कहते हैं ना, अगर मन में इंद्रधनुष देखने की चाहत हो तो भाई थोड़ी सी बरसात और थोड़ी दुश्वारियां भी देखनी पड़ती है। यानी जीवन में सफलता पाने के लिए रास्ते में कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। और भाई कठिनाइयां होती हैं कल्पना, तो फिर याद आते हैं हमें भगवान। और आज सावन महीने का पहला सोमवार है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को सावन का जो मास है बहुत प्रिय है और उनकी कृपा पाने के लिए लोग सावन के सोमवार का व्रत भी करते हैं।
0: बिल्कुल, और महादेव को प्रसन्न करने के लिए मैंने तो देखा है कि पूरे सावन कांवड़िए भी लंबी लंबी यात्राएं तय करते हैं और भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए वो अपनी मनोकामना पूरी हो इसलिए करते हैं। तो इसी से संबंधित है।

आज का हमारा प्रश्न भी कि श्रोताओं, जब आप व्रत या उपवास करते हैं तो आप क्या खाना पसंद करते हैं? तो आपके जो जवाब हैं वो आपको हमें ईमेल करने हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो चलिए अब हम भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं इस भजन के साथ।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे केदारनाथ फिल्म से, जिसे गाया अमित त्रिवेदी ने, और भक्ति के बाद कुछ बात देशभक्ति की, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।
1: जी, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां किसने नहीं सुनी होंगी कल्पना, है ना?
0: बिल्कुल, सबने ही सुनी होंगी। और भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध और पंचवटी जैसी महान कृतियों के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी की आज है जयंती, और उन्हें हमारी पूरी टीम की तरफ से सादर नमन,
1: श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं एफएम गोल्ड के स्टूडियो से। और साथ ही याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के महान गीतकार और उर्दू के प्रसिद्ध शायर शकील बदाउनी साहब को, 14वीं का चांद और प्यार किया तो डरना क्या, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, न जाओ सैया छुड़ा के मैया, और कहीं दीप जले कहीं दिल जैसे काल जई गीत उन्होंने लिखे। और 3 बार कल्पना उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, और उनकी जयंती पर उन्हें हम सादर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो सुन लें कल्पना उन्हीं का लिखा एक गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे गंगा जमुना फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर जी ने। और अब हम बढ़ते हैं अपने ईमेल्स की ओर, क्योंकि हमने शुरुआत में ही एक प्रश्न अपने श्रोताओं से पूछा था कि भाई आपको व्रत में क्या खाना पसंद है। तो हमारे श्रोता हैं कुछ, तो उन्होंने हमें ईमेल भेजा है। तो सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ ईमेल नवीन कुमार जी का।
1: नवीन कुमार
0: दो ईमेल आए हैं, एक नवीन कुमार जी हैं और एक नवीन भाटिया जी हैं। तो नवीन कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार, मैं नवीन कुमार आपका नियमित श्रोता, और आज के प्रश्न का मेरा उत्तर है कि उपवास में मुझे फल, मखाने और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन सबसे ज्यादा पसंद है। वे स्वादिष्ट भी होते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होते हैं। हमारे श्रोता कितने जागरूक हैं।
1: जी बिल्कुल, और देखिए जरूरी तो नहीं है कि सभी का उपवास हो। तो मधु जी कह रही हैं, मधु किरण जागृति इनक्लेव दिल्ली से कह रही हैं कि मुझे तो सावन में बारिश होते हुए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय को जो है पीना और परिवार को खिलाना बहुत पसंद है। और साथ में एसपी गोयल, सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से जुड़ गए हैं हमारे साथ, तो वो कह रहे हैं व्रत में हल्का फुल्का फलाहार और दूध आदि लेना चाहिए, पर केवल इतना लेना चाहिए कि पेट को बिल्कुल पता भी ना चले। बहुत अच्छी,
0: बिल्कुल ऐसे ही। देखिए नवीन भाटिया जी ने भी यही बात कही है कि वो जो है दूध तो लेते ही हैं, साथ ही वो सिंघाड़े के आटे से बने जो व्यंजन होते हैं वो खाते हैं, क्योंकि उनका उपवास रहता है।
1: जी, और भाई सावन में प्रकाश गोगिया जी कह रहे हैं कि मुझे तो खीर घेवर बहुत पसंद है। भाई घेवर और सावन का तो हम कहेंगे चोली दामन का साथ है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ऐसे ही हमें ईमेल करते रहें और हमें भेजते रहें अपने उत्तर fmgoldga@gmail.com पर। और अब हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी जानकारी भी आपको देनी जरूरी है श्रोताओं, क्योंकि रोजाना ना ही हम दिन विशेष की बात करते हैं, लेकिन ये जो पूरा सप्ताह है वो ही हम महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, जिसका उद्देश्य माताओं को स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूक करना और शिशुओं के स्वस्थ विकास को बढ़ावा देना है, क्योंकि वही बड़े होकर हमारे देश के भावी कर्णधार बनने वाले हैं।
1: जी, और साथ ही 3 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस, जिसका उद्देश्य प्रत्यारोपण के महत्व को समझना, अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अंगदाताओं और चिकित्सकों के योगदान का सम्मान करना है। और कल्पना कहा भी गया है कि अंगदान महादान है ना, जीवन दान। तो हम भी क्यों ना दिल बड़ा रखें और इस दिन के महत्व को समझें और अंगदान जैसी मानवीय पहलू से जुड़ें।
0: बिल्कुल जुड़ें, और साथ ही साथ एक मधुर सा गीत भी सुने हमारे श्रोता, तीन देवियां फिल्म से, जिसे गाया है लता।

0: और देखिए, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आखिरकार ख़त्म हो गए हैं और एक खूबसूरत सी क्लोजिंग सेरेमनी के साथ इन खेलों का अंत हो गया है। और इस क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लांबोरिया के पास रहा।
1: जी, और कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत के 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है, सभी पदक विजेताओं को उन्होंने बधाई दी है। और साथ में बेटियों ने, भारत की बेटियों का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन रहा।
0: बिल्कुल, और देखिए इस पे मुझे एक शेर याद आता है।
1: जी बिल्कुल,
0: कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तो ये सांचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
1: वाह वाह, क्या बात है।
0: और देखो ना, हमारे भारत की बेटियों ने न सिर्फ आंचल का परचम बनाया है बल्कि भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की हम बात कर रहे हैं तो भारत की बेटियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से पूरे देश का सिर गर्व से ऊँचा कर दिया है।
1: जी, और आइए बात करते हैं भारत की उन बेटियों की। तो भाई, सबसे पहले वेट लिफ्टिंग की, मीराबाई चानू ने महिला 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता और साथ ही ज्ञानेश्वरी यादव ने भी रजत पदक जीता 53 किलोग्राम वर्ग में। और अस्मिता डे ने जो स्वर्ण पदक जीता और यामिनी मौर्य ने फिर रजत पदक जीता। और फिर बॉक्सिंग में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।
0: बिल्कुल, बॉक्सिंग की बात करें तो भारत की बेटियों ने शानदार मुक्केबाजी का प्रदर्शन करते हुए देश को 5 स्वर्ण पदक दिलाए, जिनमें साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण जीतकर भारत को गौरवान्वित किया।
1: जी,
0: पैरा एथलेटिक्स में भी शर्मिला धनकर ने महिला शॉर्ट पुट PF57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि एथलेटिक्स में सीमा काली रामना ने महिला डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और उपलब्धि जोड़ी है।
1: तो भाई कल्पना, इन सभी बेटियों ने अपने साहस, मेहनत और प्रतिभा से ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं आज विश्व खेल मंच पर नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। पूरे देश को अपनी इन बेटियों पर गर्व है और इन पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने असाधारण कौशल, दृढ़ संकल्प और जो समर्पण का जो परिचय दिया है, उनकी मेहनत हमारे युवाओं को निरंतर प्रेरित करती रहेगी।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे सीता और गीता फिल्म से, जिसे गाया मन्ना डे और आशा भोसले ने।
1: और यहाँ पर भाई खेलों के बाद जो खाने पीने की बात जो कर रही थी तुम, तो ख्याला से उमेश कुमार जी कह रहे हैं कि मैं तो सावन में हमेशा नमकीन चीज़ें ही खाता हूँ, मुझे तो चाय पकौड़े बहुत पसंद है। और साथ ही मनोहर लाल गांधी जी कह रहे हैं विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से कि सावन के महीने में रिमझिम बरसात हो तो सबसे पहले काम बारिश के साथ गाने सुनता हूँ और साथ में भाई चाय पकौड़े हो जाए तो क्या बात है, नमस्कार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं रचना, सुमन, प्रियंका, मांगेराम, और वो कह रहे हैं नुहिया वाली सिरसा से कि हम तो व्रत के खाने के लिए आलू का हलवा और केला खाते हैं जी, आज हमारा सभी का उपवास है, वाह क्या बात है। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेल आ गई है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो एक फरमाइश लिखकर भेजी है, मिस्कीन परिवार, विष्णु मिस्कीन, रितिका वाणी मिस्कीन और आवर मिस्कीन, लेकिन हम बता दें ये फरमाइशों का कार्यक्रम नहीं है, ये तो घर आंगन है, आपका अपना कार्यक्रम, आपका अपना घर आंगन, आपके परिवार का कार्यक्रम। तो जो हम सवाल पूछते हैं ना कि सावन में आपको क्या पसंद है, आज के दिन व्रत के उपवास के दिन क्या खाते हैं। एक और हमारे पास मेल आ गया है सत्यप्रकाश सनोटिया रोहिणी से, कह रहे हैं कॉमनवेल्थ गेमों में जो अभी हमने बात की थी ना कल्पना, उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई बेटियों ने ऐसा कमाल कर दिया, जीतकर सोना चांदी तिरंगा आसमान में लहराया और हर बाधा को पार कर रच दिया नया इतिहास, पूरे भारत का मान बढ़ाया और जगाया नया विश्वास। भाई वाह क्या कविता है। मुझे लग रहा है कल्पना कि तुम्हारी कविताओं से प्रेरित होकर हमारे श्रोता भी कहते हैं ना कवि बन गए हैं घर आंगन के प्यार में।
0: बिल्कुल, हमारे श्रोता सुनते रहते हैं तो कहते हैं ना कि असर होता है संगत का, तो बातों का विचारों का भी संक्रमण होता है, असर होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, ईमेल एक और मेरे पास आया, अभी आप बोल रही थी कि आलू की बात कर रही थी कि भाई आलू का हलवा पसंद है, तो मुझे लगता है आलू के प्रेमी ज़्यादा हैं। तो राधा शुक्ला जी लिखती हैं कि मुझे भी आलू बहुत पसंद है, आलू फ्राई बहुत पसंद है, लेकिन साबूदाना खिचड़ी भी मैं खा लेती हूँ, पर आलू मेरा बहुत प्रिय है, तो उन्हें आलू खाना बहुत पसंद है। और ऐसे ही प्रदीप खंडेलवाल भी लिखते हैं कि भाई हम तो खाने के लिए ही बचपन में उपवास किया करते थे।
1: क्या बात है ये बात भाई, उपवास करना और खाने की इच्छा होना ये दो अलग बातें हैं, लेकिन हमारे श्रोता तो कुछ भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही। और देखिए एक और ईमेल है, गौरी शंकर वर्मा जी कहते हैं कि आप दोनों बेटियों को राम राम, वैसे हफ्ते में एक दिन व्रत करना चाहिए, इससे शरीर ठीक रहता है। अब हम कितनी भी कोशिश करें कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन व्रत के बहाने आदमी खाता नहीं है, कम ही खाता है, इसलिए शरीर को भी आराम मिलता है।
1: देखिए व्रत, उपवास और त्योहार जो है वो हमारी संस्कृति में से ऐसे जुड़े हुए हैं और ये हमारे जीवन शैली का तरीका ऐसा है कि जो हम प्रसन्न भी रहें और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रसन्न रहें, खुश रहें। और साथ में सुदर्शन मुखी जी हमसे जुड़ गए हैं शांति नगर सोनीपत से, और वो कह रहे हैं उपवास में तो हम फल का आहार लेना पसंद करते हैं क्योंकि फल से शुद्ध और शुभ कोई हो ही नहीं सकता, शाकाहारी है आहार है, तो आपको परिवार जो है वो सावन मास और जीवन बहुत सुख हो, शुभ हो और सुखद हो। कोटि धन्यवाद भाई, वाह क्या बात है।
0: बिल्कुल सही, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और सावन के मौसम का आनंद लीजिए। फिलहाल तो ये प्यारा सा गीत सुनिए।

0: दोस्तों ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने
1: जी। और उपवास का जो हमने खाना पूछा था ना कल्पना, तो ऋचा अवस्थी कह रही हैं कि आई लव साबूदाना की खिचड़ी, है ना, खिचड़ी भाषा ही बोल दी उन्होंने आई लव। और साथ में सुनील प्रजापति वो कह रहे हैं कि भाई उपवास में ज्यादा मसालेदार खाना मैं अवॉइड करता हूँ और जहाँ तक हो सके तो फल ही खाता हूँ। तो अच्छी बात है, सुनील प्रजापति जी है पुणे महाराष्ट्र से, तो ये तो अच्छी बात है। देखिए आप थोड़ा सा हल्का खाएं हैं और ऐसा खाएं कि भाई आप गतिशील भी रहें और आलस भी ना हो, है ना।
0: बिल्कुल सही बात कही। और देखिए भोजन तो आप अपने शरीर के लिए लेते ही हैं, लेकिन जो पर्यावरण है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार का जो माहौल है जिसमें आप सांस लेते हैं, आपके आसपास कैसा मौसम रहता है, हरियाली रहती है या कूड़ा कचरा रहता है।
1: कहीं और लेकर जा रही हो तुम।
0: बिल्कुल, हम इस पर भी बात करेंगे कि भाई देखो आजकल क्या है कि प्लास्टिक को हम बेकार समझकर कूड़े में फेंक देते हैं, और वही किसी दिन कभी किसी स्कूल पार्क या सड़क किनारे आपको आरामदायक बैठने की जगह भी बन सकता है। तो ऐसी ही एक उदाहरण की हम बात करेंगे। बिहार के सीतामढ़ी ने वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे को संपदा में बदलने की दिशा में एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, डिस्पोजेबल कप, प्लेट, चम्मच और पैकेजिंग सामग्री को इकट्ठा कर उसकी रिसाइकलिंग की जा रही है और इससे आकर्षक, मजबूत और टिकाऊ बेंच बनाई जा रही है।
1: यानी जो प्लास्टिक पहले नदियों, खेतों और कूड़े के ढेर में प्रदूषण फैला रहा था, वही अब लोगों के काम आ रहा है। वेस्ट टू वेल्थ यानी सिर्फ कचरे का निपटान करना नहीं है, बल्कि उसे एक नई उपयोगी वस्तु में बदलकर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ प्राप्त करना है। और इस पहल से ना कल्पना बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। भाई जैसे प्लास्टिक प्रदूषण कम हो रहा है, कचरे का बेहतर प्रबंधन हो रहा है और सार्वजनिक स्थानों के लिए टिकाऊ बेंच भी तैयार हो रही हैं, और रिसाइकलिंग उद्योग और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, पर्यावरण साफ सुथरा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात लोगों में रिड्यूस, रियूज और रिसाइकिल यानी जो 3 R हैं वो उसकी सोच मजबूत हो रही है।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल की सराहना मन की बात कार्यक्रम में की है, तो हमें अपने जीवन में इसे उतारने का भी संकल्प करना चाहिए। और ये बहुत आसान है क्योंकि यदि हम अपने घरों में गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और रिसाइकलिंग की आदत अपनाएं, तो हम भी इस बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल। देखिए हमें याद रखना है कि कचरा तभी तक कचरा है जब तक हम उसकी उपयोगिता को नहीं पहचानते। सही सोच और सही तकनीक से वही कचरा बन सकता है भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी। और जब कचरे का सदुपयोग होने लग जाए ना कल्पना, तो भाई रास्ते भी साफ सुथरे होंगे और पर्यावरण भी हरा भरा रहेगा।

0: श्रोताओं, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे आदमी फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। और आइए अब बात करते हैं थोड़ी सी मौसम के अनुसार कि भाई, मुझे दो पंक्तियाँ याद आती, मैं सुना दूँ।
1: जी बिल्कुल।
0: कि बरसे सावन भीगे मन मुस्कानों की हो बौछार, रूठे रिश्ते फिर से महके मिट जाए हर तकरार।
1: भाई क्या बात है, आज सावन का सोमवार है। मैं देख रही हूँ तुम बिल्कुल सावनी सावनी हो रखी हो और हरे रंग के कपड़े भी पहन रखे हैं सावन के अनुसार। और भाई क्यों ना हो, जी हाँ, हरी चूड़ियां भी हैं। भाई क्या बात है। तो भाई भोले बाबा के भक्तों के लिए तो आज का दिन बड़ा विशेष है। हमने गीत भी शुरुआत ऐसे ही किया था, लेकिन सावन की तो बात ही क्या है ना। तरह तरह के त्योहार आते हैं, तरह तरह के श्रावणी मेले लगते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, जब धरती पर सावन बरसता है तो दिलों में भी अपनापन खिल उठता है। सावन सिर्फ मौसम का नाम नहीं बल्कि रिश्तों की मिठास का एहसास भी है। तो सबसे पहले देखो, इस बार की मैं बात करूं तो देश प्रेम के भाव भरता हुआ स्वतंत्रता दिवस आएगा और वो हमें याद दिलाता है कि देश के साथ हमारा रिश्ता कितना अनमोल है।
1: और पूरा माह जो है वो तरह तरह के त्योहारों से भरा हुआ है। हरियाली तीज आएगी, नागपंचमी आएगी और रक्षाबंधन जैसे जो पावन पर्व है वो हमें याद दिलाते हैं कि रिश्ते जो है कल्पना केवल खून के नहीं होते बल्कि प्रेम और विश्वास और समय के से भी बनते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर हम अपनों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन सावन हमें ठहरना सिखाता है, मिलना सिखाता है, मुस्कुराना, हालचाल पूछना और दिलों की दूरियां मिटाना सिखाता है। जैसे बारिश की फुहारें ना सूखी धरती को नई हरियाली देती है ना, वैसे ही दोस्तों प्यार भरे जो दो शब्द होते हैं और थोड़ा सा अपनापन जब मिल जाता है तो भाई रिश्तों में भी सावन आ जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। तो आइए इस सावन केवल पेड़ पौधों को ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह विश्वास और संवाद की बारिश से सींचे, क्योंकि रिश्तों की असली हरियाली दिलों के जुड़े रहने में ही है। और इस बात पर ये दो पंक्तियां और मैं अपने श्रोताओं के लिए कहना चाहती हूँ कि प्रेम भरोसे अपने पन की रखें सदा पहचान, रिश्तों की हरियाली से ही खिलता है इंसान। तो आइए इस सावन सिर्फ धरती ही नहीं, अपने रिश्तों को भी स्नेह की फुहार से सींचे, यही है इस मौसम का सबसे
1: सुंदर संदेश।

0: दोस्तों, ये खूबसूरत संगीत अभी आप सुन रहे थे पड़ गए झूले बहू बेगम फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने। देखिए, झूले पड़ते हैं तो झूला झुलाने वाला भी कोई चाहिए होता है, और फिर जब वो आता है झूला झुलाता है तो सावन का असली आनंद आता है
1: जी। और एक मेल पढ़ देती हूँ, ये मेल हमें प्राप्त हुई है मयूर विहार से। सुरभि कह रही हैं कि उपवास का भोजन ऐसा होना चाहिए जो ऊर्जा दे, पचने में हल्का हो और लंबे समय तक पेट भरा रखे। तो वो कह रही है उपवास में जो कुछ लोकप्रिय व्यंजन और पौष्टिक भोजनों का उन्होंने नाम लिखकर भेजा है, कह रहे भाई साबूदाना खिचड़ी या कुट्टू के आटे की रोटी, दही के साथ आलू की सब्जी, सिंघाड़े के आटे का चीरा या हलवा, सामक के व्रत के चावल या खिचड़ी और पुलाव, भुने हुए मखाने, मूंगफली और दही, उबले और सेंधे नमक वाले आलू, ताजे फल जैसे केला से पपीता, अनार, दूध, दही, लस्सी और छाछ यदि आप व्रत में खा सकें तो, और नारियल पानी और नींबू पानी सेंधा नमक के साथ, वो कह रही हैं। और साथ में एक संतुलित मेन्यू उन्होंने बना के भेजा है, भाई सुबह थोड़े से भीगे बादाम और दूध केला ले लें, दोपहर में सामक की खिचड़ी, और शाम को अगर आपका मन करे तो थोड़ी सी आलू की सब्जी और कुट्टू की रोटी खा सकते हैं। तो बड़ा संतुलित सा उन्होंने बना के भेजा है भाई। इतने सारे व्यंजन, कल्पना तुम क्या खाने वाली हो?
0: मैं भी यही खाती हूँ। मैं एक्चुअली, मुझे भी आलू थोड़े से पसंद है तो मैं आलू खाती हूँ।
1: लेकिन हमारे श्रोताओं को तो गीत पसंद है,
0: श्रोताओं के गीत सुनाएंगे, लेकिन अब गीत सुनाने का आज हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि भाई बरसात का मौसम का आपको आनंद भी लेना है
1: जी।
0: गीत संगीत तो हमने सुनाया ही, लेकिन थोड़ी सी आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। जैसे हम व्रत के उपवास के व्यंजनों की बात कर रहे थे, तो मैं तो पता है क्या करती हूँ, मैं तो मखाने और मूँगफली भी भून के रख लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डालती हूँ सेंधा, और उसके बाद चाय के साथ उसका भी आनंद लेती हूँ। और कई बार जो आलू होते हैं ना, उनको पतला पतला काट के तवे पर,
1: आलू से हम बाहर निकलते हैं थोड़ा सा फलों की ओर आते हैं, है ना। और समय हो गया है दोस्तों से विदा लेने का, कल्पना।
0: बिल्कुल, तो आप अपना ध्यान रखिए श्रोताओं, और इसी जानकारी के साथ मुझे यानी कि आपकी रेडियो सखी कल्पना को
1: और रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: आंगन आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट पेपर लीक को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण आज बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। श्री राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर किए जा रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की और सदन की कार्यवाही जारी रखने का आग्रह किया, लेकिन गतिरोध जारी रहने पर सदन को पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
1: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखा भाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से

0: सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में समीर राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल तथा युवा कार्यक्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। संसद के दोनों सदनों ने भी आज राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। गोप बंधु दास ओडिशा के एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने ओडिया दैनिक द समाज की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment at 12 noon, Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognised centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. The opposition members came to the well demanding Union Home Minister Amit Shah's reply over the alleged police action during students' protest over the NEET issue. The presiding officer urged the members to go back to their seats as the pandemonium continued. The Lok Sabha was adjourned till 2 p.m. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
2: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
1: Union Minister Sanjay Seth and an MP from Jharkhand has alleged serious irregularities in the recruitment process for the Jharkhand Public Service Commission examination, claiming that deserving candidates were denied selection while candidates with significantly lower marks were selected. Talking to Akashvani News, he criticized the Jharkhand government and said no state government representative had met the protesting students despite the ongoing situation. The counting of votes for the by-elections in three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bankipur assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by 21,941 votes. In Gujarat's Manjalpur assembly constituency, BJP candidate Satyendra Bhai Patel is leading by 37,542 votes. In Madhya Pradesh's Datia Assembly constituency, Congress Party candidate Ghanshyam Singh is leading by 1,786 votes. Polling for the three assembly constituencies was held on the 30th of last month. A Delhi court today acquitted former Wrestling Federation of India chief Brijbhushan.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे ऑफिस के लिए जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे बहुत तेज़ ज़ुकाम था, खांसी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मन ही मन में सोच रही थी कि आज गाने किसके सुनने वाली हूँ, तो यकीन मानिए मैं भूल गई कि मेरा गला भी ख़राब है। हाँ जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में बातें एक ऐसे संगीतकार की जिनका जो संगीत है वो हमें ले जाता है एक अलग ही दुनिया में, जिनकी बनाई धुनें उनकी सोच की तरह सूफियाना है। आज भी सुनते हैं तो बस खो ही जाते हैं जैसे मैं खो गई। वैसे एक बात बताऊं आपको, इनकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि इन्हें 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। गाना सुनिए, पहचानिए।

लता मंगेशकर की आवाज में प्रेम पर्वत फिल्म का ये गाना आपने सुन लिया है बिल्कुल अभी, संगीत जयदेव का। और कोई भी भटक जाए अपने रास्ते से, अपनी मंजिल से, इस गाने को सुनने के बाद खो जाए बस इसके संगीत में और गीतों के बोल में। वैसे दोस्तों, अक्सर हमें मशवरा दिया जाता है कि भटकना नहीं चाहिए, सही रास्ता चुनो जो सीधा मंजिल की तरफ जाए, लेकिन जयदेव ने इसके उलट अलगाव और भटकाव को चुना। सारी उम्र सूफियों की तरह गुजारा किया, नई नई चीजें सीखी और कभी रुके नहीं। जयदेव का जन्म नैरोबी केनिया में हुआ था, जहां उनके पिता का बिजनेस हुआ करता था। 3 अगस्त 1919 को उनका जन्म हुआ, यानी कि आज ही के दिन। थोड़े बड़े हुए तो लुधियाना आकर बस गए। फिल्मों से लगाव ने उनकी मंजिल पहले ही तय कर दी थी, लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो बहुत ज्यादा मुश्किल थे।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लैला मजनू फिल्म का ये गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस गाने को सुनने के बाद, उन्हें लगता है कि ये जो गाना है ये मदन मोहन ने कंपोज़ किया है क्योंकि क्रेडिट उन्हीं को दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लैला मजनू फिल्म के जो दो गाने हैं वो जयदेव ने कंपोज़ किए थे, जिनमें से एक गाना ये है। मदन मोहन इस एल्बम पर काम कर रहे थे लेकिन इसी बीच बीमारी की वजह से वो चल बसे और इस फिल्म के जो बाकी गीत हैं उनको कंपोज करने की जो जिम्मेदारी है वो जयदेव को दी गई, जिनमें से एक गाना ये था जो मैंने बिल्कुल अभी आपको सुनाया। और भी ढेर सारी बातें होंगी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है, यहीं जमे रहिए।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर,
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हंड्रेड पॉइंट वन मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। कलाकार बेमिसाल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, बातें हो रही हैं म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव की। दोस्तों, एक साक्षात्कार में खुद जयदेव अपनी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत देखी जिंदगी, न कोई शिकवा न शिकायत, मस्त मौला रहा हूँ, जो मिला खाया पिया और जिया। आगे जयदेव कहते हैं कि तमन्नाओं पर न्योछावर हो जाने की उनकी दास्तां रही है। वो छठी में थे जब फिल्म देखी थी अली बाबा 40 चोर। इसमें मिस कज्जन यानी कि जहां आरा ने एक गीत गाया था, खुल जा सिमसिम। ये गाना जयदेव को इतना भाया कि उन्होंने मुंबई की राह पकड़ ली। उम्र बहुत ही कम थी उस वक्त। परिवार उन्हें फिर से लुधियाना ले आया। वापस आकर उन्हें संगीत की शिक्षा लेने के लिए एकेडमी ज्वाइन करवाई गई। यहीं पर जयदेव की मुलाकात स्टंट फिल्मों की एक्ट्रेस एमलीन से हुई। एमलीन ने ही जयदेव को मिलवाया था एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से, जहां से जयदेव ने एक एक्टर के तौर पर काम करना शुरू किया था। जी हाँ, आप चौंक गए होंगे, एक्टर के तौर पर ही उन्होंने काम किया था सबसे पहले। आगे की कहानी सुनाऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले रेडियो के पास पहुंच जाओ बस, लता मंगेशकर की आवाज़ में एक और बहुत ही प्यारा सा गाना।

वाकई इन गानों का कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने तुम्हारे लिए फिल्म का एक गाना सुना जिसे कंपोज किया है जयदेव ने। और जयदेव की बातें हम कर रहे हैं, कैसे उनका करियर आगे बढ़ा। बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि जयदेव ने अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत है एक बाल कलाकार के तौर पर की थी। उनकी पहली फिल्म थी वामन अवतार, जिसमें नारद मुनि का रोल किया था जयदेव ने। लेकिन जयदेव यहीं पर नहीं रुके, चार फिल्में की, फिर लौट आए अपने पंजाब। यहां आकर घर के हालात देखे तो ट्यूशन पढ़ाने लगे, मन फिर से उचटने लगा तो फिर पंडित उदय शंकर और इसके बाद लखनऊ के उस्ताद अली अकबर खान से शास्त्रीय संगीत सीखने लगे। उस्ताद अली अकबर खान जयदेव के करियर को एक अलग मुकाम पर ले गए। उन्होंने जयदेव की मुलाकात

जी बर्मन साहब से करवाई। जयदेव ने कुछ वक्त अली साहब के साथ काम किया असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर, इसके बाद जुड़ गए एस जी बर्मन साहब के साथ। और इस दौरान एक बात पक्की हो चुकी थी कि जयदेव को इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे बस अब म्यूजिक डायरेक्टर ही बनना है। चलिए एक गाना मैं आपको सुनाती हूँ एक ऐसी फिल्म से जिसका संगीत पूरी तरह से जयदेव ने तैयार नहीं किया है, लेकिन इस संगीत में उनका जो योगदान है वो है, पूरा नहीं है लेकिन है। पहले गाना सुनो, फिर बताती हूँ आपको कि क्या वजह है जो मैं ऐसा कह रही हूँ।

0: बात है
1: जी, बिल्कुल बात है इस गाने में, और बहुत बड़ी बात है। और बात कुछ इस तरह से है कि गाना तो ये गाया है किशोर दा ने, इसका संगीत दिया है SD बर्मन साहब ने, लेकिन दो और लोग हैं जिनका योगदान रहा है इस गाने के संगीत को तैयार करने में, और वो दो लोग हैं, एक है RD बर्मन साहब और एक है जयदेव। जी हाँ, जयदेव ने SD बर्मन साहब के असिस्टेंट के तौर पर

कई फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि एसडी बर्मन साहब जयदेव की जो संगीत के प्रति लगन और समर्पण था उससे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे। एसडी बर्मन अक्सर कहा करते कि मेरे दो बेटे हैं, बड़ा बेटा जयदेव और छोटा पंचम। जयदेव ने उनसे बहुत सीखा और ये जो एक्सपीरियंस है ये जयदेव के हमेशा काम आया। जयदेव की जो व्यक्तिगत पहचान है हालांकि वो बनी नवकेतन की जो फिल्म है हम दोनों से। मुझे पता है इस फिल्म का नाम लेते ही दिमाग में घंटियां बजने शुरू हो गई होंगी, है ना? जी बिल्कुल, है ही ऐसी बात। इसके सारे गाने यादगार और सदाबहार थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, एक भजन है बहुत ही मशहूर इस फिल्म का, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, और इसको तो बिल्कुल अमर ही बना दिया जयदेव के संगीत ने। लता जी ने जितने भी स्टेज शो किए उस जमाने में इस भजन की जो फरमाइश है वो ज़रूर हुआ करती थी। और एक वो गाना जो आप अभी दिल ही दिल में गुनगुना रहे हैं, उस गाने ने तो बिछड़ने को इतना रोमानी बना दिया कि बस जैसे दिल से निकली हुई आवाज़ हो। हाँ हाँ सुना रही हूँ, ठहरो ज़रा।

0: दिल तो भरता ही नहीं है इस गाने से, ये बहुत ज्यादा सुना जाता है रेडियो पर और जितनी बार भी सुनाओ हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं नहीं अभी नहीं, फिर से सुना दो अभी मत जाओ। दोस्तों ये गाना आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, हम दोनों है फिल्म का नाम जिसका ये गाना था और संगीत जयदेव का। और भी बातें हैं जयदेव के बारे में जो करनी है मुझे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ है आप, कलाकार बेमिसाल में स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और दोस्तों बातें हो रही हैं जयदेव की। दोस्तों जयदेव के संगीत की एक बेहद खास बात की रही कि शास्त्रीयता और लोक परंपरा दोनों का मिलन उनके संगीत में रहा। दूसरी बात यह कि जयदेव ने कभी मशहूर आवाजों के लिए संगीत से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्हें अपनी रचना में जो जहां फिट लगा उसे वहां काम दिया। परवीन सुल्ताना, हीरा देवी मिश्र, छाया गांगुली, भूपेंद्र, दिलराज कौर, रूना लैला, शर्मा बंधु, मधुरानी, फयाज, मीनू पुरुषोत्तम, नीलम साहनी, इन सभी गायकों को जयदेव ने बेहतरीन मौके दिए। नई प्रतिभाओं को हमेशा उन्होंने काम दिया। जयदेव के कंपोज किए गानों का जादू आज भी बरकरार है। उन्होंने अभी भी आप कभी रेडियो ऑन करें या कहीं भी आप सोशल मीडिया पर सुने तो उनके गाने सुनाई दिए जाते हैं, जैसे कि लैला मजनू, घरौंदा, मुझे जीने दो, गमन, प्रेम पर्वत, रेशमा और शेरा, अनकही, किनारे किनारे, एक थी रीटा, तुम्हारे लिए, दूरियां, 16 साल, बहुत सारी उनकी फिल्में हैं जिनके गाने आज भी चाव से सुने जाते हैं। और दोस्तों जयदेव को अपनी रचनाओं के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड मिला, रेशमा और शेरा, गमन और अनकही के संगीत के लिए जयदेव को ये सम्मान दिया गया। चलिए एक बार फिर से आपको लेके चलते हैं जयदेव की रूहानी दुनिया में इस गाने के साथ।

तो दोस्तों, एक गाना आपने सुना गमन फिल्म से, सुरेश वाडकर की आवाज में संगीत जयदेव का। दोस्तों, जयदेव ने अपनी पूरी जिंदगी संगीत की साधना में बिता दी। उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वे अपने रिश्ते को वक्त नहीं दे पाएंगे। उन्हें संगीत से बहुत ज्यादा लगाव था। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू में खबरें, और हाँ, उसके बाद 2:30 पर फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए। संगीत.com लेकर तो इंतजार कीजिएगा मेरा, है ना।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमन अली खान। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हिरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबरा ब्रिजभूषण शरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीक शुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर तीसरे मकाम पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अमन बातचीत आज होने की उम्मीद है। और मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। अब खबरें तफसील से। कई मामलात पर अपोजिशन अरकान की हंगामा आराई के तनाजुर में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इनमें नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला भी शामिल है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब दिन में 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो आदादोशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद से मुतालिक महकमे के वजीर राव इंद्रजीत सिंह ने आदादोशुमार से मुतालिक भारतीय इंस्टीट्यूट बिल 2026 पेश किया। मस्कूरा बिल का मकसद आदादोशुमार के उलूम और मुतालिका शोबों में आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मरकज के तौर पर मस्कूरा भारतीय इंस्टीट्यूट के लिए एक जामे आईनी फ्रेमवर्क फराहम करना है। इधर वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 पेश किया। इसका मकसद बैंकर्स बुक्स के ताल्लुक से शवाहिद से मुतालिक कानून मुरतब करना और इसे मौजूदा डिजिटल बैंकारी तौर तरीकों के साथ हम आहंग बनाना है। इधर अपोजिशन के अरकान नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई के मामले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जवाब का मुतालबा करते हुए ऐवान के वस्त में आ गए। इससे कबल जब दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की।
1: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
0: राज्यसभा में भी मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के तनाजुर में ऐवान की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। आज दिन में 11 बजे जब ऐवान बाला की कार्रवाई शुरू हुई तो चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने ग्लासगो

0: में दौलत मुश्तरका खेलों में शानदार कारकर्दगी के लिए भारतीय खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। जनाब राधाकृष्णन ने इसके बाद वक्फा सिफर की कार्रवाई शुरू की। अपोजिशन अरकान ने मुख्तलिफ मामलात पर नारेबाजी शुरू कर दी। मरकजी वजीर संजय सेठ और झारखंड से ताल्लुक रखने वाले एक मेंबर पार्लियामेंट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए भर्ती के अमल में संगीन बेसाबदगियों का इल्जाम लगाया है और यह दावा किया है कि मुस्तैक उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं किया गया, जबकि उन उम्मीदवारों को चुन लिया गया जिनके नंबर बहुत कम थे। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जनाब संजय सेठ ने झारखंड सरकार पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि एजिटेशन जारी रहने के बावजूद रियासती सरकार के किसी भी नुमाइंदे ने एहतजाज करने वाले तलबा से मुलाकात नहीं की। इधर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने लोकसभा की इस्तेहकाक कमेटी को एक नोटिस पेश किया है और पार्लियामेंट के अहाते में आजाद मेंबर पार्लियामेंट पप्पू यादव की जानिब से मुराद शिकनी का इल्जाम आयद किया है। पार्लियामेंट अहाते में नामनगारों से बात करते हुए जनाब संजय जायसवाल ने इल्जाम लगाया कि जनाब पप्पू यादव ने आईन की दफा 25 की खिलाफवर्जी की है जो मजहब की आजादी की गारंटी देता है।
1: भारत का संविधान जो 25 के तहत हर धर्म के सम्मान को ही आजादी देता है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। लोकसभा का ये जो पूरा प्रेमिसेज है, इसके कस्टोडियन माननीय स्पीकर महोदय हैं और मकर द्वार के सामने भी जो कुछ हुआ है उस पर हर हालत में स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। बिहार के बांकीपुर असेंबली हलके में जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर 28,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मंजलपुर असेंबली हलके में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल को 46,000 से ज्यादा वोटों की सबकत हासिल है। मध्य प्रदेश के दातिया असेंबली हलके में कांग्रेस के घनश्याम सिंह 31,000 से ज्यादा वोटों से आगे हैं। इन तीनों असेंबली हलकों में जिमनी चुनाव पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने कुश्ती की खातून खिलाड़ियों की जानिब से दाखिल करदा जिंसी तौर पर हिरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रजभूषण शरण सिंह और साथी मुलजिम विनोद तोमर को इल्जामात से बरी कर दिया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने बीजेपी के साबिक मेंबर पार्लियामेंट ब्रजभूषण और भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इससे कबल मई 2024 में एक अदालत ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ डराने धमकाने का इल्जाम तय करने का हुक्म दिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब किस्मत साथ ना दे तो उस वक्त भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक हुनरमंद मल्लाह जिसकी कश्ती बीच समंदर में फंस जाती है, वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता बल्कि तैरकर कोशिश जारी रखता है और यही मुसलसल कोशिश और सब्र किसी शख्स को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। अपने इस दौरे में सदर जमहूरिया गंजुम जिले में मुख्तलिफ तालीमी, सकाफती और सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत करेंगी। भारत में 2023 में डिजिटल प्लेज पोर्टल के आगाज के बाद से 3 साल के अरसे में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5 लाख से ज्यादा वादे किए गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजीर ममलुकत अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली में आजा के अतिया के 16वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए इस बात को उजागर किया कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत में आजा बदलने के मामले बढ़कर 20,000 सालाना हो गए हैं।
2: हमने आज जुग जुग जियो अभियान को प्रारंभ किया है। ये अभियान देश के आम जनमानस के बीच में अंगदान के महत्व को लेकर जाएगा और मेरा सभी देशवासियों से यही कहना है कि हमारे इतिहास में अंगदान को हमेशा महादान के रूप में देखा गया है।
0: मोहतरमा अनुप्रिया पटेल ने यह भी कहा कि आजा बदलने की तादाद के एतबार से अमरीका और चीन के बाद आलमी सतह पर भारत 3रा मुल्क है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सालिसों के तवसुस से ईरान के साथ बातचीत आज होने वाली है। एयरफोर्स वन में सवार नामनिगार से बात करते हुए सदर ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की कि मुजाकरात के वसीले सरगर्म हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और ईरान के साथ सिफारती राबतों के तनाजुर में उन्होंने इस कार्रवाई को रोक दिया जिसके तहत एक बड़ा हमला करने का मनसूबा बनाया गया था। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, जिली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। उधर ओडिशा में सभी बड़े दरियाओं और उनकी 52 नदियों में पानी की सतह कम होने के साथ ही सैलाब की सूरत हाल में रफ्तार रफ्तार बेहतरी आ रही है। ये खबर भी सुन लीजिए। बिहार के बांकीपुर असेंबली के जिमनी चुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के एहतजाज के तनाजुर में पार्लियामेंट की कार्रवाई में आज भी रुकावट पड़ी है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। दिल्ली की एक अदालत ने जिंसी एतबार से हरासा किए जाने के केस में भारत की कुश्ती फेडरेशन के साबिक सरबराह ब्रिजभूषण चरण सिंह को इल्जाम से बरी कर दिया है। भारत में आधार के जरिए तस्दीकशुदा आजा अतिया में देने के 5,00,000 से ज्यादा वादे किए गए हैं। आजा बदलने की तादाद के एतबार से भारत आलमी सतह पर तीसरे मकाम पर है। अमरीका और ईरान के दरमियान अगले दौर की अहम बातचीत आज होने की उम्मीद है। और मौसमियात के महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in 3 assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brijbhushan Charan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5,00,000 Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. Both Houses of Parliament have been adjourned till 2 p.m. amid opposition ruckus over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. The bill seeks to provide for a comprehensive statutory framework to the Indian Statistical Institute to excel as a globally recognised centre in statistical sciences and allied fields. Finance Minister Nirmala Sitharaman also introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. It aims to provide for a law relating to evidence with respect to bankers' books and align it with contemporary digital banking practices. Earlier, when the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the same issue. When the upper house assembled at 11 a.m., the ministers laid papers on the table of the house. Chairman C.P. Radhakrishnan congratulated Team India for its outstanding performance at the Commonwealth Games held at Glasgow.
4: India secured an impressive fourth position in the Commonwealth Games medal tally, winning 39 medals overall. Scripted history by registering their best ever performance at the Commonwealth Para Games. The remarkable achievement has brought immense pride and honor to the nation and bear testimony to the growing excellence of Indian sportspersons.
3: Mr. Radhakrishnan then took up 0 hour in the upper house. Opposition members started sloganeering over their issues. Amid uproar, several members raised issues of urgent importance. As the ruckus continued, the chairman adjourned the house till 2 p.m. Counting of votes for the by-elections to three assembly constituencies is underway. In Bihar's Bakipur assembly constituency, Jan Suraj Party candidate Prashant Kishore is leading by over 8,000 votes.

0: glory to the nation in the future international events. We have news just in. The Lok Sabha has passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament proceedings disrupted following opposition protest over several issues. Counting of votes for by-elections in three assembly constituencies of Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh underway. Delhi court acquits former WFI chief Brij Bhushan Sharan Singh in sexual harassment case filed by some women wrestlers. India achieves over 5 lakh Aadhaar verified organ donation pledges, stands third globally in number of organ transplants. US and Iran expected to hold next round of peace talks today. And Weather Department forecasts heavy to very heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Bihar, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for today. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रक्रियाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 30 स्थान पर। अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की बातचीत संभावित। और अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की आशंका। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। बिहार से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: पिछले 30 सालों से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने शुरुआती बढ़त बना ली है। प्रशांत किशोर मतगणना की शुरुआत के साथ ही प्रत्येक राउंड की गिनती में लगातार आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज कुमार हैं, जिन्हें अब तक 15,000 से ज्यादा मत मिले हैं। वहीं आरजेडी की रेखा कुमारी 4,000 से अधिक मतों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। उपचुनाव में कुल 25 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के अप्रैल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया था। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे फिर से आरंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बहीखातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया। इसके बावजूद गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
3: विपक्ष से कई सदस्यों ने अपोज करने का नोटिस दिया है, अभी मैं उनके नाम भी पढ़ा हूँ। आप उनको मौका देंगे नहीं देंगे, आप सोचिएगा। इस तरह ये प्लेकार्ड लेके आना, पहली बार कई बार बोल चुके हैं, इट इज अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन नॉट डू दिस। अगर आप इसी तरह चलते हैं तो कैसे आगे चलेगा।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण अध्यक्ष सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दोपहर 2 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। इससे पहले दोनों सदनों की ओर से ग्लासगो में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी गई। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत के पैरा एथलीटों ने भी 3 स्वर्ण 2 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल पैरा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इतिहास रचा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि अगले राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2030 में गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होंगे।
4: कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी कर दिया। इस मामले में मई 2024 में एक अदालत ने श्री सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था। हालांकि 6 महिला पहलवानों में से एक के द्वारा दायर शिकायत में उन्हें बरी कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि प्रत्येक सड़क पर पैदल यात्रियों के लिए उचित रूप से सीमांकित और अतिक्रमण मुक्त स्थान फुटपाथ सुनिश्चित किया जाए। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज को संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा, जिसमें पैदल यात्रियों के लिए निर्धारित स्थान को मोटर वाहनों के लेन से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके और उन्हें अतिक्रमण मुक्त रखा जा सके। पीठ ने कहा कि लक्ष्य बिना किसी बड़े निवेश या निर्माण के प्राप्त किया जा सकता है। भारत ने वर्ष 2023 में डिजिटल अंगदान पोर्टल के शुभारंभ के बाद से 3 वर्ष के भीतर आधार सत्यापित अंगदान प्रतिज्ञाओं का 5 लाख से अधिक का आंकड़ा पार कर लिया है। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्ष में भारत में अंग प्रत्यारोपण की संख्या प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान को प्रोत्साहित करने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने राष्ट्र से अंगदान को सबसे बड़ा दान मानने की अपील की है।
5: आप एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहें और भोजन आहार ऐसा लें जो आपके शरीर को बीमारियों से मुक्त रखे, और उसके बाद भी यदि ऐसी परिस्थितियां विकसित होती हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में कि उसे अंगों की आवश्यकता पड़े, तो समाज के बीच में से हमको इन प्रयासों को बढ़ाना होगा।
1: इस अवसर पर सुश्री अनुप्रिया पटेल ने एक साल तक चलने वाले जुग जुग जियो अभियान का शुभारंभ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बल मुख्यालय AFHQ की सेवाएं रक्षा मंत्रालय की संस्थागत धरोहर हैं। वे आज नई दिल्ली में AFHQ असैन्य सेवा दिवस के अवसर पर संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। श्री सिंह ने AFHQ की सेवाओं को राष्ट्र के निर्णायक शक्तियों में से एक बताया।
6: किसी भी सेना को शक्ति केवल हथियारों और गोले बारूदों से ही नहीं मिलती है, बल्कि उन हजारों ऐसे अदृश्य लोगों के द्वारा भी मिलती है जो हमेशा उसके पीछे, उसके सपोर्ट में सदैव पूरी लगन के साथ खड़े रहते हैं। आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविलियन सर्विसेज उन्हीं अदृश्य लेकिन निर्णायक शक्तियों में से एक है।
1: केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत उज्बेकिस्तान आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया है और अगले 3 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य अधिक निवेश, व्यापार बाधाओं में कमी और स्वास्थ्य सेवा तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहन सहयोग के माध्यम

0: माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज्बेकिस्तान व्यापार मंच में उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के व्यवसायों में उपलब्ध अवसरों में निवेश करने पर ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग और व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव भी उपस्थित थे। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है। लोगों से इस तरह की भ्रामक सामग्री से सावधान रहने का आग्रह किया गया है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिन की बैठक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की ओडिशा यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। कर्नाटक में आज शाम 20 नए मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लोकभवन में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही डीके शिवकुमार मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 34 हो जाएगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: काफी निरीक्षा के बाद आज कर्नाटका में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के करीबी माने वाले विधानसभा सदस्यों को मंत्रिमंडल में स्थान प्राप्त हुआ है और कुछ सदस्य जो सिद्धरामैया के करीबी माने जाते थे उनको बदला गया है। सिद्धरामैया और शिवकुमार के मंत्रिमंडल में 13 बदलाव देखे जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी द्वारा जीएस पाटिल को असेंबली स्पीकर और सलीम अहमद को काउंसिल के चेयरपर्सन के स्थान के लिए चुना गया है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज अगले दौर की शांति वार्ता हो सकती है। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मानवाधिकार समूहों का आरोप है कि हताहतों की संख्या काफी बढ़ गई है। इस इलाके की मानवाधिकार परिषद की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मरने वालों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कल तेज बारिश की संभावना है। अगले 2 दिन तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी इसी तरह का मौसम रहने की आशंका है। तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तरी आंध्र कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कारैक्काल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में आज हल्के से मध्यम बारिश की भी संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में पानी का स्तर कम हो गया है। राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान का विस्तृत आकलन शुरू कर दिया है और जिन परिवारों के घर पूरी तरह से नष्ट हो गया है उन्हें 1,20,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों और फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा की घोषणा की गई है। हालांकि भद्रक और जाजपुर जिलों के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि और सब्जियों की फसलें बह गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के विभिन्न देवस्थानों में सुबह से विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।

तमिलनाडु में आज आषाढ़ माह का 18वां दिन है। इसे आषाढ़ पेरुक्कु कहा जाता है और ये देवी अम्मन को समर्पित है। इस त्यौहार में कृषि का आधार रही नदियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जाती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना जारी। दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। अमरीका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांतिवार्ता संभावित। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप और आप सभी का स्वागत है संगीत.com में।

प्यार का मौसम फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, संगीत आर डी बर्मन साहब का। और दोस्तों इस फिल्म में ये जो गाना है तुम बिन जाऊं कहां, ये तीन बार है, इसके तीन वर्जन हैं और ये वाला जो वर्जन है ये सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। दोस्तों आप तो जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी अपने ज़माने के एक ऐसे गायक रहे हैं जिन्होंने हर तरह के गीतों को आवाज़ दी है। उनके मोहब्बत भरे जो गाने थे वो उतने ही ज़्यादा मशहूर रहे, उनके दर्द भरे गाने भी। उस दौर के लगभग सभी सितारों के लिए जो मोहम्मद रफ़ी के गाने थे वो बहुत अजीज़ हुआ करते थे। इनफैक्ट शम्मी कपूर साहब तो उनके बहुत बड़े दीवाने थे। शम्मी कपूर मोहम्मद रफ़ी को इतना पसंद किया करते कि उनके गीतों की रिकॉर्डिंग में भी शामिल होते। एक बार की बात है, एक गाने के लिए उन्होंने मोहम्मद रफ़ी को चैलेंज दिया और कहा कि अगर तुमने इस गाने का जो मुखड़ा है वो एक सांस में गा दिया तो ये गाना हिट हो जाएगा। रफ़ी साहब ने बिना रुके एक सांस में इस गाने का मुखड़ा गा दिया। कमाल की बात ये रही कि वो गाना हिट नहीं बल्कि सुपर हिट हो गया। सुनाती हूँ वो गाना।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ब्रह्मचारी फिल्म का गाना आपने सुना बिल्कुल अभी। और दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
0: पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस प्रोग्राम में हम बातें करते हैं गानों की, उन गानों की जो बहुत ज्यादा पसंद किए गए और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कहानियां आपको सुनाते हैं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब के गानों के जो कद्रदान हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में थे। देवानंद की फिल्म का एक गाना है, उनकी फिल्म गैम्बलर का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में और ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। इस गीत को ख़ास तौर से एक हॉलीवुड फिल्म के एक सीन में रखा गया था, ये बैकग्राउंड में बजता है और फिल्म का नाम है इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। वैसे ये जो ओरिजिनल गाना है ये देव साहब पर फिल्माया गया था और गाना शायद आप पहचान गए हों।

गैम्बलर फिल्म का ये गाना है जो आपने सुन लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। संगीतकार हैं एस डी बर्मन साहब। और दोस्तों एक और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है जिसकी दीवानगी सालों बाद भी कम नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता है कि इस ज़माने के लोग भी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं उन्हें और उम्मीद करते हैं कि किशोरदा की जो आवाज़ है उसका जादू यूं ही बरकरार रहेगा। दोस्तों किशोरदा एक मनमौजी कहे जाने वाले गायक थे। अक्सर सुनने को मिलता है कि किशोरदा गाने से पहले गाने का मूड बना लिया करते थे और इसमें संगीतकार भी उनका पूरा पूरा साथ दिया करते। अब एक बेहद रोमानी गाना है किशोरदा की आवाज़ में, जिसका पिक्चराइजेशन जो है ना वो बड़ा रोमांटिक सा है। इसे जब रिकॉर्ड किया गया तो माहौल भी उनको ऐसा ही दिया गया, क्योंकि संगीतकार ऐसा महसूस करते थे कि अगर किशोर का मूड हमने बना दिया वैसा जैसा गाना है तो फिर गाना भी वैसा ही निकलेगा जैसा हमें चाहिए। तो पहले गाना सुनिए, उसके बाद सुनाती हूँ कहानी।

0: कोई हमसे ना।
1: नहीं भाई, भूल कैसे हो सकती है, क्योंकि संगीत तो आर डी बर्मन साहब का है और वो परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, किशोरदा के करियर का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है आराधना। इस फिल्म के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर किशोरदा बस छा गए थे। यूं तो किशोरदा इससे पहले भी अपनी पहचान बना चुके थे, उन्हें करीब करीब सभी संगीतकार बहुत अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि किशोरदा गाना इतनी आसानी से नहीं गाते हैं जब तक कि उनका मूड नहीं होता है। अब जैसे कि ये जो गाना है, इस गाने को बेहतरीन बनाने के लिए आर डी बर्मन साहब ने स्टूडियो के सारी लाइट्स ऑफ कर दी थी और हल्की सी मध्यम रोशनी में इसे रिकॉर्ड किया गया, और रिजल्ट तो आपने सुना ही है। ये गाना सुनकर कोई भी प्यार में डूब जाए, है ना। चलो ठीक है, हम और प्यार को बढ़ाते हैं, एक गाना और सुनाते हैं आपको, रोमांटिक वाला, कहीं ना जाना।

0: जूल थीफ फिल्म का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर दा की आवाज में। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक पर चलते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहीं बने रहें।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप। संगीत.com में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सुना रही हूँ गानों के साथ जुड़ी कुछ कहानियां। अब जैसे कि 1998 वाले एरा में आपको लेके चलते हैं। एक बहुत ही कामयाब फिल्म आई थी कुछ कुछ होता है। पूरे म्यूजिक एल्बम में कुल 8 गाने थे और सभी बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे। वैसे जो कुछ कुछ होता है फिल्म का टाइटल ट्रैक है, इसके बोल गीतकार समीर ने लिखे थे, लेकिन इसका जो आइडिया है वो किसी और गीतकार ने दिया था। जी हाँ, गीतकार और शायर जावेद अख्तर साहब ने ये जुमला कुछ कुछ होता है सुझाया था, जिसे आगे बढ़ाया गीतकार समीर ने और ये इतना पसंद किया गया कि फिल्म का नाम भी इसी पर रख दिया गया और बार बार फिल्म के डायलॉग्स में भी इसे इस्तेमाल किया गया। ये शब्द इतने ज़्यादा लोकप्रिय रहे कि सालों बाद भी लोग बोलते रहते हैं, तुम नहीं समझोगे कुछ कुछ होता है। जी हाँ,

दोस्तों, कुछ कुछ होता है फिल्म का गाना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आपने सुन लिया है। फिलहाल तो वक्त हो चला है मेरे जाने का, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप सुन सकते हैं। फिलहाल अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और इंग्लिश में समाचार। बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा को पहले दोपहर 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न कर रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही आज पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जब फिर से प्रारंभ हुई तो पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद चनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। उसके बाद भी हंगामा जारी रहा। उधर राज्यसभा को भी इन्हीं मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। सदन की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी और हंगामा जारी रहने के कारण सभापति ने सदन को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया। फिलहाल कार्यवाही जारी है। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में 33 से बढ़ाकर 37 करना है। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं है। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को आज बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने 6 महिला पहलवानों द्वारा दायर मामले में अंतिम बहस पूरी होने के बाद 2 जुलाई को आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकेपुर से जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भीखाभाई रबारी और मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्र विरोध प्रदर्शन का आज 10वां दिन है। छात्रों का आरोप है कि 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में ओएमआर शीट से छेड़छाड़ की गई और एक बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू हो गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है और वायरल वीडियो पुराना है।

में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के भारोत्तोलन पदक विजेताओं को आज सम्मानित किया। भारतीय एथलीटों ने भारोत्तोलन के 11 भार वर्गों में 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम और सहर आपका हम सफर जो हमेशा रहता है आपके साथ, आपके जो भी मनोभाव हो गीतों के जरिए आप तक पहुंचाता रहता है, वो है आपका सबका प्यारा एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं। और समय हो चला है मनभावन का, मनभावन जिसमें आप अपने फरमाइश भेजते हैं या तो ईमेल्स के जरिए या फिर व्हाट्सएप नंबर के जरिए। तो आप नोट कर सकते हैं, अगर आपका हमारा ईमेल आईडी आपके पास नहीं है तो ये है fmgoldaird@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753। और मनभावन लेकर आज आपके साथ मैं हूँ रजनी। और सबसे पहला जो संदेश मुझे दिख रहा है ये भेजा है हमें सलीम अख्तर और रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से, और ये सुनना चाहते हैं फिल्म बहार आने तक का गीत। तो लीजिए, आप तक पहुंच रहा है पहला गीत, बहुत ही प्यारा सा, और मौसम इतना खूबसूरत हो रहा है बाहर तो उससे मेल खाता गीत है बहार आने तक फिल्म से। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की।

छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा हमें सुन रहे हैं। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये है प्रताप वर्मा महावीर कॉलोनी सोनीपत से, और इनके अलावा हमें सुनने वाले हैं बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। इनके अलावा हमें संदेश मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बुराना का। अगला संदेश भेजने वाले हैं राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार खयाला विष्णु गार्डन से, और साथ ही भोपालगढ़ राजस्थान से हमें संदेश मिला धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार का, और कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, और बुलंदशहर से एमएस अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार सुनना चाहते हैं आकाश दीप फिल्म का गीत जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

और अब हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़े हैं? जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो का संदेश हमारे पास आया है। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है ये है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष परिवार पवार, और इनके अलावा दिनेश चौहान रामदेवरा से, बाबूराम जयपाल डांगरी से और खुदा बख्श खलीफों की बावड़ी से। शेरवानी स्कूल गंज डुरवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी का संदेश मिला। इनके अलावा पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता ने हमें संदेश भेजा है। साथ ही हमें जो अगला संदेश मिला है वो है मोरटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मन, मानस और कनिका पटेल का। और साथ ही हमें संदेश भेज रहे हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा दादरी गेट भिवानी से। और इनके बाद जो संदेश मिला है हमें ये है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, और ये सुनना चाहते हैं चुपके चुपके फिल्म का गीत। और आज कल का जो ये मौसम है बिल्कुल मुफीद बैठता है उस पे गीत। आइए सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़।

कर्नाटक के चिन्ना तिरुपति से हमें संदेश मिला है श्यामला प्रकाश अश्विन आनंद मनवित और रमेश का। इनके अलावा हमें संदेश भेजा है जलालाबाद वेस्ट से सुनेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और नियमित आहूजा ने। सबा अंसारी शकील अंसारी हीना अंसारी बुशरा अंसारी गुलिस्ता रानी नंदिनी अंजलि मथुरा से हमें संदेश भेज रहे हैं और इनके बाद जो संदेश आया है वो है उत्तम नगर दिल्ली से बुधरा

राज खोरवाल, कमला रानी, गीतका खोरवाल और भानु प्रकाश का, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, वैष्णव कॉलोनी सनावत से संदेश भेज रहे हैं, और जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी का संदेश मिला। और इनके बाद जो संदेश हमें मिला है वो है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायरे और आशीष महेरकर, और ये सुनना चाहते हैं मदारी फिल्म का गीत। वैसे तो बहुत ही प्यारा गीत है और लोकप्रिय भी है, लेकिन बहुत कम सुनने को मिलता है। बहुत ही इसके जो संगीत है बहुत ही मीठी धुन है। आइए सुनते हैं गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी

0: लाइव सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
7: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
6: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
7: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
8: बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद फिर जारी है आपका मनपसंद शो मन भावन, जिसमें आप भेजते हैं अपने मेल और अपने व्हाट्सएप संदेश और साथ ही भेजते हैं अपनी फरमाइशें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldaiadelhi@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। लगातार आपके संदेश हम तक पहुंच रहे हैं, कोशिश हमारी पूरी रहती है कि हम सारे संदेश पढ़ सकें और आपकी फरमाइशें ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर पाएं। फ़िलहाल जो संदेश मुझे दिख रहा है, ये इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि व्हाट्सएप पर आधारित कौन कौन से शो होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी अपने संदेश भेज सकते हैं। तो एक तो 10:30 बजे जो शो जाता है दिल का मेल बॉक्स, उसमें भी आप अपने संदेश व्हाट्सएप संदेश भेज सकते हैं, अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। और ये 3:10 पे जो शो जाता है मन भावन, जो कि अभी आप सुन रहे हैं, इसमें भी आप अपने व्हाट्सएप संदेश या फिर ईमेल के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं और साथ ही अपनी पसंद की गीत भी सुन सकते हैं। इनके बाद जो संदेश हमें मिला है, ये है कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजा बेगम, मरियम और जैनब। अगला संदेश भेजने वाले हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन। और इनके अलावा संदेश भेजने वाले हैं ज़िला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद वर्मा, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदन, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। साथ ही हमें संदेश मिला है ग्राम फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार दूदी और पुष्पेंद्र कुमार दूदी का। और इंदिरा नगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू देवांगन, नेहा और जगदीश देवांगन सुनना चाहते हैं फिल्म अनाड़ी का गीत। तो लीजिए सुनवाते हैं आपको ये गीत, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे मौसम का बखान हो रहा है, जैसे कि इन दिनों चल ही रहा है प्यारा सा मौसम।

भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष व्हाइटफील्ड बंगलुरु से हमें सुन रहे हैं। इनके अलावा जो संदेश हमारे पास आया है वो है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं संगीत के सितारे रेडियो लिसनर्स क्लब। कहाँ से ये संदेश भेज रहे हैं ये इन्होंने नहीं लिखा है। इनके अलावा हमें संदेश मिला है भगवती का प्रहलादपुर नई दिल्ली से, और इनके बाद संदेश भेजने वाले हैं बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहेल शेख, मोताला बाजार से। और साथ ही हमें संदेश मिला है विपिन नेहरा का काशीपुर से, और अगला संदेश भेजने वाले हैं मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से। और अरमान गेरा, विनोद गेरा, ओल्ड राजेंद्र नगर से संदेश भेज रहे हैं, और आपकी परछाइयां फिल्म से गीत सुना चाहते हैं जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद, नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी हमें संदेश भेज रहे हैं बाजार रोड मुंगीसापुर से। और इनके बाद हमें संदेश मिला है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से। अगला संदेश भेजने वाले हैं सहारनपुर से आशा नारंग और सुरेश नारंग। और इनके बाद जो संदेश हमें मिला है वो है गांव खरकड़ा 24

से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, सीताराम कांगड़ा, अंशिका बोट और तमन्ना कांगड़ा। और इनके अलावा हमें जो संदेश आया है ये है महाराष्ट्र पुणे से सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर और ये सुनना चाहते हैं जिगरी दोस्त फिल्म का गीत। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अनवर साबरी, शर्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी दाऊद सराय सहारनपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला संदेश फहीम मंसूरी और असलम मंसूरी ने भेजा है, कहाँ से? फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। और इनके अलावा हमें सुन रहे हैं एयरपोर्ट से अनीता वर्मा, और इनके बाद जो संदेश मिला है हमें वो हैं काशी निवास बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारती रंभाड़े, जानवी रंभाड़े और वैष्णवी के साथ हर्षिल रंभाड़े, और नागपुर से टोनी बोरकर और ललिता बोरकर ने संदेश भेजा। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, पप्पी भाटिया, तमन्ना भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से संदेश भेज रहे हैं। इनके बाद हमें जतिन, अनन्या, पूनम, रितिका, ममता, सुमन, मुकेश, भारत कटिहार बिहार से इनका संदेश मिला। और अगला संदेश गाजियाबाद यूपी से हमें मिला है और भेजने वाले हैं ब्रह्म सिंह। मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से हैं। उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद, सत्यमानंद है पाकुड़ झारखंड से। और बिसाऊ राजस्थान से दिनेश सोलंकी, विजय कुमार, पंकज धाई, राजकुमार, राकेश बी आई काका हमें संदेश भेज रहे हैं। और इनके बाद जो संदेश मिला है हमें ये है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और शबाना भारती, नवाब अहमद भारती, अरहान भारती, सूफिया नवाब, बल्ली मारान से हमें संदेश भेज रहे हैं। और इनके बाद जो पैगाम मिला है वो है गौरीशंकर का, नांगलोई से संदेश भेज रहे हैं। और इसी गीत के साथ मन भावन का हम समापन करेंगे आज का। अमरदीप फिल्म का गीत है, गौरीशंकर की फरमाइश पर, लता मंगेशकर की आवाज़ है और बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत कम सुनने को मिलता है लेकिन आप सुनिए, एकदम रूह में, दिल में उतर जाने वाला गीत है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के अलावा अन्य मुद्दों को लेकर संसद में गतिरोध उत्पन्न किया। लोकसभा में पहले स्थगन के बाद पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद टेनेटी ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधायी कामकाज शुरू करने का प्रयास किया। इस बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन के बीचों बीच आ गए। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। विधेयक में प्रावधान है कि प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को लघु और मध्यम उद्यमों से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद के लिए सभी बिलों का निपटान व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली के माध्यम से करना होगा। विधेयक के अनुसार यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता विफल हो जाती है तो मध्यस्थता समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर मध्यस्थता के लिए मामला भेजा जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि दलीलों के पूर्ण होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। दूसरे स्थगन के बाद सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह कदम न्यायिक क्षमता को और मजबूत करेगा, मामलों के प्रभावी निपटान में तेजी लाएगा और नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी नीरज कुमार से आगे चल रहे हैं। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के सत्येंद्र पटेल अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भीखा भाई रबारी और उधर मध्यप्रदेश के दतिया में कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी से आगे चल रहे हैं। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। भारतीय नौसेना के नौकायन पोत त्रिवेणी के चालक दल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि तीनों सेनाओं की महिला परिचारिका नौकायन यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा ने ल्यूविन हॉर्न और गुड होप केपों का चक्कर लगाते हुए विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्रों को पार करते हुए 25,000 समुद्री मील से अधिक की दूरी सफलतापूर्वक तय की है। राष्ट्रपति ने इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने में महिला चालक दल के साहस, दृढ़ता और अनुकरणीय व्यावसायिकता की सराहना की। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म बसेरा से गीत, आवाज है लता मंगेशकर की।

0: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर उप महाप्रबंधक पर्यावरण के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई भी जा सकती है। विस्तृत नियमों शर्तों के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। आवेदन 19 अगस्त 2026 तक भेजे जा सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मानव संसाधन प्रभाग द्वारका नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है स्थानीय बैंक अधिकारी LBO के 545 पदों के लिए आवेदन। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट के अंतर्गत ये लिंक देखिए pnb.bank.in/recruitments। अंतिम तिथि रहेगी 9 अगस्त 2026। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यंग प्रोफेशनल लीगल के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत पात्रता नियम और शर्तों के लिए देखिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट www.nmrcnoida.com। इस वेबसाइट पर जाकर आप करियर टैब के तहत आवश्यक जानकारी को देख सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन उचित माध्यम से इस प्रकार भेजें कि वे 14 अगस्त 2026 को साय 6 बजे तक कार्यालय के पते पर पहुंच जाएं। रेल मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन नेशनल लिमिटेड में प्रबंधक विधि के 4 पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। अधिकतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। विस्तृत विज्ञापन और रूपरेखा के लिए देखिए वेबसाइट www.ircon.org। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल सेंटर में इन पदों को भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चिकित्सा अधिकारी जी एनेस्थीसियोलॉजी 1 पद अनारक्षित। चिकित्सा अधिकारी एफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी 1 पद। चिकित्सा अधिकारी ई इंटेंसिविस्ट यानी गहन चिकित्सा 1 पद। चिकित्सा अधिकारी ई मेडिकल ऑन्कोलॉजी सॉलिड ट्यूमर 1 पद। चिकित्सा अधिकारी ई नाभिकीय औषधि 1 पद। चिकित्सा अधिकारी ई विकृति विज्ञान। चिकित्सा अधिकारी ई सर्जिकल ऑन्कोलॉजी प्रभारी अधिकारी डिस्पेंसरी 1 पद जो EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। सहायक आहार विशेषज्ञ खाद्य सेवा 1 पद अनारक्षित और सहायक आहार विशेषज्ञ खाद्य सेवा 1 पद। ये पद भी EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2026 शाम 5:30 बजे तक है। अधिक जानकारी के लिए देखिए टाटा मेमोरियल सेंटर की वेबसाइट tmc.gov.in। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग विकास आयुक्त का कार्यालय जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र आमंत्रित कर रहा है निवारक अधिकारी समूह ख के 1 पद के लिए आवेदन। इस संबंध में विज्ञापन पहले भी प्रकाशित हो चुका है और अब आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाई जा रही है। रोजगार समाचार पत्र 1 से 7 अगस्त 2026 में प्रकाशन के बाद 45 दिन और आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। नियम और शर्तों के लिए देखिए वेबसाइट www.jaipursez.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, स्टूडियो घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपनी न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारियां जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम करेंगे याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूँ अतहर सईद और मेरे साथ मेरी सहयोगी सायरा मुजतबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार, आदाब।
2: आदाब अथर, एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। नमस्कार आदाब, वेलकम टू दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड फ्रेश इसलिए बिकॉज ऑफ कोर्स इज द बिगिनिंग ऑफ द वीक, इट्स ऑल्सो द फर्स्ट मंडे ऑफ सावन, तो सावन का पहला सोमवार भी है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम आई थिंक अथर एंड आई वी आर डूइंग द शो टुगेदर।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सावन के पहले सोमवार की तरह, चूंकि आज बड़ा शुभ दिन है, तो आज हमारा और आपका जो इस अंक में जो मुलाकात है वो भी शुभ होगी।
2: बेशक, सो लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस।
1: बिल्कुल सायरा, विपक्ष के कई मुद्दों पर विरोध के कारण बाधित लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित।
2: बीजेपी कैंडिडेट सत्येंद्र भाई पटेल विन्स मंचलपुर असेंबली बाय पोल इन गुजरात, काउंटिंग ऑफ वोट्स फॉर बाय इलेक्शंस इन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज ऑफ बिहार एंड मध्य प्रदेश ऑन टू वे।
1: दिल्ली की एक अदालत ने कुछ महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया।
2: इंडिया अचीव्स ओवर 5 लाख आधार वेरिफाइड ऑर्गन डोनेशन प्लेजेस, स्टैंड्स थर्ड ग्लोबली इन नंबर ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स।
1: अमेरिका और ईरान के बीच आज अगले दौर की शांति वार्ता संभावित।
2: एंड वेदर डिपार्टमेंट फोरकास्ट हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल ओवर अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम फॉर टुडे। एंड अथर, हस्बे दस्तूर हम लोग स्टार्ट करेंगे परिक्रमा विद आर स्पेशल सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। एंड टुडे इज इवन मोर स्पेशल बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनी इंटरनेशनल डे और सम नेशनल डे, यू नो इट्स अ बिट डिफरेंट टॉपिक बिकॉज आई थिंक दैट्स द नीड ऑफ द आवर।
1: कहीं ना कहीं हमारे जीवन शैली से जुड़ा आज का हमारा टॉपिक है जो कि कहीं ना कहीं हमें फायदा पहुंचाने वाला है, तो श्रोताओं से अनुरोध है कि वो बहुत ध्यान से आज के इस विषय पर हमारी चर्चा को सुने और उसमें जो सकारात्मक हो, जो बेहतर हो, वो उसको बनाने की, अपने जीवन शैली में शामिल करने की कोशिश करें।
2: Yes, the topic is the art of making space, which in Japanese there's one word called yutori. As always, we are here with conversations that make your day a little brighter and maybe a little lighter as well.
1: बिल्कुल सायरा, आजकल हम हर समय भाग दौड़ में लगे रहते हैं, इधर से उधर भागते रहते हैं। एक जमाना था कि हम बैठकर खाना खाया करते थे, जमाने ने तरक्की की, हम डाइनिंग टेबल पर आ गए और तरक्की की तो हम और बुफे सिस्टम हमने अपना लिया और ज़्यादा तरक्की की, तो आज हाल ये है कि भागते जाते हैं, एक हाथ में फाउंटेन ग्लास है, दूसरे हाथ में हमारे बर्गर होता है, हम दौड़ते जाते हैं, भागते जाते हैं। डेडलाइन पूरी करना हमारे जहन में होता है, लंच करते हुए मैसेज का जवाब देना हमारी प्रायोरिटी होती है, सोने से पहले ईमेल चेक करना, या फिर ऐसा महसूस होता है इन सबको करने के बाद कि ये भी काफ़ी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे व्यस्त रहना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, खाली रहना स्टेटस सिंबल नहीं है, जबकि खाली रहना भी कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा, जिसकी हम बात आगे करेंगे। अगर आप भागदौड़ नहीं कर रहे हैं तो लोग ये मान लेते हैं कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, आप एक्टिव नहीं हैं, या यूं कहें कि आप सफल नहीं हैं।
2: Yes, that's very right, Athar. In fact, now people are realizing that stillness is actually a luxury. So it's very important to, you know, take life slow at times. And of course, भागदौड़ तो अपनी जगह रहेगी, but in the blink of blink of an eye, the whole life will just pass through. And then when you are probably in the winters of your life, you will wonder ki wo din aakhir gaye kahan. Tab aapse koi nahi puchega ki aapne kya achievement di apni company ko, apni organization ko. Aap bas puchenge ki maine kya hasil kiya. And such bataye, so nothing, only these are very shallow things. Of course, at the moment they appear very important, but when we gain that maturity and when we step back from the busy life, then we realize that the real luxury is to spend good moments with yourself and with your loved ones, with your friends, making time for them. That is the real luxury of life. And in fact, जैसे आपने कहा कि अगर आप थोड़ा सा खाली रहते हैं तो लोग आपको जो है प्रोडक्टिव नहीं समझते, एंड दिस इज अ वेरी रिमार्केबल शिफ्ट ऑल्सो दैट हैज हैपेंड। आप पूछिए किसी से हाउ आर यू, तो लोगों का बहुत कम जवाब होता है अबाउट देयर फीलिंग्स. जैसे अरे मैं बहुत बिजी हूँ. सो यू हैव सीन यू नो द आंसर हैज चेंज्ड सो मच ओवर द इयर्स. नोबडी टॉक्स अबाउट देयर फीलिंग्स एनीमोर. दे जस्ट टेल यू हाउ बिजी दे आर.
1: बिल्कुल.
2: बट व्हाट हैव बीन वी हैव बीन लुकिंग एट प्रोडक्टिविटी द रॉन्ग वे. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्यूटिफुल जापानीज फिलोसफी कॉल्ड यूतोरी, अ सिंपल आइडिया दैट एनकरेजेस अस टू क्रिएट स्पेस इन आवर लाइव्स इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली फिलिंग एवरी मिनट.
1: तो आखिर यूतोरी का मतलब क्या है सायरा?
2: वेल आथर, इट ट्रांसलेट्स टू स्पेस, एल्बो रूम, लीवे, रूम टू ब्रीद, रिजर्व, मार्जिन और इवन टाइम टू स्पेयर. बट इट्स मच मोर देन जस्ट हैविंग फ्री टाइम. इट्स रियली अबाउट हैविंग इनफ स्पेस मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली एंड इवन फिजिकली टू लिव कंफर्टेबली विदाउट कॉन्स्टेंटली फीलिंग रश्ड. यू वॉन्ट इमेजिन, यू नो, लेट मी जस्ट शेयर अ फ्यू थिंग्स विद आवर लिसनर्स. फॉर एग्जाम्पल, देर इज समटाइम्स अ गैप ऑफ इवन वन आवर बिटवीन आर, यू नो, बुलेट ट्रेन एंड बिटवीन आर शोज. यू वॉन्ट बिलीव, उस एक घंटे में ही सही हम अपनी गाड़ी में सुकून से, खामोशी से, किताब के साथ या म्यूजिक ऑन करके बैठ जाते हैं. सो दैट इज हाउ आई क्रिएट स्पेस फॉर माई सेल्फ.
1: उस सुकून के लम्हात जो होते हैं
2: जी, बहुत बहुत जरूरी
1: है. सायरा, हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सोचिए कि आपके फोन की स्टोरेज जो है वो लगभग भर गई है, एप्स धीमे धीमे चलने लगे हैं, अपडेट्स फेल हो जाते हैं और सब कुछ अव्यवस्थित होने लगता है. ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी काम करता है. जब हर पल हम कामों में मसरूफ रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, अति व्यस्त होते हैं, तो हमारे विचार से जो हमारी क्रिएटिविटी है, जो चिंतन है या शांति है, उसके लिए कोई जगह रह नहीं पाती है.
2: दैट्स वेरी राइटली पुट आथर, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर यूतोरी कम्स इन. इट रिमाइंड्स अस दैट नॉट एवरी मोमेंट हैज टू बी सो कॉल्ड प्रोडक्टिव. समटाइम्स द मोस्ट प्रोडक्टिव थिंग वी कैन डू इज टू स्लो डाउन एंड टू जस्ट enjoy the stillness. And now here's a question for our listeners. If someone suddenly gave you one completely free hour today with no meetings, no assignments, no notifications, what would you do?
1: To kya aap kitab padhenge, tehlne jayenge, purani albums nikalenge, purane photographs dekhenge, kisi dost ke khoye hue dost ka phone number talash karenge, usko phone karenge, call karenge, ya fir bas ek cup shanti mein baithenge, ek cup chai ke sath sochenge, vicharenge. क्या जवाब होगा आपका? जवाब जो भी हो आपके लिए, यही आपके लिए जो खाली समय निकालने का तरीका है. और ज़रूरी यह है सायरा कि दो, जिसको अगर मैं दो पंक्तियों में या फिर एक शेर में इसको कहूँ, तो ज़िंदगी के चंद लम्हे खुद की खातिर भी रखो, भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे.
2: बिल्कुल, क्या बात है अथर. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टेप बैक फ्रॉम द क्राउड, स्टेप बैक फ्रॉम द रश एंड एन्जॉय द स्टिलनेस. एंड वी ऑफ कोर्स हर्ड ऑल, वी हैव ऑल हर्ड द फ्रेज दैट डू मोर इन लेस टाइम. बट यूतोरी जेंटली आस्क अनदर क्वेश्चन, व्हाट इफ डूइंग लेस एक्चुअली हेल्प्स अस डू बेटर? व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली रेसिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर, आवर फोकस ड्रॉप्स, स्ट्रेस राइजेस एंड इवन स्मॉल डिसीजंस, यू नो, दे बिकम एग्जॉस्टिंग. नॉट जस्ट स्मॉल डिसीजंस, स्मॉल टास्क become exhausting. And I've seen that, you know, especially I've seen mothers who are probably so overwhelmed with work. They are, you know, unko professional life bhi dekhna hai, bacche bhi dekhna hai. So sometimes I see, you know, some of my friends who don't really bikhar jate hain, and they don't talk about their feelings, they don't talk about their children's feelings. To wo bas ek robot ki tarah task pure karna hote hain. Bachcho ko tumhe khana kha lo, tum homework kar lo, tum ye kar lo, lekin chand lamhe baith ke apne spouse ke sath, apne bachchon sath hum log baith ke baatein karna bhul gaye hain. That is very important.
1: बिल्कुल, कई बार ऐसा नहीं होता कि हम चीज रखते हैं और भूल जाते हैं, ये फीलिंग्स आती है ना, ये होता है हमारे साथ. और कई बार क्या कभी आप किसी कमरे में गए हों और भूल गए हों कि वहाँ क्यों गए थे? और बहुत ज्यादा सोच विचार से भरे दिमाग का हाल कुछ ऐसा ही आजकल के जमाने में होता है. और यूतोरी सायरा हमें याद दिलाता है कि बीच बीच में रुकना समय की बर्बादी नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये एक बेहतर सोच विचार के लिए एक तरह का डिपॉजिट है, निवेश है, कि अगर आप थोड़ा सा ठहरेंगे तो आपका जो दिमाग है वो एक बार फिर से एक्टिव हो जाएगा, उन तमाम तर चीजों को कलेक्ट करेगा और आपको एक तरह से कूल जिंदगी की तरफ आगे ले जाएगा.
2: That's so true, Athar, and that's why we say that sometimes the gap between two tasks is where our best ideas appear.
1: बिल्कुल, और यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे, जरूर सोच रहे होंगे कि असल में यूतोरी का अभ्यास हम करें तो कैसे करें? तो इसके लिए पूरी जीवन शैली बदलने की जरूरत नहीं है सायरा, इसकी शुरुआत महज छोटे छोटे बदलावों से भी हो सकती है.
2: That's right. Instead of just planning every single minute, just leave लीव अ लिटिल रूम फॉर अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स, लेट लाइफ सरप्राइज यू आल्सो।
1: बिल्कुल सही कहा, खाना खाते समय फोन पर स्क्रॉल करने के बजाय किसी बगैर रुकावट के अपने खाने का मजा लें या फिर उस समय टीवी देखने से गुरेज करें। और कहा तो ये जाता है

0: कि जब खाना खाएं तो शांत भाव से खाएं, ईश्वर को याद करते हुए खाएं, उसका धन्यवाद करते हुए खाएं। इससे होगा क्या भाई? इससे होगा ये कि आपको मानसिक शांति मिलेगी और कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी होगा सायरा।
1: यस एब्सोल्युटली, क्योंकि स्पेशली मोस्ट ऑफ द पीपल दे दीस डेज दे आइदर स्क्रॉल ऑन देयर फोन व्हाइल हैविंग फूड और आर वॉचिंग टीवी। बट अगर आप देखिए तो आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है आपकी गिजा, यू नो योर डाइट, बट यू आर जस्ट नॉट पेइंग इट्स ड्यू रिस्पेक्ट टू दैट और यू नॉट इवन पेइंग अटेंशन। तो आपकी बॉडी इज ऑल्सो लिसनिंग, यू नो, सो इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर फीडिंग फूड बट यू आर फीडिंग द वे यू फीड योर सेल्फ ऑल्सो। So well, instead of filling every free evening with another commitment, allow yourself an hour where absolutely nothing is planned.
0: बिल्कुल ठीक कहा। और अगर हम अलग अलग देशों की बात करें तो डेनमार्क में इसको ह्यूगो कहते हैं या फिर हुगा कहा जाता है, और इसका मतलब है कि आरामदेह और सुकून भरा माहौल बनाना और अच्छा महसूस करना। ये सायरा मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ने, अपनों के साथ खाना खाने या फिर गर्म ड्रिंक के साथ आराम करने जैसी छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का समय होता है। कई बार आप होते हैं परिवार के साथ, आप होते हैं शांत भाव से डिनर करते हैं तो वो डिनर कहीं बेहतर डिनर होता है, उसमें आपस में बात करते हैं और वहाँ पर आपका जो मेंटल स्ट्रेस है, जो मानसिक दबाव है, जो अवसाद आपके मन मस्तिष्क में होता है, वो अवसाद कहीं ना कहीं बिखर जाता है और आप खुश होते हैं।
1: That's very right. And Athar, if you remember those days when आजकल तो हर घर में इन्वर्टर आ गया है, बट वो वक्त याद करिए जब बीच बीच में गर्मियों में लाइट चली जाती थी तो सडनली जो घर की रफ्तार होती थी वो एकदम रुक जाती थी, बट उस रफ्तार जो धीमी होती थी उसमें कितना मजा आता था। आई मीन आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड आई यूज टू लुक फॉरवर्ड टू द टाइम वेन द इलेक्ट्रिसिटी, देर वुड बी नो इलेक्ट्रिसिटी एट नाइट एंड देन एवरीबडी ऑल द फैमिली मेम्बर्स वुड बी सिटिंग आउट इन द आंगन आउटसाइड और शाम को आंगन में छिड़काव हो चुका होता था तो जो होती है हल्की हल्की,
0: बिल्कुल,
1: सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बातचीत हो रही है, वो फिर जैसी लाइट आती थी हर कोई अपने अपने काम में लग जाता है।
0: धीमी धीमी चांद की रोशनी है, मोगरे की खुशबू है, आंगन में बिखरे हुए जो फूल हैं उसका आनंद है, हल्की हवा होती है और खास बात यह कि पूरा परिवार आपके साथ होता है। दिन भर की समस्याओं पर बात होती थी, लोरियां होती थी, कहानियां होती थी, शांत भाव से सो जाया करते थे। तो उस जमाने में भी लोग बड़े शांत भाव से जीवन जीते थे। यही जीवन शैली को कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन में शामिल करने की जरूरत है। प्रगति के मार्ग पर हम आगे बढ़ें जरूर, लेकिन शांति के साथ, और शांति के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो वो प्रगति कहीं ना कहीं सकारात्मक रास्ते पर हमें ले जाएगी। और अब एक उद्घोषणा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 और दूसरा नंबर है 0112371711। और इसके अलावा एक और नंबर है 0112371710 और 0112331444। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। आप अपने सवाल हैशटैग आस्क EIR के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं की ओर जाने का और उनसे ये जानने का कि क्या कुछ विशेष है उनके पास। और इस क्रम में पहले हम रुख करेंगे तमिलनाडु का सायरा।
1: That's right, we are starting our journey of परिक्रमा from Tamil Nadu. Well, Tamil Nadu is observing Adi Peruku today. It's a traditional festival dedicated to honoring water resources and expressing gratitude to nature. We have more from our correspondent.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
1: गोपबंधु दास पॉपुलरली नोन एज उत्कलमणि वॉज बोर्न ऑन 9th October 1877 इन पुरी। ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू द फ्रीडम मूवमेंट, एडुकेशन, सोशल सर्विस, द वेलफेयर ऑफ द पोर एंड अंडर प्रिविलेज। इंस्पायर्ड बाय गांधीजी, गोपबंधु ऑल्सो लेड रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स ड्यूरिंग फ्लड्स, फेमिन्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज। टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराजिता सरंगी सेड, गोपबंधु दास इज अ लेजेंडरी फिगर ऑफ ओडिशा।
2: दिस वॉज इंडीड अ ग्रेट मोमेंट फॉर अस, ऑल ऑफ अस हैड बीन वेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर इवेंट। Utkalmani Gobindu Das is a legendary figure of Orissa. He did commendable work as a journalist, as a poet, as a freedom fighter. He did marvelous work for the people of Orissa and beyond. Orissa owes a lot to him.
1: He was also a prominent journalist and founded the Odia newspaper The Samaj in 1919. The statue was installed in Delhi by the Lok Sevak Mandal, an organization founded by Lala Lajpat Rai. The unveiling of his statue in the national capital is a significant tribute to his contribution to the independence movement, education and nation building. Vishal Das for Parikrama.
3: And Athar, as we had mentioned that aaj to Sawan ka pehla Somvar hai, and we all know that many people they go to mandirs and jal chadhate hain Shivling pe, aur sabse zyada to dhoom aaj hoti hai Ujjain mein. So yes, in Ujjain, the city of Mahakal, it's decked up today waiting for the palanquin. The first procession of the Sawan month begins today from the world famous Mahakaleshwar temple in Ujjain, and during this whole period Lord Mahakal sits in a palanquin in his Chandramoreshwar form. Let's hear more from our correspondent.

0: मध्य प्रदेश के उज्जैन के बाद अब हम रुख करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में सीमावर्ती जिला किन्नौर के शिपकी लॉ से भारत और चीन के बीच पिछले 6 वर्षों से बंद पड़े आपसी व्यापार को फिर शुरू कर दिया गया है। गौरतलब है कि प्राचीन समय से चला आ रहा यह व्यापार वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के कारण बंद कर दिया गया था, जब पुनः शुरू हो गया है।
1: हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर के शिपकिला से भारत और चीन के बीच आपसी व्यापार 6 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 1 अगस्त को पूह उपमंडल की सीमावर्ती पंचायत नामग्या में सीमा पार व्यापार करने के लिए 16 व्यापारियों के एक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि शिपकिला से सीमा पार व्यापार शुरू होने से सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
2: काफी लंबे समय के बाद ये शुरू हुआ है, तो इसलिए अभी वहाँ जाकर हमारे ट्रेडर्स देखेंगे कि भविष्य में किस किस्म के उत्पाद हमें वहाँ लेके जाना है और क्या उत्पाद हमें वहाँ से प्राप्त हो सकता है।
1: सीमा पार व्यापार के एक बार फिर शुरू होने से क्षेत्र के लोगों और व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इससे दोनों तरफ के लोगों को फायदा पहुंचेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और स्थानीय उत्पादों का बाजार भी विस्तृत होगा।
3: रोजगार भी खुल गया, इससे हमारा पब्लिक के लिए बहुत फायदा है, थोड़ा इनकम।

0: बढ़ जाता है, वो लोग भी जो नहीं चाहिए सामान उनको भी मिल जाता है, हमारे को जो जरूरत है वो भी मिल जाता है। इससे हमारा मतलब दोनों परे वाला गांव और इधर वाला गांव को भी काफी सुविधा है सर।
1: निश्चित तौर पर इस प्राचीन व्यापार के एक बार फिर शुरू होने से क्षेत्र के लोगों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और उनकी आर्थिकी भी मजबूत होगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी शिमला से मैं रितेश कपूर।
2: और अब चलते हैं गुजरात के भुज में। क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा, कच्ची यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने खाद्य उद्योग में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए शुद्ध स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड आधारित प्राकृतिक स्वीटनर के फार्मुलेशन के लिए भारतीय पेटेंट प्राप्त किया है। चीनी के इस स्वस्थ और सुरक्षित स्वदेशी विकल्प से आत्मनिर्भर भारत के सपने को नई मजबूती मिलेगी। आइए सुनते हैं भुज से हमारे संवाददाता परेश मारू की ये रिपोर्ट।
3: यह पैटर्न स्टीविया रेबाउनिया नाम बर्टोनी पौधे की पत्तियों से प्राप्त स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड्स को अत्याधुनिक शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। इस फॉर्मुलेशन में शुद्ध स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड के जलीय अर्क और अन्य सक्रिय तत्वों का अनूठा संयोजन शामिल है, जो इसे चीनी का एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प बनाता है। आज के समय में मधुमेह, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी जीवन शैलियों से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, जबकि कृत्रिम स्वीटनर्स के दुष्प्रभावों पर लगातार वैज्ञानिक चिंताएं जताई जाती है। यह उत्पाद रक्त में शुगर को स्तर को बढ़ाए बिना मिठास प्रदान करता है, जो विशेष रूप से मधुमेह के मरीजों के लिए एक वरदान साबित होगा। वैश्विक प्राकृतिक स्वीटनर बाजार का आकार वर्तमान में लगभग $31.5 अरब होने का अनुमान है, जो 2032 तक बढ़कर $48.4 अरब तक पहुंच सकता है। इसके अलावा भारत में स्टीविया का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। यह पेटेंट वर्तमान में परीक्षण के चरण में है। इसे अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इस तकनीक का व्यवसायिक उत्पादन शुरू किया जा सकेगा। यह उपलब्धि देश को स्वास्थ्य और विज्ञान के क्षेत्र में स्वावलंबी बनाने की दिशा में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करती है। परिक्रमा के लिए भुज से परेश मारू।
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान और जानते हैं वहां की गतिविधियां। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समापन समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा।
4: And in some business news, well, benchmark domestic equity indices ended in positive zone for the fourth straight session today. Sensex rose 544 points or 0.7% to close at 78,639. Nifty surged 391 points to settle at 24,774.
2: और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तित्व की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिवस।
5: 3rd of August is the birth anniversary of the freedom fighter Nana Patil, popularly known as Kranti Singh.
6: Nana Patil was born in 1900 at Sangli, Maharashtra. He was a founding member of the Hindustan Republican Association. In 1919, Patil began his social work with Prarthna Samaj. He spent 10 years working for the Prarthna Samaj and the Satya Shodhak Samaj for the development of depressed classes. He was against the caste system and throughout his life he fought for the rights of the poor and the farmers.
5: Patil was imprisoned many times during the struggle with the British Raj. He went underground for 44 months during the Quit India movement in 1942. Nana Patil had been a founder of the revolutionary Prati Sarkar formed in Sangli district of Maharashtra during the Quit India movement. Patil also fought along with Acharya Atre for the creation of the state of Maharashtra. The noble soul breathes his last on 6 December 1976, salutes the great nationalist.
6: We remember freedom fighter Devdas Gandhi on his death anniversary. He was the youngest son of Mahatma Gandhi and Kasturba Gandhi. Devdas Gandhi was born on 22 May 1900 at Durban, South Africa. He did not receive any conventional education, but he was well educated in the real sense. He had inherited Gandhiji's saintliness, judgment, the capacity to go into details and the desire to be practical.
5: Devdas Gandhi took part in the non-cooperation movement, civil disobedient movement and Quit India movement and was imprisoned 3 times. When Mahatma Gandhi started seeking help for the establishment of Jamia Millia Islamia, Devdas also came

0: forward on the call of Gandhiji. He started teaching Hindi there and also cotton spinning. He made journalism his major activity.
1: In 1920-21, he started working in the newspaper Independent, published from Prayagraj. He also helped his father in bringing out Young India and Navajivan. Devdas Gandhi died on 3rd August 1957 in Mumbai. Pays tribute to the nationalist leader Devdas Gandhi.
2: और अब हम याद करेंगे महान कवि मैथिली शरण गुप्त को, जिनकी आज है पुण्यतिथि। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का ये सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। बात करें उनकी रचनाओं की तो पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्रौपर, झनकार, जय भारत उनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। मैथिली शरण गुप्त को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य वाचस्पति, डीलिट की उपाधि से भी उनको सुशोभित किया गया। कहते हैं कि इस देश को हे दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए, जड़तुल्य जीवन आज इसका विघ्न बाधापूर्ण है, हे रंब अब अवलंब देकर विघ्न हर कहलाइए।
3: Today we are remembering another poet today, but an Urdu shayar, Shakil Badayuni's birth anniversary is today, and of course he doesn't need any introduction. A very, very accomplished poet, lyricist and songwriter in especially in Hindi cinema. And of course we all know that he learned Urdu shayari during his Aligarh days from Ashq Bijnori. And well, he moved to Bombay in 1944 to write songs for films. It was then when he met film producer A.R. Kardar and music composer Naushad, who asked him to sum up his poetic skills in one line. And Shakil wrote, "Hum dard ka afsana dunya ko suna denge, har dil mein mohabbat ki ek aag laga denge." Naushad immediately retained him for his next film, Dard, in 1947. And the songs of Dard proved to be very successful, especially Tuntun's Afsana Likh Rahi Hoon.
2: Afsana Likh Rahi Hoon Dil-e Beqarar Ka. तो ये गाना सुनने से पहले हम कुछ और बात कर लें शकील बदायूनी की। शकील बदायूनी कोई ख़ास बात यह है कि तीन बार उनको फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया और एक से बढ़कर एक फिल्में हैं। दर्द की बात आपने की, चौदहवीं का चांद है, 20 साल बाद एक फिल्म है, सन ऑफ इंडिया है, मेला, दुलारी, बैजू बावरा, क्या ज़बरदस्त फिल्म है जिसमें उनके गीत एक से बढ़कर एक है, मदर इंडिया है ना, कल्ट मूवी, कोहिनूर, दिलीप कुमार साहब की एक कामयाब फिल्म, और इसके अलावा मुगले आज़म को कौन भूल सकता है, साहिब बीवी गुलाम, और इसके अलावा गंगा जमुना, किस किस की बात करें सायरा, एक गीत सुन लेते हैं।
3: बात करते हैं, एक गीत सुनते हैं, सुहानी रात ढल चुकी, जो कि आई थिंक
2: रफी
3: इज एट हिज बेस्ट इन दिस सॉन्ग।
2: बिल्कुल सही कहा।

0: कब आओगे।
1: बेहद खूबसूरत गीत। बढ़ते हैं आगे लोकप्रिय संगीतकार जयदेव की बात करते हैं, जिनका आज है जन्मदिवस। उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। सायरा, कुछ आप कहना चाहती हैं जयदेव साहब के संगीत के बारे में?
2: उनके संगीत के बारे में क्या करें, यू नो द सॉन्ग्स ऑफ फिल्म्स लाइक हम दोनों, घर ऑन द गमन, दे स्टिल हॉन्ट अस। तो विदाउट मच अडू लेट्स लिसन टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: इसीलिए शख्स परेशान है क्योंकि हर कोई दौड़ भाग रहा है, तो इसलिए आज जो हमारा डेडलाइन टॉपिक था यूथोरी वो जरूर अपना है अपनी जिंदगी में।
1: बिल्कुल ठीक कहा शताब, समय है चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दी जाए तो हर सईद और सायरा मुश्तबा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की। नमस्कार, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल प्रारंभ किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। यह संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने जीत हासिल की है। श्री पटेल ने कांग्रेस के भिखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर 31 में से 24वें राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 13,800 से अधिक वोटों से आगे चल रहे हैं। दतिया सीट पर कांग्रेस के घनश्याम सिंह भाजपा के आशुतोष तिवारी से 12,000 से अधिक वोटों से आगे हैं। तीनों निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज प्राथमिकी को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज उज्बेकिस्तान के निवेश उद्योग और व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ 39 पदक जीते थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शाम का समा और सुहाना मौसम, हम और आप साथ साथ हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। 90s के दशक के कुछ लोकप्रिय रोमांटिक गीत लेकर आपके साथ है रजनी।

जिस फिल्म से आपने गीत सुना आवाज थी श्रेया घोषाल की और ये गीत फिल्माया गया था बिपाशा बासु पे। इसे एक साल पहले उनकी पहली फिल्म राज रिलीज हुई थी। दरअसल राज की जो मुख्य अभिनेत्री थी वो लीजा रे थी और बिपाशा बासु तो सिर्फ डीनो मोरियो के साथ जो कि इस फिल्म के हीरो थे राज फिल्म के वो सिर्फ शूटिंग देखने के लिए आया करती थी। लेकिन जब बाद में लीजा रे ने किसी कारणवश ये फिल्म छोड़ दी तो वहीं के वहीं जो कि शूटिंग देखने के लिए आई थी बिपाशा बासु उन्हें देखते ही इस फिल्म के लिए साइन कर लिया गया और इस तरह बिपाशा बासु को मिली अपनी पहली फिल्म राज। इसी फिल्म से आपको एक बेहद लोकप्रिय गीत सुनवाते हैं अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस ब्रेक के बाद जारी है गाते गुनगुनाते, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कभी कभी जिंदगी अचानक से ऐसा मौका दे देती है जो किसी की जिंदगी बदल देता है, लेकिन अभी हम पे डिपेंड करता है कि हम इस मौके का इस्तेमाल कैसे करते हैं। बात है 90 के दशक की, जब आमिर खान की बहुचर्चित फिल्म जो जीता वही सिकंदर की घोषणा हुई। इस फिल्म की कोरियोग्राफर थी सरोज खान, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इस फिल्म के सबसे लोकप्रिय गाने की शूटिंग के समय वो पहुंच ही नहीं पाई। उस समय उनको असिस्ट कर रही थी फराह खान, और सरोज खान की अनुपस्थिति में फराह खान ने ही इस गीत की कोरियोग्राफी की, और ऐसी की कि आज भी लोग इस गीत को इसके पिक्चराइजेशन के लिए याद करते हैं। तो ये गीत हम आपको सुनवाते हैं बस कुछ ही पलों में, और इसी गीत

के साथ मुझे यानी रजनी को गाते गुनगुनाते से इजाज़त दीजिएगा, क्योंकि इसके तुरंत बाद यानी 5:30 बजे 5:30 पर आप सुन सकेंगे हेलो फार्मर।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा,
2: पर हम तो सब यही डाले।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: स्वागत है सभी हमारे किसान भाइयों का। हेलो फार्मर्स प्रोग्राम हम लेकर आ गए हैं, एक नया दिन, एक नई शाम और एक नए समय के साथ। जी हाँ, हर सोमवार शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। हेलो फार्मर्स, और मैं हूँ आपके साथ आज सुषमा शर्मा, और मेरे साथ है मेरे साथी
5: निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से, नमस्कार।
4: नमस्कार। और निरंकार, देखिए नया समय, नया विषय और नया दिन
5: जी,
4: है ना। और आज भी हम आ गए हैं हेलो फार्मर्स लेकर, तो हम बहुत ज्यादा अपने किसानों को जोड़ना चाहते हैं इस कार्यक्रम में, जहां वो कॉल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। और फोन नंबर्स हम दोहरा देते हैं अपने किसान भाइयों को,
5: 2342-1081 और दूसरा नंबर 2342-1083।
4: बिल्कुल, ये दो नंबर्स हैं आपके लिए जहां आप कह सकते हैं हेलो, ताकि हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब दे सकें। 2342-1081 एक नंबर है, दूसरा है 2342-1083। ये दो नंबर्स हैं, और आज के विषय पर आप बात करेंगे, हमारे एक्सपर्ट से जानेंगे कि क्या हम विषय लेकर आए हैं और क्या आप पूछना चाहते हैं।
5: हाँ, और सुषमा जी, हम जानते हैं कि खरीफ का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें बारिश बहुत होती है, और इसमें खरपतवारों की भी भरमार हो जाती है, क्योंकि पानी लगातार मिलता है और ये पोषक तत्व, नमी और प्रकाश को, इसका बड़ा हिस्सा हमारी जो मुख्य फसल है उससे ले लेते हैं, जिससे कि हमारी जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ता है, उनको पूरा पोषण नहीं मिल पाता। और इसके साथ साथ अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं या संतुलित प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारी लागत बढ़ती है और हमारा वातावरण भी प्रदूषित होता है।
4: बिल्कुल सही कहा आपने निरंकार जी, तो इसीलिए आज का विषय भी यही है हमारा, खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन। तो हमने स्टूडियो में आमंत्रित कर लिया है विशेषज्ञ को, डॉक्टर दिनेश कुमार जी को। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में।
6: धन्यवाद।
4: सर है प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में।
5: बिल्कुल।
4: तो सर, आज जो हमने टॉपिक लिया है बहुत जरूरी है, और हम चाह रहे हैं क्योंकि हमारा पहला कार्यक्रम अगस्त में आज सोमवार है, और हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस प्रोग्राम में जोड़ना चाहेंगे। शाम का समय है, हमारे किसान भाई पहुंच चुके हैं अपने घरों में, ताकि वो भी शामिल इस कार्यक्रम में हो जाए। तो समन्वित खरपतवार नियंत्रण किसे कहते हैं, और खरीफ फसलों में इसकी विशेष आवश्यकता क्यों पड़ती है? सर, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं आपसे।
6: जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि निरंकार जी अभी बता रहे थे कि किसान कई बार जरूरत से ज्यादा रसायनों का प्रयोग करते हैं, खास करके जो हमारे खरपतवार नाशी हैं। किसान भाइयों, खरपतवार नाशी को शाक नाशी भी कहा जाता है
4: जी।
6: अंग्रेजी में इन्हें हर्बिसाइड कहा जाता है। तो ये क्या काम करते हैं, हमारे खरपतवारों को मार देते हैं और फसल पे प्रभाव नहीं आता। लेकिन होता क्या है कि कई बार और लगातार जब हम इनका प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी दूषित हो जाती है, हवा दूषित हो जाती है, और फिर बार बार प्रयोग करने से हमें इनकी ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ सकती है, और इनका प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी तरफ ये हमारे पानी में जा सकते हैं, हमारे खान पान की चीजों में आ सकते हैं, यानी इनका कम से कम प्रयोग किया जाए। और कम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अगर हम खरपतवार प्रबंधन की दूसरी विधियों को भी अपनाएं, खाली रसायन के ऊपर ना रहें, जो यांत्रिक विधियां हैं उनको अपनाएं, जो फिजिकल मेथड या भौतिक विधियां हैं उनको अपनाएं, और सबसे महत्वपूर्ण है हमारी जो कृषि की सस्य क्रियाएं हैं उनको अपनाएं, जैसे फसल चक्र अपनाकर खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी तरीके से मल्चिंग करके, मल्चिंग का मतलब होता है पलवार बिछा के कोई पुराल पराली या पत्ती हम अपनी फसल में बिछा देते हैं तो उससे भी हमारे खरपतवारों का नियंत्रण हो जाता है। तो इस तरह से इकट्ठा बहुत सारे उपायों को जब हम एक साथ अपनाते हैं जिससे रसायनों की जो जरूरत है वो कम हो जाती है, ऐसे को हम समन्वित खरपतवार प्रबंधन कहा जाता है।
5: यानी अलग अलग तरीके से खरपतवार का नियंत्रण करने के जो विधि है उसको हम समेकित तरीके से नियंत्रण करना कहते हैं।
6: जी
5: अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस मौसम में कौन कौन से खरपतवार हैं जो हमारे खेतों में आते हैं और उनकी पहचान कैसे करें।
6: जी बिल्कुल, देखिए पहचान तो किसान भाई समझते हैं, वो अपने देसी नामों से इन खरपतवारों को जानते हैं। खरपतवारों में जैसे खरीफ की प्रमुख फसल जैसे धान है, तो धान में हमारे सांवा घास आती है, इसकी दो प्रजाति है एक तरह से, इकाइनोक्लोआ कोलोनम और इकाइनोक्लोआ जो है वो क्रूज गैली। तो ये दो मुख्य तौर पर आती है और इनका पहचान बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि धान के पत्ते को अगर आप थोड़ा सा तने से हटाएंगे तो उसमें ओरिकल और लिग्यूल लिग्यूल की संरचना दिखाई देगी, दो उसमें शाखाएं होती है और पेपरी मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है सफ़ेद रंग की जो धान का जहां पे जो ब्लेड और उसका शीत यानी आवरण जुड़ते हैं वहां पे एक झिल्ली होती है सफ़ेद रंग की, किसान भाई देख सकते हैं, ये झिल्ली सिर्फ धान की फसल में होती है और खरपतवारों में, इन दोनों खरपतवारों में नहीं होती, ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा जो खरीफ की फसलें हमारी धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, या तिलहनी फसलें हो, मूंगफली हो, तिल हो, या दलहनी फसलें हो, अरहर हो, इन सब में खरपतवार आते हैं और खास करके घास कुल के खरपतवार भी आते हैं, और इसके अलावा चौड़ी पत्ती वाले आते हैं जैसे ट्रायंथिमा है, ट्रायंथिमा जो बिस्खपरा या उसको कई तरह से नामों से किसान भाई जानते हैं, ट्रायंथिमा मोनोगाइना, ट्रायंथिमा पोर्चुलोकास्ट्रम, ये दो घासें जो जमीन की सतह पर चलती हैं ये चौड़ी पत्ती के होते हैं, घास नहीं बल्कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं और काफ़ी नुकसान इनसे होता है। इसी तरीके से लेप्टोक्लोआ चाइनेसिस एक खरपतवार होता है जो धान में ज़्यादा आता है। तो कुल मिला के चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के सभी तरह के खरपतवार आते हैं और साथ साथ मोथा कुल के खरपतवार भी आते हैं, कई तरह की प्रजातियां मोथे की जो हमारी खरीफ की फसलों में आती हैं, धान में भी आती हैं और दूसरी फसलों में भी आती हैं। अगर धान की बात करें तो जो हमारा सीधी बिजाई वाला धान है उसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार ज्यादा आते हैं, लेकिन सकरी पत्ती के भी आते हैं। इसी तरह से अगर हमारी रोपाई विधि से उगाया हुआ धान है तो उसमें सकरी पत्ती के खरपतवार ज्यादा आते हैं, जैसे सांवा मैंने बताया, सांवा धान में आता है, पहचान भी उसकी बताई। तो कुल मिला के कई बार ऐसा होता है कि जो दवाई हमें रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है तो हमें खरपतवारों के हिसाब से रसायनों का प्रयोग करना पड़ता है।
5: हम यही सवाल अगला पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब कि जो सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार है और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, क्या इनका नियंत्रण अलग अलग तरीके से होता है।
6: जी बिल्कुल, देखिए जो जैसे कि हम समन्वित नियंत्रण की बात कर रहे थे खरपतवारों के, तो उसमें तो सारी विधियों का हम समावेश करते हैं और सभी विधियों को अपनाते हैं, लेकिन जब भी हम रसायन का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे खेत में बहुलता चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों की और सकरी या फिर सकरी पत्ती वालों के, उसी हिसाब से दवाई भी अलग अलग आती हैं, सकरी पत्ती के लिए अलग आती हैं, चौड़ी पत्ती के लिए अलग आती हैं, और बहुत सारी दवाएं ऐसी होती हैं जो पत्ती मायने नहीं रखती, वो चौड़ी पत्ती वालों को भी नियंत्रित करते हैं और सकरी पत्ती वालों को भी नियंत्रित करते हैं।
4: बिल्कुल सर, हम और भी पूछेंगे आपसे प्रश्न, लेकिन फिर से दोहराना चाहते हैं क्योंकि एक नए समय पर हम ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है हेलो फार्मर्स, हर सोमवार शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे। तो फिर से दोहराते हैं निरंकार अपने फोन नंबर जो कि बहुत जरूरी है हमारे फार्मर्स के लिए। यस, नंबर्स आर 2342-1081 एंड द अदर नंबर इज 2342-1083। सो दीज आर द टू नंबर्स वेयर यू कैन कॉल अस राइट नाउ। हम कर रहे हैं आपका इंतजार।
7: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: बिल्कुल, ये है आपके लिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स, हर सोमवार शाम 5:30 बजे। और आज हम बात कर रहे हैं, फार्मर्स को बता दें कि हम खरीफ फसलों में समन्वित खरपतवार नियंत्रण और उर्वरक प्रबंधन की हम बात कर रहे हैं और कॉल्स का भी इंतजार कर रहे हैं। सर, कॉम्पिटिटिव हमारी बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि कॉम्पिटिटिव

0: रहते हैं, हमारी जो खरपतवार होते हैं, हमारी जो मेन फसल होती है उसके साथ, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे, कितनी ये खतरनाक होती है हमारी फसलों के लिए जो खरपतवार है?
1: जी बिल्कुल, देखिए खरपतवार क्या करते हैं, हमारी फसलों की पैदावार को गिराते हैं, खास करके उनसे प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो पोषक तत्व किसान भाई पौधों के लिए, जैसे धान की फसल है, मक्का की फसल है, उनके लिए डालते हैं, वो पोषक तत्व खरपतवार ले लेते हैं। दूसरा, पानी हम लगाते हैं फसलों में, वो भी खरपतवार ले लेते हैं। इसके साथ ही साथ जो कुदरती प्रकाश आता है, रोशनी आती है, उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा खरपतवारों को चला जाता है। स्थान की बात करें तो जहाँ पौधे को फैलना चाहिए था, पौधे को बढ़वार करनी चाहिए थी, उस जगह को खरपतवार घेर लेते हैं। तो कुल मिला के पौधों की वृद्धि पे, जो है फसलों की वृद्धि पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। और कई बार तो कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो जड़ों से रसायन निकालते हैं और हमारी मुख्य फसलों को जो है वो प्रभावित करते हैं, उनकी बढ़वार को रोकते हैं। तो इस तरह से खरपतवारों से नुकसान होता है और आखिरकार जो हमारी फसल की उपज होती है उसमें भी भारी गिरावट आ सकती है अगर खरपतवारों का प्रबंधन सही समय पर नहीं किया जाता है।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम इनके नियंत्रण की बात करते हैं तो रासायनिक नियंत्रण करते समय हमारे किसान बातों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़रूरी है कि सही खरपतवार नाशी का, सही दवाई का आप चयन करें। बहुत ज़रूरी होता है, आप मान लीजिए आपके पत्ती, चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं और दवाई आपने सकरी पत्ती वाली डाल दी, या दवाई मान लीजिए मक्का की फसल के लिए बताई गई है और आपने वो दवाई धान में डाल दी, तो फसल के हिसाब से आपको दवाई का चयन करना है और खरपतवार के हिसाब से आपको दवाई का चयन करना है और दवाई की सही मात्रा का भी प्रयोग करना है, जो सही मात्रा संस्तुत की जाती है उसका प्रयोग करना है और साथ ही साथ सही समय पे भी प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कुछ दवाई ऐसे होती हैं जो फसल की बुआई के पहले लगाई जाती हैं, तो वो पहले ही लगाई जाएँ तभी प्रभावी होंगी, और कुछ दवाई ऐसी होती हैं, रसायन ऐसे होते हैं जो बुआई के बाद लगाए जाते हैं, तो उनको बुआई के बाद भी लगाया जाना चाहिए। और इसमें दिन भी तय होता है कि बुआई के 15 दिन बाद, 18 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको लगाना है, उसके समय के, नियत समय के बाद में अगर आप दवाई लाते हैं तो उनका प्रभाव नहीं आता, और उस समय के पहले भी आप दवाई लगाते हैं तो भी प्रभाव नहीं आता। कुल मिला के उसकी सही मात्रा, सही किस्म कौन सी दवाई है, फसल कौन सी है और कौन से समय पे उसको लगाना है, इन चार बातों को ध्यान में रखकर ही आप खरपतवार नाशियों का या रसायनों का प्रयोग करें अपनी फसलों में, तभी आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी।
0: बिल्कुल सर, खरपतवार नियंत्रण में कई प्रक्रियाएं जैसे कि निराई हो गई, गुड़ाई हो गई या यंत्रों और पलवार का समन्वित उपयोग भी किया जाता है, तो वो कैसे संभव होता है सर, किस तरीके से करें हमारे किसान?
1: जी बिल्कुल, देखिए जैसे समय की कीमत सबसे ज्यादा होती है, तो शुरुआत हम खरपतवार प्रबंधन में करते हैं फसल की बुआई से, और जब भी, अब तो बुआई हो चुकी ज्यादातर बुआई, लेकिन फिर भी कोई किसान भाई अगर बुआई कर रहे हैं अभी भी, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि बीज हमारा साफ सुथरा हो। कई बार खरपतवारों के बीज हमारे बीज के साथ आ जाते हैं, तो उसकी सफाई आप बीज की कर लें। दूसरे ऐसे भी देखने में आता है कि जो हमारे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, जो भी जैविक खाद हम प्रयोग करते हैं, गांव में बनाते हैं फिर खेत तक लाते हैं, कई बार वो कच्ची होती है, गली सड़ी नहीं होती, तो उसके माध्यम से भी खरपतवारों के बीज आ जाते हैं। सिंचाई की नाली है हमारी, सिंचाई की नाली पे हमारे खरपतवारों के बीज उगे, पौधे उगे हैं, तो बीज झड़ के पानी में आ जाते हैं और वो फिर हमारे खेत में चले जाते हैं। तो हमें नालियों की, मेड़ों की, डोलों की, इन सब की सफाई करनी चाहिए। यंत्र है हमारा, हम एक कल्टीवेटर एक खेत से दूसरे खेत में ले जाते हैं, कई बार उसके साथ भी खरपतवार आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, तो हमारे कॉलर है उनसे बात करते हैं। हेलो,
3: हेलो
0: जी, नाम बताइए, कहाँ से कॉल किया आपने?
3: इंदरवीर तेवतिया, गांव नथुगढ़ी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, प्रश्न बताइए।
3: प्रश्न ये है कि खरीफ की फसलों में बरसात के कारण और किसानों की कुछ ऐसी समस्याएं हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं या और अन्य फसलों के जो बीज हैं खरपतवार के, वो इस फसल में भी आके उग जाते हैं, हमारी बढ़ाव में घास हो जाती है नालियों में, उसके भी पकने पर वो सब खेतों में पहुंच जाते हैं, तो इसके नियंत्रण के लिए हमें कौन सी विधि अपनानी चाहिए और वो विधि जो किसान के लिए सस्ती हो और उत्पादन बढ़े? वो
1: कौन सी फसल की बात कर रहे हैं आप?
0: बिल्कुल खरीफ फसल की ही बात कर रहे हैं ये सर।
1: जी जी,
3: खरीफ फसल की।
1: तो देखिए, जो खरपतवार हैं आपके, इनका समेकित प्रबंधन करना होगा आपको। सबसे पहले जरूरी होता है कि फसल चक्रों को अपनाएं। फसल चक्र अपनाने से खरपतवारों का प्रबंधन हो जाता है। जैसे आप मान लो धान गेहूं की बात करें अगर हम, तो गेहूं में गेहूं का मामा जिसको कहते हैं, गुल्ली डंडा कहते हैं,

0: फेलरिस माइनर अंग्रेजी में कहते हैं, अक्सर आ जाता है और आता ही है। तो अगर धान गेहूं फसल चक्र ले रहे हैं तो आपको फसल चक्र में बदलाव करना पड़ेगा। आपको मैं अभी यहीं से बता रहा हूं कि आप एक साल गेहूं की जगह पे बरसीम की फसल उगाएं, तो निश्चित तौर पे बरसीम की फसल में आपको एक भी खरपतवार जो फेलिस माइनर है, गेहूं का मामा है, ये नहीं आएगा। और उस फसल के आने से उसके अंदर जो सीड बैंक है मिट्टी के अंदर फेलिस माइनर का या गेहूं के मामा का, वो सब नष्ट हो जाएगा, अंकुरण होगा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि बरसीम में पानी ज़्यादा लगता है और वो खरपतवार पानी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो कुल मिला के एक फसल चक्र अपनाने से खरपतवार कम कर सकते हैं। दूसरा, दलहनी फसलों का समावेश करने से भी खरपतवारों में काफ़ी कमी आ जाती है, क्योंकि दलहनी फसलें क्या होती है, मिट्टी को पूरी तरह से ऊपर से कवर दे देती हैं, जैसे लोबिया है, ढैचा है या और भी दलहनी फसलें, उड़द मूंग, उससे क्या होता है खरपतवारों के बीज तो जम जाते हैं लेकिन वो ऊपर से कवर होने की वजह से उनका बढ़वार नहीं होती, वो नष्ट हो जाते हैं। अगली बार आपकी फसल में कम खरपतवार आएंगे। जहां तक बरहों की बात है और चैनल की बात है, इसको आप बीज जो फल फूल बनता है, फूल बनने के पहले ही खरपतवारों को उखाड़ के बाहर फेंक दें। हमें कोशिश करनी चाहिए जब भी हम खरपतवार नियंत्रण करें तो उनका फूल ना बनने पाए, क्योंकि अगर फूल बन गया तो बीज बनेंगे, फिर वो बीज हमारे खेतों में फैल जाएंगे। तो बेहतर यह है कि ऐसे समय पर आप कंट्रोल करें जब उसमें फूल बनने हुए, फूल बनने के पहले ही आप उनको नियंत्रित करें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, इस समय जो खरीफ की फसलें हैं उनमें धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनमें किस तरह से समेकित प्रबंधन हम करें और उर्वरकों का प्रबंधन भी किस प्रकार से करें?
0: जी बिल्कुल, देखिए कुछ फसलें इसमें जैसे कपास है या हमारी मक्का है, ये फसलें काफ़ी दूरी पे लगाई जाती हैं, दूरी पे लगाई जाती हैं, तो इनमें हम कसोला या कुदाल से भी हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। और आजकल बहुत तरह के मशीनें आ गई, छोटी मशीन आ गई, छोटे ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें आ गई हैं जो निकाई गुड़ाई का काम करती हैं, किसान भाई समझते हैं, उनका प्रयोग करके भी जुताई आप खेत में कर सकते हैं, आपकी फसल नष्ट नहीं होगी, सिर्फ जो कूड़ है बीच में उसमें आपकी वो मशीन चलेगी, कल्टीवेटर चलेगा। छोटे कल्टीवेटर भी आ गए, किसान भाई गन्ने की गुड़ाई करते हैं कल्टीवेटर से, छोटा कल्टीवेटर होता है जो जिसको बैल से भी चला लेते हैं, उस तरह की मशीनें आजकल उपलब्ध हैं, उनसे आप गुड़ाई करें। अगर इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, खरपतवार तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही वो मिट्टी में मिल जाते हैं, गल सड़ के पोषक तत्व देते हैं, और दूसरा मिट्टी के अंदर हवा का संचार होता है, क्योंकि आजकल बारिश ज़्यादा होती है, पानी खड़ा होने से हमारी मिट्टी पक्की हो जाती है, जैसे ही वो पानी हटे और खेत हमारा जो है वो जुताई के योग्य हो जाए, तो उस समय पर अगर हम गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार प्रबंधन भी होता है और मिट्टी में हवा का संचार भी होता है।
2: बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बताया, और हम कहना चाहते हैं अपने फार्मर से कि ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर सोमवार शाम 5:30 बजे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा कॉल करें और अपने प्रश्नों का, जो आपके जो भी प्रश्न हैं उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट से जानिए। नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूं, 2342-1081, और दूसरा नंबर है 2342-1083। सर एक और कॉलर आ गए हैं हमारे साथ, उनका प्रश्न जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार,
3: अमित तेवतिया बात कर रहा हूँ जी, बुलंदशहर से।
2: जी अमित जी, बताइए अपना प्रश्न।
3: डॉक्टर साहब से प्रश्न ये पूछना है कि हमने ईख जो बो रखी है, तो जो ईख की फसल में हमने दवाई लगाई है, उसमें दवाई ऐसी लगी कि उसकी पता नहीं क्या मात्रा ज्यादा हो गई, या वो ईख जो है नीचे से काली काली पड़ रही है, ना उसमें खरपतवार, तो इसमें क्या मात्रा का सही से क्या, हमें तो बोध ना रहा, इतना क्या करें इसके लिए?
0: ये ईख अब इस समय पे आ गई है, अब खरपतवार तो इसमें बचे नहीं है जमीन वाले, वो तो या तो मर गए होंगे, बारिश वरिश हुई है, इसमें सिर्फ आपके बेल आ सकती है गन्ने में, आप बेल का ध्यान रखें। आई है आपके यहाँ बेल वगैरह जो है, वो बेल जो गन्ने की फसल में आती है?
3: जी
0: हेलो
2: जी, हाँ जी, हाँ जी। बेल आई हुई है आपकी?
0: बेल आती है ना गन्ने की फसल को, लिपट जाती है, काफी नुकसान करती
3: बिल्कुल,
0: है
3: बिल्कुल,
0: तो जो हो चुका वो तो आप लौटेगा नहीं वापस। आपको आपको गन्ने की फसल में इस समय पे यही सलाह दूंगा कि अगर आपने गूल नहीं बनाई है तो अपने गन्ने की फसल में आप गूल बना दें, फावड़े से गूल बनती है आप जानते हैं, उससे क्या होगा कि गन्ने की जड़ें मजबूत होंगी और अगर थोड़े बहुत खरपतवार भी उसमें है तो वो नष्ट हो जाएंगे, और दूसरे फिर गन्ना आपका गिरेगा नहीं अगर हम गूल बनाते हैं। और तीसरा फायदा ये होता है कि इसमें गन्ने में चूहे कम लगते हैं। तो कुल मिला के यही है, और बाकी इसके बाद भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप विषय विशेषज्ञ जो भी आपके आस पास हों, SMS वगैरह होते हैं हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पे, उनकी सलाह मशवरा लें और अपने खेत को दिखाएं और इसकी समस्या को आप दूर कर सकें।
2: जी सर, एक और कॉलर आए हैं हमारे पास। हेलो
4: हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार।
2: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका सर?
4: डॉक्टर साहब, मैं

0: बोल रहा हूँ, शिकारपुर बुलंदशहर से।
1: जी महेश जी, शिकारपुर बुलंदशहर से। जी प्रश्न बताइए अपना।
0: प्रश्न हमारा ये है कि जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो ऐसे में तो खरपतवार बहुत जल्दी बढ़ते हैं, तो किस तरह से नियंत्रित किए जा सकते हैं, और खासकर जब हम रासायनिक दवाओं का उपयोग करें तो किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है?
2: अब तो हम बता देंगे आपको, लेकिन आप ये भी बताओ हमें कि कोई खास फसल है जिसमें आप नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं?
0: तो जैसे तो अभी डॉक्टर बाजरा लगाया हुआ है हमने।
2: ठीक है, देखिए खरपतवार प्रबंधन के लिए आपको समेकित पोषक तत्व समेकित खरपतवार प्रबंधन करना पड़ेगा, इसमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। और अगर रसायनों के प्रयोग की आपने बात की, इसमें क्या सावधानियां बरती हैं? मैंने अभी बताया था कि इनकी सही मात्रा का प्रयोग किया जाए, सही रसायन का प्रयोग किया जाए। जो रसायन धान में काम में आता है वो रसायन कपास में काम नहीं आएगा, ये आपको देखना है। यानी फसलों के हिसाब से रसायन का चुनाव करना, और दूसरा रसायन की सही मात्रा डालनी है। अभी एक किसान भाई का आया था, हो सकता है उन्होंने ज्यादा मात्रा खरपतवार नाशी की डाल दी हो, नुकसान हो गया, और सही समय पर डालना। इन खरपतवार नाशियों का सही एक खास समय होता है जब आपको डालना होता है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
1: और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी फार्मर्स हैं, हमारे जितने भी किसान हैं, इन बातों का, बारीकियों का बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। हम लोग निरंकर इस पर बात तो कर रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे सावन की भी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि सावन आज पहला सोमवार है सावन का भी। बहुत सारे लोगों ने फास्ट रखा है, महिलाएं सजती हैं संवरती हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, और अपने घर में भी बहुत अच्छे से मनाती हैं इस त्योहार को। तो इस त्योहार से जुड़ा एक गीत मुझे याद आ गया, चलिए अपने फार्मर्स को सुनाते हैं।

0: बिल्कुल, आप सुन रहे हैं इस सावन के मौसम में हेलो फार्मर्स ओनली ऑन एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और हमारे कॉलर्स भी जुड़ चुके हैं, हमारे फार्मर्स हैं जो बहुत सारे आज के टॉपिक पे प्रश्न पूछ रहे हैं। और एक और कॉलर आ चुके हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते सर।
1: जी, मैं जगपाल बोल रहा हूँ फतेहवास हरियाणा से।
0: जी
1: हाँ सर, प्रश्न तो कुछ नहीं है, कुछ अनुभव साझा करना चाहता हूँ मैं अपना।
0: बिल्कुल सर, पूछिए जरा, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं।
1: एक तो ये किसान भाई कई बार देखते हैं फेसबुक, देखते हैं इनकी पोस्ट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जी फार्मूला एक मेरी नॉलेज में ना सीधा सा है, पहले खरपतवार निवारण होना चाहिए, फिर कीट निवारण, फिर रोग निवारण, और फिर उसका कुपोषण निवारण। खेती का एक इतना सिंपल सा फार्मूला है जी, मेरी सोच में इतना ही।
2: आपका अनुभव बिल्कुल सही है और हम भी इससे सहमत हैं, और ऐसा ही हम जो है किसानों को बताते हैं कि पहले खरपतवारों को निकालें तो बीमारी कीड़े काफी कम हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और तभी जो है पोषण पर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल सही बात है।
1: अभी मैं
2: और कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा हम पोषण कर देते हैं तो उससे फिर खरपतवार भी आते हैं और

0: कीड़े बीमारी भी आते हैं, और हमारी जितनी भी संस्कृतियाँ होती हैं इसी तरह से होती हैं हमारी संस्कृतियाँ, कि कम से कम खरपतवार आए हमारे, कम से कम जो है कीट और मकोड़े और बीमारियाँ हमारी फसलों को लगें। तो संतुलित उर्वरक प्रयोग हम लोग बताते हैं और सहमत हैं आपसे।
1: बिल्कुल सर, हम आपसे लास्ट में भी जानना चाहेंगे कि कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो आज के टॉपिक के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन और भी बताना चाहते हैं अपने फार्मर्स को कि नॉट ओनली दिस प्रोग्राम वी ब्रिंग ऑन एवरी मंडे एट 5:30 PM, हम एक और प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं ओनली ऑन रेनबो, एंड दैट इज ओनली ऑन संडे शाम 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक, और वो प्रोग्राम क्या है? फार्म टू सिटी।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: बिल्कुल, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपके लिए इतने सारे प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स पे, तो जुड़े रहें हमारे इन सभी कार्यक्रमों के साथ। और दिनेश सर, अब जाते जाते क्योंकि समय सीमा है हमारे पास इस कार्यक्रम की 5:30 से 6 बजे तक, तो आखिरी बातें जो बहुत जरूरी है आज के टॉपिक के लिए किसानों के लिए।
0: जी बिल्कुल, देखिए किसान भाइयों को मैं यही कहूंगा कि कुछ हिस्सों में हमारे देश के बड़ी अच्छी बरसात हुई है, आपको जल निकासी का ध्यान रखना है। धान में तो उतनी समस्या नहीं है, कहीं कहीं धान भी कई बार हमारा डूब जाता है पानी में, जैसे पूर्वी राज्यों में, पूर्वी क्षेत्रों में, तो वहाँ आप कोशिश करें कि धान से भी जल निकास करें जहाँ हमारे धान की फसल डूब रही है। इसके अलावा जो ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहनी फसल हैं, तिलहनी फसल हैं, इनमें आपको जो पानी की निकासी है उसका प्रबंध करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होगा। खरपतवार नियंत्रण की बात है तो समय की खरपतवार नियंत्रण की तरफ हमें जाना चाहिए, रसायनों का कम से कम हमें प्रयोग करना चाहिए, अपनी फसल की, अपने खेत की आप लगातार निगरानी करते रहें, क्योंकि कोई समस्या हमारे खेत में बता के नहीं आती है, हमें ही पहचानना पड़ता है कि क्या समस्या है। अगर वो समस्या दिखती है तो तुरंत उसका निवारण करें, तुरंत उसका समाधान करें, जिससे आपकी फसल, आपकी खेती लहलाए, अच्छी फसल की आपको प्राप्ति हो और अंत में आपको अच्छा लाभ हो।
3: जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इतनी अच्छे शब्दों में आपने बिल्कुल आराम आराम से किसानों को सरल भाषा में समझाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
3: और सुषमा जी, हमारे जो श्रोता हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा जो कार्यक्रम है इसको सुनकर इससे लाभ उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले पाएंगे, और जो खास खास बातें हमारे वैज्ञानिक महोदय ने हमें बताई हैं वो खास तौर पर कि एक तो सबसे पहले खरपतवारों का नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि वो न केवल बीमारियों को बढ़ाने में सहायक होते हैं बल्कि पोषण भी हमारे फसलों का वो ग्रहण करते हैं।
1: बिल्कुल।
3: इसके अलावा जो हमारे फसलों की गुणवत्ता है उसको भी प्रभावित करते हैं।
1: बिल्कुल, तो मुझे उम्मीद है कि हेलो फार्मर्स प्रोग्राम से जुड़े रहेंगे हमारे सभी किसान हर सोमवार शाम 5:30 बजे। तो इस कार्यक्रम से विदा दीजिए, मैं सुषमा आपसे अनुमति लेती हूँ, और धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जो जुड़े रहे प्रोफेसर दिनेश जी का, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: धन्यवाद।
1: साथ ही निरंकार जी भी धन्यवाद, थैंक यू।
3: और अब घड़ी की सुई से मिल गया है इशारा कि कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है हमारा, तो आप सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मंजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा की जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है, जहां जनसुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा से 31वें चरण की मतगणना के बाद लगभग 19,000 वोटों से आगे हैं। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्य नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा करने लगे। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: और जुग जुग जियो अभियान तथा ई प्रत्यारोपण जैसी नई पहलें इस व्यवस्था को किस प्रकार और मजबूत बना सकती है। श्रोताओं, भारत में हर वर्ष 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये वर्ष 1994 में हुए पहले सफल मृत अंगदाता हृदय प्रत्यारोपण की उपलब्धि को याद करने का अवसर है। साथ ही ये दिवस लोगों को अंगदान के महत्व के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़े भ्रम दूर करने का भी संदेश देता है। अंगदान का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में अनेक सवाल आते हैं। कौन अंगदान कर सकता है? कौन कौन से अंग दान किए जा सकते हैं? क्या अंगदान केवल मृत्यु के बाद ही संभव है? ऐसे सवाल आपके भी मन में आए ये स्वाभाविक है। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आइए सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: अंगदान का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वस्थ अंगों या ऊतकों को ऐसे मरीज के उपचार के लिए दान करना जिसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हों। अंगदान मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला, जीवित अंगदान, जिसमें एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी एक किडनी या लीवर का कुछ हिस्सा दान कर सकता है। दूसरा, मृत अंगदान, जिसमें किसी व्यक्ति की ब्रेन स्टेम डेथ घोषित होने के बाद उसके परिवार की सहमति से उसके अंग और ऊतक जरूरतमंद मरीजों को प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं। अक्सर ब्रेन स्टेम डेथ को लेकर भी लोगों के मन में भ्रम रहता है। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसी स्थिति होती है जब मस्तिष्क हमेशा के लिए काम करना बंद कर देता है और चिकित्सीय दृष्टि से व्यक्ति को जीवित नहीं बचाया जा सकता। ऐसे मामलों में निर्धारित कानूनी और चिकित्सीय प्रक्रिया का पालन करते हुए अंगदान संभव होता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2013 की तुलना में आज देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या लगभग 4 गुना बढ़कर करीब 20,000 प्रतिवर्ष पहुंच गई है। इसके साथ ही देश में अंग दान के लिए संकल्प लेने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। फिर भी अंगों की मांग और उपलब्धता के बीच अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है। यही कारण है कि अंग दान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
0: श्रोताओं, अंगदान को लेकर लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न होते हैं। इन सवालों पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में चर्चा के दौरान राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या बताया, आइए सुनते हैं।
2: जो जीवित रहते हुए अंगदान हो सकते हैं उसमें किडनी का दान है। हमारे पास 2 किडनी होती हैं, तो 1 किडनी हम जीवित रहते दान कर सकते हैं। लीवर भी हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसका एक हिस्सा हम जीवित रहते दान कर सकते हैं। लीवर में ये है कि लीवर कुछ दिनों बाद वापस ग्रो कर जाता है, तो लीवर दोबारा आपका पूरा रिकवर हो जाता है जो आपने दान किया है। मृत्यु उपरांत जो दान हो सकते हैं, तो उसमें जो अंग है, 6 तरह के अंग हैं जो कि जीवनदायी अंग हैं, उनके बिना जीवन संभव नहीं है। तो किडनी और लीवर मृत्यु उपरांत भी दान हो सकते हैं। उसके अलावा हार्ट है और हमारे लंग्स हैं, दोनों फेफड़े, इंटेस्टाइन और पैनक्रियाज होता है। तो 6 तरह के अंग हो गए और इसमें से 2 जुड़े हुए हैं। जैसे 2 किडनी है वो अलग अलग मरीजों को लग सकती है और 2 फेफड़े भी अलग अलग मरीजों को लग सकते हैं। तो टोटल 8 व्यक्तियों का जीवन इससे बचाया जा सकता है। और इसके अलावा मृत्यु उपरांत हम अंगों के अलावा टिश्यूज का भी दान कर सकते हैं, जिसमें कि कॉर्निया है जो सबसे कॉमन दान किया जाता है, आई भी बोलते हैं जिसको कॉमन भाषा में, और स्किन का, त्वचा का दान आजकल बहुत कॉमन हो गया है और जिससे जो जले हुए व्यक्ति हैं उनका जीवन बचाना संभव हो पा रहा है, बहुत ज्यादा जो जले हुए लोग होते हैं, और हड्डियों का दान भी। ये 3 कॉमन दान है। उसके अलावा 70-75 तरह के टिश्यूज हैं जिनको दान किया जा सकता है।
0: श्रोताओं, इसके साथ ही लोगों के मन में एक और महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है, अंगदान की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है? ये कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि अंगों का आवंटन निष्पक्ष, पारदर्शी और जरूरतमंद मरीजों तक सही समय पर हो? अंगदान की प्रक्रिया और इसमें अपनाई जाने वाली पारदर्शी व्यवस्था के बारे में डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
2: जो दान किया जाता है उसके लिए आप एक शपथ ले सकते हैं जिसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। भारत सरकार की वेबसाइट है नोटो notto.abdm.gov.in, इस पर जाकर अपना आधार नंबर डालकर और आप अपना OTP डालकर और वेरीफाई करके फिर फॉर्म खुल जाता है, आप उसको भर के प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि मैं मृत्यु उपरांत अंग दान ये करना चाहता हूँ। तो वो आपके अंग एक कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए भारत सरकार की संस्थाओं के जरिए वो जरूरतमंद जो वेटिंग लिस्ट में है उन्हीं को दिए जाते हैं। इसमें कोई भी दुरुपयोग की कोई संभावना नहीं है।

0: ये अंग जो है एक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दिए जाते हैं, जो मरीज वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम है। जो जिंदा व्यक्ति दान देना चाहता है तो उसमें दो तरह से दान होता है, या तो आप अपने नजदीक के रिश्तेदार को दान करते हैं, जिसमें आपके परिवार का कोई व्यक्ति अगर बीमार है, जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वाइफ है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन या भाई बहन है, तो इनको आप नियर रिलेशन में बोलते हैं। अगर इसके अलावा किसी को आप दान देना चाहते हैं जिंदा जो ऑर्गेन है, तो उसके लिए एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है जो कि इसको अप्रूव करती है, तो उसमें आप दे सकते हैं। अगर उनको आप कोई बीच में लेन देन का मामला नहीं होना चाहिए, और शपथ लेने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंग निकाल लिए ही जाएंगे, उस समय भी आपका जो परिवार है, परिवार के लोग हैं, वो हाँ भरेंगे, तो ही आपका अंग दान संभव है।
1: श्रोताओं, किसी भी देश में अंगदान की व्यवस्था केवल अस्पतालों या डॉक्टर्स तक सीमित नहीं होती। इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि लोगों में इसके प्रति कितनी जागरूकता है, व्यवस्था कितनी पारदर्शी है, और जरूरतमंद मरीजों तक अंग समय पर कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाते हैं। भारत में पिछले कुछ वर्षों में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। आइए इस अगली रिपोर्ट में इन्हीं प्रयासों के बारे में विस्तार से जानते हैं।
2: आज भी देश में अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता और उपलब्ध अंगदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर है। हजारों मरीज किडनी, लीवर, हृदय और अन्य जीवन रक्षक अंगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में मृत अंगदान को बढ़ावा देना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक मृत अंगदाता अपने अंगों के माध्यम से 8 लोगों को नया जीवन दे सकता है, जबकि ऊतक दान से कई अन्य लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। अंगदान की दिशा में सरकार लगातार जागरूकता अभियान चला रही है। वर्ष 2025 में अंगदान जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया गया था। इसके बाद इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी अंगदान के महत्व का उल्लेख करते हुए लोगों से इस विषय पर परिवार के साथ चर्चा करने और जागरूकता बढ़ाने की अपील की थी। अब सोल में भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर सरकार ने वर्ष भर चलने वाले जुग जुग जियो अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य अंगदाताओं और उनके परिवारों को सम्मान देना, समाज में अंगदान को लेकर मौजूद झिझक और भ्रांतियों को दूर करना, तथा गांवों से लेकर शहरों तक अधिक से अधिक लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है। इसी अवसर पर ई प्रत्यारोपण नामक राष्ट्रीय डिजिटल मंच भी शुरू किया गया। ये अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये मंच राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के माध्यम से संचालित होगा। इसके जरिए अंगदाताओं का सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, अंगों के मिलान और आवंटन की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया जाएगा, तथा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ बेहतर समन्वय भी स्थापित होगा। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: श्रोताओं, अंगदान केवल किसी एक मरीज का उपचार नहीं, बल्कि कई परिवारों के जीवन में नई उम्मीद का संचार है। चिकित्सा विज्ञान आज जीवन बचाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये भी तभी संभव है जब समाज भी इसमें भागीदार बने। इसलिए जरूरी है कि हम अंगदान के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें, अपने परिवार के साथ इस विषय पर खुलकर चर्चा करें, और यदि संभव हो तो अंगदान का संकल्प लें। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अरुणदीप सिंह।
3: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभाया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यां 33 37 यावत् वर्धयितुं विधेयकः पारितं गतः। राज्यसभाया च लघु मध्यम उद्योग विकास विधेयकः स्वीकृतः। उपनिर्वाचने गुजरातस्य मंजलपुर आसनं भाजपेति दलेन रक्षितम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य विजयः। बिहारस्य बांकीपुर आसने च जनसुराज दलस्य प्रशांत किशोरः अग्रेसरः। दिल्ली न्यायालयेन महिला मल्ल युद्ध क्रीडिकानां यौन उत्पीडन प्रकरणे ब्रजभूषण शरण सिंहः दोषमुक्तः कृतः। भारते 5 लक्षाधिकैः जनैः अंगदानस्य संकल्पः गृहीतः। अंग प्रत्यारोपण संख्या

0: में शामिल करेंगे। व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर। दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
1: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन।
0: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: थैंक यू प्राची। Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 550 points. Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5%. And global crude oil prices tumble.
0: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त। Sensex 550 अंक से अधिक बढ़ा। Nifty 24,700 पर बंद हुआ। एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% से अधिक फिसला और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई।
2: एंड बिफोर वी बिगिन द प्रोग्राम, एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। द व्यूज एंड ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन दिस प्रोग्राम आर देयर ओन एंड नॉट दोज ऑफ आकाशवाणी। आकाशवाणी एडवाइजेस इट्स लिसनर्स टू डू देयर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ रजिस्टर्ड प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी फर्दर एडवाइज ऑल लिसनर्स टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस एंड रिलाई ऑन देयर ओन जजमेंट फॉर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। प्राची
0: और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ। निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे। द सेंसेक्स रोज 544 पॉइंट्स और 0.7% टू क्लोज एट 78,639। The Nifty surged 391 points or 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.2% and the Small-Cap 100 Index gained 1.3%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4.2%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.5% से अधिक और इन्फोसिस में 3.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2%, भारती एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई।
2: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT, as well as focused IT, advanced 2.7%. Services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6% and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined and shares of 206 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.34 रुपए पर बंद हुआ। शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज के परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है, निवेशकों को खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
1: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने ये जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका भी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था, 24,500 निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उससे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब जब वहाँ जाता था। तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है, मैं इसको ऐसे कहूँगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि

0: पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी। तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीग अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहां पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है। मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेके मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया। तो आई थिंक अभी भी फूंक फूंक के पग धरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही हैं, आज बात करें तो जरूर है।
1: Of course, we will continue with this discussion, Charanji, but before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
2: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर। मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं। तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए।
1: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट। इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%। इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%। डू यू थिंक इट हैज, एंड इन फैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जम्प्ड नियरली 200 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टुडे। So is it something to do with the new, that rule that has come out regarding the closure of a business? If you can just explain to our listeners.
0: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. So what happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour on the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination, which happened. Now what happened was cash and F&O used to happen together, so that used to lead to a panic. So F&O traders did not get any time, sometimes they never used to get that time to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the F&O traders to allow the cash section to close down, so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes, so because this was the first day,
1: happened only on the NSE.
0: Only on the NSE. Yes. So because this was the first day, Anubha, so what has happened is that, the traders were excited. They wanted to test waters. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will not see this last minute splurges which happened today.
2: Right. Delhi se hamare saath pehle caller jud rahe hain. Inka naam hai Idris. Ji, karyakram
3: mein.
2: Ji. इद्रीस जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछें।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार।
3: मैं बैंक में गया था, वो नंबर लिंक करवाने खाते से।
0: हाँ जी।
3: तो मैडम का अंगूठा लगा हुआ है, तो कह रहे हैं ये नहीं, नंबर लिंक नहीं होगा।
1: इद्रीस जी, आप यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए।
3: अच्छा
1: जी। हाँ था, अब आप बताएं, आप किस नंबर की बात कर रहे हैं?
3: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था।
1: अच्छा जी, ओके।
0: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है, आपकी मतलब आपकी वाइफ
3: मैडम का खाता है, उनका अंगूठा लगा हुआ है, तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा।
0: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा, इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा।
1: जी।
3: हाँ जी, हाँ।
0: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था, शायद आपका।
3: हाँ,
0: नहीं होगा,
3: वाइफ का है और उन्हीं का।
0: नहीं, नंबर तो उनको, अगर अगर थंब इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल। तो इसमें इद्रिस जी, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें, आपकी हमारी आवाज़ वापस आ रही है फोन से, तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज़ कम करें। तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए, क्योंकि खाली थंब इंप्रेशन होने का यह मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा, क्योंकि इवन यू नो आपको मैं अनुभव और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो

0: आधार में भी होता है और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है, तो इसलिए देयर इज नो रीजन, मुझे लग रहा है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है इधर जी, आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी आजकल जी।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली, अनिल इज ऑनलाइन विद अस। अनिल वेलकम टू मार्केट मंत्रा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
2: यस मैम
1: जी।
2: कोहली साहब, आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द F&O P&L टू बी सबमिटेड इन अलोंग विद द रिटर्न।
0: श्योर।
2: When we submit, we take the net debits and net credits as sales.
0: Yeah.
2: And then take out the profits.
0: Yeah.
2: Isn't it? Yes.
0: Yeah, absolutely.
2: So, but the turnover is, you say, it is high, but we are not supposed to take the actual figures of the derivative.
0: Yeah.
2: Right?
0: Yeah.
2: Only loss and profit is to be taken.
0: Absolutely. Absolutely, Anandji. You are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, to make our other listeners understand with your permission, Anubha and Prachi. Because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures. So the lot size turnover may be very, very high. So that way, you know, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on, and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
3: जयपुर से हमारे साथ जीतेंद्र जुड़ रहे हैं। जीतेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
4: हाँ, थैंक यू। अगर ये जैसे आईसीसी का निफ्टी
1: जितेंद्र जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे जी, आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें आराम से जी।
3: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है, कोई बात नहीं अनुभव, हम आगे बढ़ते हैं
1: जी।
3: रुक करते हैं एशिया और यूरोप के शेयर सूचकांकों की तरफ। एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 1% नीचे आया। बात यूरोपियन शेयर सूचकांकों की करें तो आज ये मिश्रित रुझान के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 1.5% बढ़ा, जबकि लंदन का फुटसी 0.3% नीचे कारोबार करता नजर आया। जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है। टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्रवाई करने को तैयार हैं। जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमेरिका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की। वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की।
1: शरद जी, आई लाइक टू यू नो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज हैपेंड, दैट वेयर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंफर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड येन बाइंग इंटरवेंशन टू हॉल्ट, एज प्राची जस्ट रेड, टू हॉल्ट द जापानीज करेंसी स्लाइड टू 40 इयर्स लो। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली व्हेन यू नो टू कंट्रीज कम टुगेदर एंड डू दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट लाइक दिस?
0: वी नीड टू अंडरस्टैंड अनुभव दैट जापान इज अ वेरी क्लोज अलाय ऑफ द US, एंड इट इज ट्रू दैट द जापानीज येन वाज कोलैप्सिंग, इट वाज फॉलिंग, इट वाज स्लाइडिंग लाइक एनीथिंग। ऑल्दो आई मस्ट पॉइंट आउट हियर दैट व्हेन अ करेंसी स्लाइड्स, बिकॉज जापान इज प्राइमरली एन एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट, सो द एक्सपोर्टर्स वर गेनिंग, बट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट हाइक्स इन जापान द करेंसी वॉज लूजिंग वैल्यू। सो US एज अ ट्रू अलाय came to the rescue and they started buying yen and selling dollars to stabilize the yen. But you know, for how long this will go on is a question mark, because if they sell too many dollars, you know, it'll start impacting US dollar as a currency. But for now, this has been intervened. Let's see. I'm very closely watching this particular event because we monitor forex currency management very, very closely, and it's a very interesting alliance. You know, I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well, but because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
1: So is it the first time we're looking at something like this, or this is a practice which has been around?
0: No, it has happened earlier as well. Okay. Because there were a few years ago when Japanese yen then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has, yes, devaluated its yuan in the past. So sometimes when you are export driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
3: मुंबई से हमारे साथ इस बीच रत्नाकर जुड़ रहे हैं। रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: हेलो, गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है कि फार्मा सेक्टर के बारे में 100% ड्यूटी लगाने की बात सुनी थी
0: जी,
5: तो वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कैसा उचित रहेगा क्या? वैसा भी अभी IT सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, IT सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें

0: इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा। और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, वो 26 को 1 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया जो मैंने दिया ही नहीं था। तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया, उसके लिए
1: पहले तो अभी नहीं लगने वाले हैं, तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती, आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है। दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही। आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी हैं, यहाँ हम कंपनीज का नाम नहीं लेते हैं, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं। आपका आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया है। अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है। आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता, ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहाँ लॉक इन होते हैं, जहाँ पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते। तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए, और अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्रा को बताइएगा, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे।
2: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी उससे जब ये निकालेंगे तो शरद जी, जैसा कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा।
1: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती होगी,
2: कटौती भी होगी, पर
1: उसमें थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं क्योंकि प्री मैच्योर माना जाता है, पर क्योंकि आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए।
3: देखते हैं अगला सवाल क्या है। भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: नमस्ते शरद कॉलेज जी। सर, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट पर रौनक आई है क्योंकि ये एफआईआई का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
1: जी।
4: तो ये अब डू यू थिंक कि अब ये ट्रंप की, और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा डर रहेगा उनके इलेक्शन का, तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट, and this will be the last time we will be seeing these levels and we should see higher levels. kya aapki nifty ki bare mein guess hai for next say 2 years before trump retires? thank you sir.
1: नहीं, ट्रंप शंकर, पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं। ये अमेरिका में दो, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है, सेनेट्स में भी कुछ सीट खाली हो रही हैं, तो वहाँ उसके बाद अगर मान लीजिए मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते। पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया, आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी। देखिए, ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा, ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि रौनक आ रही है वापस, पर जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा, तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर। मैं बहुत निराशावादी बात करना नहीं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कहीं से कोई धमकी आ जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिगड़ जाती हैं। तो शंकर, उम्मीद तो यही करते हैं कि अब ये जो रौनक है ये टिके। वाकई हमने शुरू में बात किया, 24,700 आज छुआ है, बहुत दिनों बाद ये छुआ है, 25,000 की तरफ निफ्टी की हम उम्मीद करते हैं बढ़े, पर अभी बहुत फूंक फूंक कर पग रखने की जरूरत है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने का अनुभव ये कहता है कि अनुभव
2: जी
1: कि ये जो है अभी इस पर पूरी तरह से यकीन करना सोच समझ के
2: जी, थोड़ा जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी जी, जी।
3: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, और दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
5: मार्केट मंत्रा को नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ जैसे ईरान और अमेरिका का
2: जी, सवाल पूछिए प्लीज।
5: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध ड्राम लग रहा है, ये कब तक क्लियर होगा?
1: अमेरिका और

0: ईरान का युद्ध विराम लग रहा है कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ, यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी, दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है, युद्ध किसी के हक में नहीं है। अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ रवि जी ने अगर अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पर भी डल जाता है, आप उस पर जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा हूँ।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। शहनाज इज ऑनलाइन with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
2: Hi, good evening to all of you.
1: Good evening. Please.
2: Sharan ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले वो कर रही हूँ आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 AS में और जी. उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, एनीवेज, तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी, तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए, विच इज ऑफ कोर्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है, तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
0: अगर मैं ठीक समझ
2: एस में दिखा रहा था इसलिए मैं हो तो कुछ भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं, लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विद इन 24 आवर्स आई रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है, उसका जवाब आप देना मुझे
0: जी। शहनाज देखिए, ये ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है, तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल प्रोसेस है, वो कभी ना कभी जिसका असल में है वो व्यक्ति जब देखेगा कि मेरे में दिख नहीं रहे कहाँ चला गया, तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गया। तो शहनाज जब तक के लिए पैसे आपके पास हैं आप एंजॉय करिए, पर आप वापस देने के लिए तैयार रहिए।
1: यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंटिन्यूड टू एक्सपैंड इन जुलाई ऑल्दो द पेस ऑफ ग्रोथ स्लोड टू इट्स वीकेस्ट लेवल इन नियरली 5 years अकॉर्डिंग टू द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI released today, the seasonally adjusted manufacturing PMI eased to 53.5 in July from 54.2 in June, its lowest reading since August 2021. Despite the slowdown, the index remained above the crucial 50-point threshold that separates expansion from contraction, indicating that manufacturing activity continued to improve. The report said manufacturers continued to benefit from resilient demand, although growth in new orders, input purchases and employment moderated during the month. While domestic demand softened, export orders gained momentum, with firms reporting stronger sales to markets including Canada, Egypt, Indonesia, Kenya, Nepal, South Africa, Thailand and the UAE. Sharaji, quick comment on... I will come to you for a comment on this PMI reading that has come in today. Yeah. But before that, let's take the next call coming in from Noida. Amit is online with us. Amit, welcome to the program. Please ask your question.
3: Yeah. Yeah, thank you, Market Mantra team. And my question is to Mr. Sharad Kohli ji.
0: Yeah.
3: Good evening, sir.
0: Good evening.
3: Sir, I am a regular investor in mutual fund. When I say regular, I have done the investment through an investment advisor.
0: Yeah.
3: However, after, you know, exploring the market, I am now planning to move to direct investment.
0: Okay.
3: So, what I have done, I have two funds which are for me, like I am investing. One is started in March 2026 itself.
0: Hmm.
3: And other one is the older one. It started in 2017.
0: Okay.
3: So my question is, shall I go ahead and stop the SIPs here, and I can make a direct plan investment in these? And is there a possibility that these investments which I've done through regular channel, they can be smoothly moved towards the direct? If I continue with the same port, what mutual fund?
0: Well, Amit, I'm still trying to comprehend as to what do you mean by direct investment, because apparently Amit is doing through an advisor.
1: Yeah, and I think these he has done himself, you know, when gone ahead and do the...
0: Yeah, yeah. So you can easily move, because Amit, the basic mutual fund investments, they remain in your name. So investment advisor's role is only to the time of recommending you, and then he puts his agency number or whatever. There is nothing which stops you

0: from doing directly, first of all. And if you want to move these investments also directly to your name, you can easily move. You can put in a request to the, or you can exit and probably re-enter. Even that is the option. But stopping SIPs, I may not recommend, because SIPs, you know, a lot of people ask that whether it should be stopped or it should be continued. I think SIPs only benefit when you stay in for long term. But principally, to answer your question, yes, you can go direct. Obviously, I'm sure you've got enough knowledge bank with you where you don't need an advisor, and you know which funds are doing better, which are not doing better. So, but principally, yes, you can absolutely do that. There's nothing that stops you.
1: आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच मजबूत आर्थिक साझेदारी का आह्वान किया है। उन्होंने अगले 3 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि इस लक्ष्य को अधिक निवेश, व्यापार की बाधाओं को कम करते हुए हेल्थ केयर तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हासिल किया जा सकता है। नई दिल्ली में आयोजित भारत उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम में बोलते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत और उज़्बेकिस्तान के व्यवसायों को एक दूसरे के यहाँ मौजूद अवसरों में निवेश करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश माइनिंग, टेक्सटाइल्स, फार्मा और हेल्थ केयर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग और आईटी तथा डिजिटल इकोनॉमी जैसे क्षेत्रों में मजबूत सहयोग बना सकते हैं।
2: Let's move on to commodities. Global crude oil prices plunged today after US President Donald Trump held off a fresh attack on Iran as he sought a quick deal that would halt Tehran's nuclear ambitions and reopen the Strait of Hormuz. Brent crude was trading 5.4% down at $83.16 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 6.4% lower at $79.26 per barrel when reports last came in. Moving on to gold and silver, the Indian bullion market, 24 carat gold was trading marginally up at 1,43,520 rupees per 10 grams, while silver was also trading marginally up at 2,18,330 रुपीस पर किलोग्राम अ शॉर्ट व्हाइल अगो।
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 0.2% की बढ़त के साथ 1,41,797 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 0.2% बढ़कर 2,17,609 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।
2: एंड दैट्स ऑल वी हैव टाइम फॉर इन द शो टुडे।
1: शरद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और अनुभा के भी सवालों के जवाब।
0: थैंक यू सो मच।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise, Sensex adds nearly 550 points, Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5% and global crude oil prices tumble. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, from the entire team, goodbye.
3: Namaskar. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अतहर सईद। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर मुख्य मुकाबला इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच में था। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: कांग्रेस ने मध्य

0: प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट जीत ली है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। इसका लक्ष्य भुगतान में देरी को दूर करना और विवाद समाधान को सरल बनाना है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा के मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर सदन में हंगामा किया। गतिरोध जारी रहने के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने दस्तावेज पटल पर रखे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया और कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 78,639 पर, जबकि निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi, the mantra of reform, perform and transform is being effectively implemented. The minister said that the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. Earlier, the Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. When the Lok Sabha began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: जी राजा रमन, आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच, हमेशा अच्छा लगता है आकाशवाणी में।
1: ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक तालिका में चौथे नंबर पर अपना कैंपेन खत्म किया है। 122 खिलाड़ी गए थे और 39 मेडल लेकर घर लौटे हैं, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज शामिल हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में आप कैसे रेट करेंगे?
2: उम्मीद के अनुसार ये बहुत शानदार परफॉर्मेंस था। गेम्स से पहले अगर आप मुझसे पूछते तो मैं 30 मेडल का शायद टारगेट लगा था भारतीय टीम के लिए, लेकिन 39 मेडल से वापस आना, ये दिस इज अबाउट माई एक्सपेक्टेशन। और मैं सराहना करूंगा पूरी टीम की, चाहे वो एथलेटिक्स की टीम हो या फिर वेट लिफ्टिंग हो या फिर बॉक्सिंग हो या जूडो हो, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है। और ये देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा काम करेगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रदर्शन।
1: राजा, आपने कहा कि खेलों से पहले आप 30 का टारगेट देते, लेकिन अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पिछले प्रदर्शन की बात करें तो 2002 से अब तक ज्यादातर 50 से ज्यादा मेडल्स लाए। बर्मिंघम की बात करें तो 61 मेडल थे। तो जब हम खेलों की बात करते हैं, ये सब आंकड़ों की बातें होती हैं और स्टेटिस्टिक्स के बाद, जैसे मैंने भी कहा कि 2002 के बाद ये पहली बार है कि 50 से कम मेडल लेकर आए हैं, पर इसके

0: ये बात भी है कि अगर हम कॉमनवेल्थ गेम्स के जो पिछला इतिहास है या हाल का भी जो रीसेंट हिस्ट्री है उसको देखें, तो ये पहली बार है कि जो खेल हैं काफी कम हो गए. बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, शूटिंग, ये ऐसे खेल हैं जहां पारंपरिक तौर पर भारत जो है काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, और ये खेल इस बार नहीं थे. तो क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय एथलीट्स की जो परफॉर्मेंस है उनको सिर्फ नंबरों से, आंकड़ों से आंकना सही नहीं है इस परिप्रेक्ष्य में?
1: नहीं, ये नंबर तो हमेशा नंबर का खेल है, और मेडल तालिका में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया के भी मेडल कम हो गए क्योंकि खेल कम हो गए थे. इधर शूटिंग, रेसलिंग, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऐसे खेल में हमारे लिए हमेशा बहुत ज्यादा मेडल मिलते थे. लेकिन ऐसा खेल का ना होना दुख वाली बात है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ये गेम्स विक्टोरिया में होने थे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर उन्होंने मना कर दिया था, और लास्ट मिनट में ग्लासगो आगे आए और फिर वो आयोजन किए हैं. तो तारीफ के काबिल है ग्लासगो, लेकिन क्योंकि सिर्फ 10 डिसिप्लिन थे यहाँ पर जहाँ हम हिस्सा लिए थे, ये मेडल नंबर कम दिखेंगे लेकिन ओवरऑल परसेंटेज मेरे को लगता है कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के मेडल कम हुए, कनाडा के मेडल कम हुए, इंग्लैंड के मेडल कम हुए, हमारे भी कम हुए. और मैं नहीं इसको खराब प्रदर्शन नहीं मानूंगा. अगर आप 60 और 70 मेडल देखते हैं और फिर वहां से 39 देखेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि यहाँ पे खेल कम थे, फ्यूअर डिसिप्लिन, इसीलिए शायद नंबर्स कम है.
0: जी, अब हम अगर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो बॉक्सिंग भारत के कैंपेन का स्टार रहा. हमने रिकॉर्ड 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 7 गोल्ड भी हैं. ये किसी भी देश द्वारा किसी एक कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग में सबसे ज्यादा मेडल है. तो ये कामयाबी बेशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय बॉक्सिंग की बढ़ती ताकत को दिखाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, और कौन से वो बॉक्सर्स हैं जो आपको लगता है जो इसमें उभर कर आए हैं इन गेम्स में?
1: टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, जिस तरीके का कंपटीशन का स्तर रहा उस हिसाब से भारतीय टीम ने अपने 10 मेडल लाए, वहां पे 7 गोल्ड मेडल और फिर 3 सिल्वर मेडल है, ये बहुत अच्छी बात है. लेकिन हम सबको ये मानना पड़ेगा कि एशियन गेम्स जो महीने दो महीने में होना है, वहां पे अगर ऐसा प्रदर्शन होता तो बहुत ज्यादा उत्साह का जगह बन जाता है. कॉमनवेल्थ में बॉक्सिंग और फिर वेट लिफ्टिंग, इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा नहीं है, और इसीलिए शायद आपको समझना पड़ेगा. मैं नहीं कह रहा कि 10 मेडल खराब मेडल है, 10 बहुत बेहतरीन मेडल है. जो कॉम्पिटिशन है उसमें हम बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं, ये हमारी गलती नहीं है कि कॉम्पिटिशन कमजोर रहा
0: जी, क्योंकि ये भी एक बात हो रही थी कि जी बॉक्सिंग में हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं मिला है इन गेम्स में.
1: हकीकत तो यही है, सच ये है कि कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी जाना पड़ेगा, रिंग में उतरना पड़ेगा और बाउट जीतने पड़ेंगे.
0: बिल्कुल,
1: और वो जीत के आए हैं तो दे डिजर्व प्रेस, तारीफ तो जरूर करनी चाहिए. लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि कुछ खेल ऐसे हैं जहां पे एशियाई खेल में हमको मेडल्स कम मिलते हैं. वेट लिफ्टिंग में वहां पे गोल्ड आ गया था, उसमें भी आपका प्रदर्शन आप देखेंगे तो 190 में गोल्ड मेडल लेकर आई है, सिल्वर मेडल जिसके पास था उनसे 20 किलो ज्यादा उठाई, तो दिखाता है कि कॉम्पिटिशन कमजोर ही रहा है, लेकिन आपको मैदान में फिर भी उतरना है. और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो मेडल्स बॉक्सिंग में और वेटलिफ्टिंग में आए मैं उनको कम नहीं आंकूंगा, लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है. ऐसा ही प्रदर्शन एशियन गेम में जब करेंगे तो बहुत खुशी वाली बात हो जाएगी.
0: जी, आप क्योंकि वेटलिफ्टिंग की बात कर रहे हो, जैसे भी आपने कहा कि जब वेटलिफ्टिंग की बात हो और मीराबाई चानू की बात ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता है. उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो भारत की सबसे महान एथलीट्स में क्यों शुमार हैं, और उन्होंने इनफैक्ट कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हैट्रिक है टाइटल्स की वो पूरी की है. तो इसके अलावा उनकी तो ऑफकोर्स हमने भी बात की, पर बाकी और कौन से वो वेटलिफ्टर्स हैं जिन्होंने इन खेलों में, ग्लासगो खेलों में, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है वेटलिफ्टिंग की बात करें?
1: विद्या रानी देवी का प्रदर्शन सही रहा है मुझे लगता है. मुत्तुपांडी राजा जो मेन सेक्शन में मेडल जीते हैं, बहुत अच्छे लिफ्टर्स हैं, लेकिन एशियन स्टैंडर्ड अभी शायद नहीं आया इनका. लेकिन क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की बात हो रही है, वहां पे अच्छा प्रदर्शन किया है कईयों ने. अगर वहां पे हमें इतने सारे मेडल्स मिलते हैं, 8 मेडल लेकर आए हैं, अफसोस वाली बात है कि 1 या 2 हम यहाँ पे घर पे रखना पड़ा उनको, हमारे लिफ्टर्स जा नहीं पाए, अफसोस वाली बात है. लेकिन 8 मेडल के साथ वापस आना कॉमनवेल्थ गेम से, ये अच्छी बात है, इट इज अ पॉजिटिव साइन. जो वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है उनके सामने एक चैलेंज है कि जो खिलाड़ी वहां गए उनको और उठाए उनका स्टैंडर्ड, और फिर एशियन गेम्स में कुछ अच्छा कर दिखाए.
0: एथलेटिक्स की बात करें तो ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें भारत की मेडल्स की गिनती में कई बड़े अचीवमेंट्स हमको मिले हैं. बेशक ऑफकोर्स स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने तो जैवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीत कर जो देश को उन पर भरोसा था एक बार उसको फिर से पूरा किया है, पर उनके अलावा अगर हम बात करें कई ऐसी अचीवमेंट्स है, कई ऐसी सफलताएं मिली जिनके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, तो वो मैं आपसे वो सक्सेस स्टोरीज जानना चाहूंगी कि एथलेटिक्स में वो कौन सी ऐसी सफलताएं थी जो इन खेलों में उभर कर आई हैं, जिनके बारे में जैसे मैंने भी कहा कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमें यहाँ पर मेडल्स मिलेंगे।
1: सच बताऊं तो मेरी उम्मीद सिर्फ 3 मेडल की थी, नीरज चोपड़ा जैवलिन में, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप में और फिर तेजस्वी शंकर डिकैथलॉन में। ये 3 मेडल की उम्मीद थी, तीनों मेडल लाए वहां से। बट मुझे लगता है कि तेजस्वी शंकर वाला डिकैथलॉन मेडल बहुत ही अहम मेडल है, क्योंकि 4 दिन पहले ही वो हाई जंप कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए थे, चोट लग गया था उन्हें, उनके नी में प्रॉब्लम था, फिर वो खेल नहीं पाए थे हाई जंप। लेकिन वहां से आना और फिर डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीतना, और पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी डेकैथलॉन में मेडल जीत रहा था, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल है। और फिर सर्वेश कुशारे हाई जंप में, और कैसे हम बोले गुलवीर सिंह को,
0: बिल्कुल,
1: जिनके पास 10,000 मीटर में सिल्वर और 5,000 मीटर में ब्रॉन्ज, दो मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने एथलेटिक्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कहे तो ही इज द फर्स्ट एथलीट जो जिनको दो मेडल मिले। और फिर सीमा जो पीएचडी की स्टूडेंट भी है और डिस्कस थ्रो चैंपियन भी रही है, तो उनका ब्रॉन्ज मेडल भी बहुत बड़ा मेडल है हमारे लिए। 10 मेडल ट्रैक एंड फील्ड से आना, एथलेटिक्स से आना, और फिर 6 मेडल पैरा एथलीट्स के पास से आना, 16 मेडल एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स ने कंट्रीब्यूट किए, इट इज मैसिव। और मुझे लगता है कि वेटलिफ्टिंग और फिर बॉक्सिंग से ज्यादा अगर मैं इंप्रेस होता हूँ तो एथलेटिक्स से होता हूँ।
0: आपने पैरा एथलीट्स की बात की, तो पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारत के पैरा एथलीट्स हैं वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, इवेंट्स में भारत का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं, और ग्लासगो में भी उन्होंने देश को निराश नहीं किया। तो उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए आप ओवरऑल भारत में पैरा स्पोर्ट्स की प्रोग्रेस को कैसे देखते हैं, और अभी भी कौन से वो खेल हैं पैरा स्पोर्ट्स में जिसमें है तो भारत की काफी अच्छी सफलता मिली और हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं?
1: बहुत सारे खेल हैं पैरा स्विमिंग में अच्छा कर सकते हैं, हालांकि हम स्विमिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारे मेडल्स कम है, वहाँ और मेडल्स आ सकते हैं। पैरा एथलेटिक्स में हम लगातार अच्छा करते आए हैं, पैरा साइकिलिंग में बेहतरी हो सकती है, तो बहुत सारे खेल है। व्हील चेयर बास्केटबॉल हुआ है, उसमें भी अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। लेकिन एक मुहिम चला है पैरा स्पोर्ट को सपोर्ट करने का जो भारत सरकार करता है, नॉट ओनली फॉर पैरा स्पोर्ट, एबल बॉडीड स्पोर्ट के लिए भी। अगर आज ओलंपिक स्पोर्ट अच्छे स्तर पर है, भारतीय सरकार को क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो जितना पैसा वो लगाते हैं मार्केट से उतना बनता नहीं है, प्राइवेट स्पॉन्सर्स भी नहीं लगा पाते, तो भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रमोटिंग पैरा स्पोर्ट। और मुझे लगता है कि उसी के नतीजे, उसी के अंजाम हमको देखने मिल रहे हैं कि अच्छे अच्छे मेडल्स आए हैं। और सबको ये बताना भी होगा कि हमारा जो स्ट्रेंथ है पैरा एथलेटिक का, चाहे वो जैवलिन हो या फिर हाई जंप हो, जहां हम लगातार मेडल जीते हैं, वैसे इवेंट नहीं थे इधर ग्लासगो में। विमेन शॉटपुट में शर्मिला मेडल लेकर आई, गोल्ड लेकर आई, ऐसे मेडल्स हमारे लिए संकेत देते हैं कि पैरा स्पोर्ट सही दिशा में चल रहे हैं।
0: एक और स्पोर्ट्स जहां से हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है वो है जूडो। जूडो में ऑफकोर्स एक बार फिर हमारे जूडो का जो है उन्होंने इतिहास रचा है, हर्ष सिंह और अस्मिता डे ने भारत के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो गोल्ड मेडलिस्ट वो दोनों बने, जबकि यामिनी मौर्य ने सिल्वर जीता और उन्नति शर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण कदम है जूडो जैसे एक खेल में, जो एक गैर पारंपरिक खेल हम कहेंगे भारत की दृष्टि से, कि इस तरह मेडल्स जीतना कितना महत्वपूर्ण है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अगर हम ओवरऑल बात करें देश की, जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं वो युवा खिलाड़ियों को किस तरह प्रोत्साहित कर सकती हैं कि वो हॉकी, शूटिंग और ट्रैक एंड फील्ड जैसे खेलों से बाहर निकलकर इन गैर पारंपरिक खेलों में ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट करें।
1: जूडो के 4 मेडल बहुत अहम है, क्योंकि आप देखें तो जूडो में हमारे मेडल्स एशियन गेम्स में भी कम मिलते हैं, उससे एक लेवल नीचे है कॉमनवेल्थ कॉम्पिटिशन, वहां पे गोल्ड लाना पहली बार आ रहा था गोल्ड भारत को, विच इज गुड, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम हो रहा है जूडो को लेके। और हम सबको ये समझना चाहिए कि हम बहुत पैसा कोई ऐसे खेल में लगाते हैं जहाँ पे ज्यादा मेडल्स हैं, जैसे एथलेटिक्स में 40 इवेंट है और फिर 120 मेडल तक आपको एथलेटिक्स में आप जीत सकते हैं, कोई भी देश जीत सकता है, वैसे ही जूडो में आपके अगर 10 इवेंट मेन के और 10 इवेंट विमेन के हैं तो 20 मेडल आप जीत सकते हैं। तो ऐसे खेल को बढ़ावा देना शायद एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन रहा भारतीय खेल में कि जूडो को आगे बढ़ाया गया। और फिर कुछ प्राइवेट स्पॉन्सर्स आए हैं जो जूडो को अपनाए हैं और फिर वहां पे बेलारी में ट्रेनिंग करके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। भोपाल में एक बेहतरीन एकेडमी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, वहां से भी बहुत बड़ा योगदान रहा।
0: आपकी नजर में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से वो ऐसे खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने सबको चौंकाते हुए प्रदर्शन किया, जिसको हम एक कहते हैं ना ब्रेकआउट स्टार्स, जिन पर सबकी नजर आने वाले भविष्य पर रहेगी?
1: डिस्कस थ्रो सीमा जरूर मैं कहूंगा कि शी विल बी अ सुपरस्टार। कुछ साल पहले वो माँ बनी, कुछ साल पहले वो खेलना भी बंद कर दी थी, और फिर वहां से आना और अपना पढ़ाई करते हुए खेलना और फिर राष्ट्रमंडल खेल में मेडल जीतना और फिर गुलवीर का आगे बढ़ना, वर्ल्ड क्लास रेसिंग करके दो मेडल हासिल करना, विच इज वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर आप मुझसे एक मेडल की बात करें तो वो तेजस्विन शंकर वाला मेडल होगा, क्योंकि मुश्किल काम होता है। हमारी सबकी नजर 100 मीटर धावक पे हो जाती है या जैवलिन थ्रोअर पे होती है, ये खेलते हैं 10 अलग अलग इवेंट और हमें पता भी नहीं चलता कि लीड कौन है, कौन सेकंड चल रहा है, कौन थर्ड चल रहा है। सबसे बड़ा मेडल मैं मानता हूँ।
0: पूरे कैंपेन को देखते हुए आप क्या कहेंगे कि इस ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भारत की जो पारंपरिक ताकतें थी उससे आगे बढ़कर जो हमने गहराई दिखाई है, जहां सिर्फ कुछ खेलों पर निर्भर रहने के बजाय हमारी टीम्स ने कई अन्य खेलों में जो मेडल जीते हैं, इससे देश में बढ़ते हुए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में आप क्या कहेंगे?
1: पॉजिटिविटी फैलता है। हम सबको पता था कि बॉक्सिंग में कुछ अच्छे अंजाम आएंगे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स वेटलिफ्टिंग से आएंगे। हमेशा ये पीछे रह जाते थे क्योंकि हम शूटिंग के 15-20 मेडल देख लेते थे या फिर कुश्ती में 10 मेडल या 12 मेडल आ जाते थे, तो वो हमेशा पीछे हो जाते थे। उनके मेडल्स यही रहते थे, 7 या 8 मेडल होते थे उनके, लेकिन बाकी खेल आगे हो जाते थे। अब की बार फोकस उन पे रहा, सारा ध्यान उन पे रहा, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिव साइन यह है कि पिछले 10-12 साल में भारत सरकार बहुत पैसा लगाई है खेलों में और उन्हें प्रोत्साहित करेगा और ज्यादा पैसा लगाने में। 3 या 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है खेलो इंडिया मिशन को लेके, बहुत पैसे लगेंगे स्पोर्ट में। और मुझे लगता है कि हर बच्चा इस देश में स्पोर्ट खेलने लायक हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हम खेलेंगे तो कुछ पैसा बना सकते हैं।
0: आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि एशियन गेम्स अब सिर्फ 1.5 महीना दूर है, जहां पर चीन, जापान, साउथ कोरिया, सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वहां के बड़े बड़े नाम होंगे और इन बड़े बड़े नामों के साथ भारतीय एथलीट्स का मुकाबला होगा, तो ग्लासगो में जो हमारे एथलीट्स की परफॉर्मेंस है उन्हें देश और खेलों की संख्या के हिसाब से इस बड़े स्टेज के लिए तैयारी में कितनी मदद मिली है?
1: मदद तो बहुत मिलनी चाहिए, लेकिन आप एथलेटिक्स में देखेंगे कम से कम 30 मेडल आएंगे आपको एशियन गेम में, और शूटिंग जब वापस आ गया है और हमारे कुछ पहलवान मेडल लाएंगे तो मुझे लगता है फिर एक बार हम 100 मेडल के आसपास आएंगे, 100 भी पार करेंगे। पिछले बार 100 पार कर गए थे हैंगजो में, और जापान में जब जाएंगे मुझे लगता है कि 100 मेडल के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं भारतीय टीम से। तैयारियां सही रही है, कुछ अच्छे एथलीट्स विदेश में ट्रेन कर रहे हैं, कुछ को अपने ही घर में अच्छी शिक्षा मिल रही है, ओवरऑल पॉजिटिव है और मुझे लगता है एशियन गेम्स में भी बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे और 2 महीने बाद हम शायद सेलिब्रेट करेंगे कि एशियन गेम में अच्छा प्रदर्शन रहा।
0: जी राजारमन, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ इस विषय पर अपनी जानकारी साझा की, अपने विचार साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ती वैश्विक पहचान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजारमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी अनुभा रोहतगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समय हो चुका है 7:25 और पूरे 15 सेकंड। सुर्खियों में के पार अब बात हो रही है आपकी इस शाम की, हमारी और मधुर संगीत की। प्रोग्राम है सांझ ढले।

जी आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सांझ ढले। और ये जो इंतज़ार करो गीत आपने सुना, यानी कि ये कली जब तलक फूल बन के खिले, महेंद्र कपूर की आवाज़ थी और साथ में लता दाई थी। बहुत हद तक महेंद्र कपूर की शुरुआती दौर में जो आवाज़ थी वो रफ़ी साहब से मिलती थी, और धीरे धीरे जब वो प्लेबैक सिंगिंग करते रहे और एक अच्छा खासा दरमियाना हो चुका था, उसके बाद उनकी आवाज़ महेंद्र कपूर के तौर पर पहचानी जाने लगी। शुरुआत में रफ़ी साहब और उनकी आवाज़ में भेद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था। आए दिन बाहर के फिल्म से गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत और प्यारीलाल का था इसमें संगीत।

0: महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में ये गीत आपने सुना, आदमी और इंसान फिल्म से, यारा दिल तारा मेरा दिल करता। संगीतबद्ध किया था इसे रवि ने और इस फिल्म का निर्देशन किया था बीआर चोपड़ा ने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम सांझ ढले। एक छोटे से अंतराल की अनुमति चाहता हूं आपसे, बस उसके पार आपसे पुनः भेंट होगी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
4: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
3: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
6: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
7: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
6: दिल्ली पर्यटन DTTD

0: द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।

1967 में आई फिल्म शागिर्द का एक गीत वो है जरा जरा खफा खफा, रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज़ में। पर्दे पर इसे पिक्चराइज किया था सायरा बानो और जॉय मुखर्जी की और जोड़ी ने, और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत गर्दान ने। इस गीत के साथ ही आपसे मैं फिलहाल अनुमति चाहता हूँ। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पापा ये सब?
5: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
4: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
5: अरे ये कैसे रह गया?
4: पैसे गए?
5: नहीं नहीं नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
6: दादू ये
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: सही कह रहा है।
9: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन। मुख्यमंत्री ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने पुराने उपयोग योग्य कपड़े दान करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे उनका पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अपसाइक्लिंग की जा सके। दिल्ली मेट्रो के 10 स्टेशनों पर अर्पण दान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे नागरिकों के लिए इसमें भागीदारी करना और अधिक सुविधाजनक होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल राजधानी में सतत अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं के लिए आजीविका के नए अवसर भी सृजित करेगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे अपने पुराने और उपयोग योग्य कपड़े अर्पण केंद्रों पर दान कर इस जनभागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
10: आज का ये अर्पण वस्त्र केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और मैं ये मानती हूँ कि इस जिम्मेदारी का निर्वाह हम सब लोग मिलके करेंगे। अपने घर से जो भी आपको कपड़ों का सामान नजर आए, भगवान जी के वस्त्र दें तो वो ले जा करके अर्पण केंद्र पे दीजिए और उस समाज को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए, जिससे किसी बहन को रोजी रोटी भी मिलेगी और समाज से इस तरह का जो अपविष्ट है, जो गंदगी है, वो भी खत्म होगी।
9: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के प्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली सचिवालय में इस बैठक का उद्देश्य राजधानी को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाना है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार राजधानी के लिए ऐसा हरित पारिस्थितिकी तंत्र तैयार कर रही है जहां उद्योग, तकनीक और पर्यावरण एक दूसरे के सहयोगी बने। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि मजबूत उद्योग और सुरक्षित पर्यावरण दोनों साथ साथ आगे बढ़ें, तभी दिल्ली का भविष्य और बेहतर बनेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के कृषि मंडियों के पुनर्विकास और विभिन्न मंडियों के प्रस्तावित विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गाजीपुर, नरेला, IFC गाजीपुर आदि से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया गया और मंडियों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए चल रहे कार्यों की जानकारी ली गई। एक रिपोर्ट।
0: बैठक में गाजीपुर में लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे आधुनिक पोल्ट्री मार्केट की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना का लगभग 85% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस आधुनिक पोल्ट्री मार्केट में 100 थोक व्यापारियों की दुकानें और 120 प्रोसेसिंग यूनिट विकसित की जा रही है। गाजीपुर फल सब्जी और फूल मंडी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि मंडी में जल भराव की समस्या दूर करने के लिए 200 मीटर लंबी बाईपास ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा मंडी की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा नियमित रूप से आवारा पशुओं को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। बैठक में नरेला अनाज मंडी में 2 अतिरिक्त स्टील शेड विकसित करने के प्रस्ताव और गाजीपुर में इंटीग्रेटेड फ्रेट कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित आधुनिक फूल मंडी परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की कृषि मंडियां किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इसलिए इन मंडियों को समय की जरूरतों के अनुरूप विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुव्यवस्थित और बेहतर आधारभूत ढांचे वाली मंडियां न केवल व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाएंगी बल्कि पूरी कृषि विपणन व्यवस्था को भी अधिक समक्ष बनाएंगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
9: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। एक रिपोर्ट।
6: उत्कलमणि के नाम से प्रसिद्ध गोप बंधु दास का

0: जन्म 9 अक्टूबर 1877 को ओडिशा के पुरी में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की स्वतंत्रता, शिक्षा के प्रसार, समाज सेवा और गरीब तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित किया। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित गोपबंधु दास ने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और मानवीय सहायता कार्यों का भी नेतृत्व किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि गोपबंधु दास ओडिशा की एक महान और प्रेरणादायक विभूति हैं।
1: It's a big moment for the people of Odisha.
2: ये उड़ीसा के साथ साथ पूरे देश के लोगों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर है। हम सभी जानते हैं कि उत्कल मणि गोपबंधु दास उड़ीसा के एक महान और बहुआयामी व्यक्तित्व थे। उन्होंने पत्रकार, कवि और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया। अपने जीवन काल में उन्होंने उड़ीसा और देश के लोगों के लिए ऐसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
1: For the people of Odisha and beyond.
0: दिल्ली में गोपबंधु दास की प्रतिमा लोक सेवक मंडल की ओर से स्थापित की गई है। इस संगठन की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। राष्ट्रीय राजधानी में उनकी प्रतिमा का अनावरण स्वतंत्रता संग्राम, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को दी गई महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। विशाल दास की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में आज अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। अस्पताल में उन्नत आपातकालीन विभाग के साथ धर्मशाला और नेत्र रोग विभाग में स्थापित अत्याधुनिक उपकरण सहित अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि चिकित्सक समाज में भगवान के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वहीं स्थायी समिति की अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि अस्पताल निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है और यहां के चिकित्सकों की विशेषज्ञता, आधुनिक मशीनें तथा सुदृढ़ आधारभूत ढांचा हजारों मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध करा रहा है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज उत्तरी दिल्ली स्थित नजफगढ़ नाला पर नए पैदल पुल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ये नया फुटब्रिज गुडमंडी, राजपुरा, रूपनगर, मुखर्जी नगर और यमुना मार्ग को आपस में जोड़ेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि ये परियोजना दिल्ली सरकार की नागरिकों की सुरक्षा और बेहतर सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार के दौरान पुलों का कोई व्यापक सुरक्षा ऑडिट नहीं कराया गया, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण संरचनाओं की समय पर जांच नहीं हो सकी। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के सभी पुल, फ्लाईओवर और फुटओवर ब्रिज का व्यापक ऑडिट करा रही है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह राजधानी में सुरक्षित, टिकाऊ और जन केंद्रित आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कल रात एक मकान की छत गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने दोनों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस दौरान तलाशी अभियान भी चलाया गया और मलबे में किसी के भी होने की खबर नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। श्रीमती गुप्ता ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करें, घटना की गहन जांच सुनिश्चित करें और सभी आवश्यक कार्रवाई करें। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी को मुंडका से गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले भी आबकारी अधिनियम के दो मामलों में शामिल रहा है। एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने एक महिला शराब तस्कर को बवाना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध शराब बरामद की है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली महापौर कार्यालय को आज सुबह एक बार फिर बम विस्फोट की धमकी प्राप्त हुई। ये आठवीं बार है जब कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी प्राप्त हुई है। घटना की गंभीरता को देखते हुए महापौर कार्यालय द्वारा तत्काल सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न के एक मामले में सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। ये मामला विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट समेत महिला पहलवानों द्वारा सिंह के महासंघ प्रमुख रहते हुए दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा था। ये मामला 2023 का है, जब महिला पहलवानों ने राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर श्री सिंह के यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता तथा कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्र ने सभी दिल्लीवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्रत्येक जीवन शिवमय हो, प्रत्येक परिवार सुखी रहे और राष्ट्र निरंतर वैभव के पथ पर अग्रसर हो। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार ने दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेताओं को भी बधाई दी।
4: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों के ग्लासगो में यादगार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। और दिल्ली में आज दिनभर मौसम सामान्य रहा। राजधानी के कई क्षेत्रों में दोपहर में हल्की बारिश हुई। अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री और न्यूनतम 28.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग वेस्ट मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़े के दान केंद्र अर्पण का शुभारंभ किया। दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, आधुनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और उन्नत उपचार सुविधाओं का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: इसका सब प्रॉपर चलता है।
6: कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
5: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
7: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट।
8: ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनवारुल हक। लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के प्रावधान वाला विधेयक आज पारित किया। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। सरकार ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 भी पेश किए। राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बाधित रही और दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2:10 पर ही बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 2 शुरू हुई तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। सदन ने विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच ही ध्वनिमत से बिना चर्चा के विधेयक को पारित किया। इससे पहले सदन ने इस संबंध में राष्ट्रपति द्वारा मई में लागू किए गए अध्यादेश को नामंजूर करने के तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय के संकल्प को अस्वीकृत कर दिया। सदन ने विधेयक पर कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन को भी खारिज कर दिया। विधेयक को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश करते हुए मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायिक क्षेत्र में सुधार श्रृंखला की कड़ी है जिसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। मेघवाल ने मानसून सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदन में ये विधेयक पेश किया था। इसी साल मई में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या इससे पहले 2019 में बढ़ाई गई थी। उस समय प्रधान न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। मेघवाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत में शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और अगस्त 1956 में पारित विधेयक के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 की गई। उन्होंने कहा कि उसी मूल भावना को देखते हुए और लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या अब 34 से बढ़ाकर 38 की गई है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक में भारतीय सांख्यिकी संस्थान को नया वैधानिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ये विधेयक वर्ष 1959 के पुराने अधिनियम का स्थान लेगा ताकि आधुनिक शैक्षणिक और शोध जरूरतों को पूरा किया जा सके। इसके तहत संस्थान को एक कॉरपोरेट निकाय के रूप में स्थापित करने और उसके प्रशासनिक एवं अकादमिक ढांचे को मजबूत करने का प्रावधान है। विधेयक में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति संस्थान के विजिटर होंगे और इसमें एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए प्रावधान है जो इसका प्रमुख नीतिगत कार्यकारी निकाय होगा। पिछले बजट सत्र के दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने संसद को सूचित किया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI को एक निगमित निकाय के रूप में शामिल करने और इसके प्रभावी संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश किया, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा पहले से अधिक स्पष्ट बनाना है। ये विधेयक औपनिवेशिक काल के 125 वर्ष पुराने बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। प्रस्तावित कानून में बैंककार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उनके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। लोकसभा की आज सुबह बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता को उद्देश्य उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इसके बाद जब उन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराया तो विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे बिरला ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों से प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है, कृपया प्रश्नकाल चलने दें। शोर शराबा जारी रहने पर अध्यक्ष ने बैठक दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। इसके बाद दोपहर 12 बजे और फिर अपराह्न 2 बजे भी सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई की हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 11वें दिन भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद MSME क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को पारित कर दिया। सदन की बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने ग्लासगो में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया और उन्हें बधाई दी। इन खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सभापति ने उम्मीद जताई कि ये खिलाड़ी आगे भी अपनी मेधा से देश को गौरवान्वित

मांग की। इसी पार्टी की अलका गुर्जर ने राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद के पास स्थित भगवान देव नारायण की पवित्र जन्म और प्राकट्य स्थली मालासिरी डोंगरी के विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि स्थान देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव दिए। मनोनीत सदस्य उज्जवल निकम ने अदालतों में लंबित मामलों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मामलों की सुनवाई में विलंब का एक कारण उनकी अधिक संख्या भी है। इस बीच सदन में हंगामा जारी रहा, जिसके कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर उप सभापति हरिवंश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने के लिए कहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने फिर से नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलते हुए राम मंदिर अयोध्या में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली। सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी आसन से अनुरोध किया कि विधेयक पर चर्चा शुरू हो चुकी है तथा किसी अन्य विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाए। इसके बाद उपसभापति ने कांग्रेस के अजय माकन से अपनी बात रखने के लिए कहा, किंतु माकन विधेयक के बजाय अन्य विषयों पर बोलने लगे। सदन में मौजूद संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आसन की ओर से बार बार विधेयक पर बोलने के लिए कहा गया, लेकिन विपक्षी सदस्य विषय को भटकाते हैं। उन्होंने माकन के संबोधन को कार्यवाही से निकालने की मांग की। हंगामे के बीच एमएसएमई विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा की सुमित्रा वाल्मीकि ने कहा कि समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है और ये विधेयक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहद उपयोगी है। तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन ने कहा कि एमएसएमई की मदद से बेरोजगारी दूर की जा सकती है। बीजत के डॉक्टर संतृप्त मिश्रा ने कहा कि जीडीपी में एमएसएमई का 35% योगदान रहता है, लेकिन इसकी राह आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि मूल विधेयक 2026 में आया था और 20 साल बाद इसका संशोधन आया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान एमएसएमई क्षेत्र में बहुत बदलाव हो चुका है। विधेयक में बड़ी चुनौतियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने कहा कि विधेयक में मध्यस्थता और फैसलों के त्वरित निपटारे के लिए नए नियम तय किए गए हैं, जो सराहनीय कदम है, लेकिन इन नियमों का पालन भी जरूरी है, अन्यथा न्याय मिलने में देरी होगी। अन्नाद्रमुक के एम थंबीदुरई ने कहा कि देश के विकास के लिए एमएसएमई जरूरी है। उन्होंने केंद्र से मांग की कि वह तमिलनाडु में एमएसएमई कार्यक्रम को सहयोग दें। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि एमएसएमई हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये विधेयक उसे शक्ति प्रदान करेगा। तेलुगु देशम पार्टी के मस्तान राव यादव वीड़ा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान दर्शाते हैं कि लघु कंपनियों के लिए सुचारू व्यावसायिक संचालन को बढ़ाने पर सरकार निरंतर ध्यान दे रही है। बीआरएस के रविचंद्र बद्दी राजू ने कहा कि विधेयक मध्यस्थता और मध्यस्थता कार्यवाही को ऑनलाइन माध्यमों से संचालित करने की अनुमति देता है, जिससे विवादों का समाधान तेजी से, अधिक सुलभ और कुशल तरीके से हो सकेगा। बहुजन समाज पार्टी के रामजी ने कहा कि विधेयक में उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कमजोर वर्ग के लोगों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण देने पर विचार करे। चर्चा में यूपीएलएल के प्रमोद बोरो, भाजपा के संजय सेठ, कांग्रेस के नीरज डांगे, प्रवीण चक्रवर्ती और बीजू जनता दल की सुलता देव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को दिए जाने वाला ऋण वर्ष 2014 से कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा चुनौतियों का समाधान करना, प्रशासनिक ढांचे में सुधार करना, व्यापार भुगतान में सुधार करना और नियमों के अनुपालन को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। श्री मांझी ने कहा कि इस विधेयक में न केवल एमएसएमई की परिभाषा में सुधार किया गया है, बल्कि इसके टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 39% हो गई है।
मंत्री के

जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ विधेयक पर लाए गए विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। इस दौरान विपक्षी सदस्य लगातार हंगामा एवं नारेबाजी करते रहे। सदन में व्यवस्था बनते न देख उपसभापति हरिवंश ने करीब 3:30 बजे बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। सरकार ने लोकसभा में कई लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता, किफायती शिक्षा और समावेशन पर विशेष बल देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सभी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आने वाले छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएं केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनका क्रियान्वयन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है। इनका प्रशासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित अभिभावकीय आय सीमा तथा योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार SC ST और OBC वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाता है। उच्च शिक्षा विभाग प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन PM USP योजना का संचालन करता है। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जैसा कि योजना के दिशा निर्देशों में निर्धारित है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शक्ति सिंह। एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों के भव्य समापन समारोह की, जहां भारतीय खिलाड़ियों के बाद भारतीय संस्कृति की झलक दुनिया ने देखी है और भारत ने एक और कदम बढ़ाया है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की दिशा में। और गुजरात के अहमदाबाद तैयार है विश्व के दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन के लिए। इसके बाद कार्यक्रम में बात होगी भारतीय दल के प्रदर्शन की, जिसने सीमित अवसरों पर बड़ी सफलताओं में बदलकर 39 पदक देश के खाते में जोड़े और ध्वस्त किया है कई स्थापित कीर्तिमानों को। कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस प्रतियोगिता की, जिसका कल भव्य समापन हुआ नई दिल्ली में। और अंत में नजर डालेंगे दक्षिण कोरिया में भारतीय चुनौती रखने जा रही देश की बैडमिंटन टीम पर। सबसे पहले कार्यक्रम में आज बात की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की, जिनका कल भव्य समापन समारोह के साथ समापन हो गया। इसके साथ ही भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की औपचारिक मेजबानी सौंप दी गई है। इस भव्य समापन समारोह के दौरान भारत के शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली, जहां भारतीय गायक शंकर महादेवन, ऋषभ शर्मा और भूमि त्रिवेदी ने अपनी आवाज से ग्लासगो में शानदार समा बांधा। सुनते हैं अतर सईद की ये रिपोर्ट।

दर्शकों से खचाखच भरे ग्लासगो के ओवीओ हाइड्रो में कल 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। वंदे मातरम, शिव स्तोत्र और मशहूर गाना सुनो गौर से दुनिया वालों पर हजारों भारतीय दर्शक

0: अपनी जगह पर खड़े होकर झूमते नजर आए। विदेशी दर्शकों ने भी भारतीय कार्यक्रमों का भरपूर लुत्फ लिया इस दौरान राष्ट्रमंडल मशाल स्कॉटलैंड से भारत को सौंपे जाने के समय स्टेडियम का दृश्य देखने लायक रहा। इस शानदार समारोह ने खेलों के 11 यादगार दिनों का समापन किया और राष्ट्रमंडल अभियान के एक नए अध्याय का आगाज किया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा प्रतीकात्मक रूप से सौंपे जाने के साथ ही 2030 में अहमदाबाद में खेलों के ऐतिहासिक शताब्दी संस्करण की मेजबानी की दिशा में भारत की यात्रा की भी शुरुआत हो गई। भारतीय स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा को भी CWG ध्वज थमाया गया।
1: अहमदाबाद में 2030 में 100वां कॉमनवेल्थ गेम्स खेला जाएगा और हाल ही में प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद हैं भारत से गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीटी उषा जो प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ गेम्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघ।
0: समापन समारोह में स्कॉटलैंड की संस्कृति की भी बड़ी झलक देखने को मिली। मशहूर रॉक बैंड सिंपल माइंड्स, डांस ग्रुप डाइवर्सिटी और कई मशहूर स्थानीय कलाकारों ने संगीत, नृत्य और विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए OVO हाइड्रो में धूम मचाई। इसके बाद भारतीय संगीतकार ने अलग अलग गानों पर अपनी प्रस्तुति देकर पूरे अरीना में समा बांध दिया। राष्ट्रमंडल मुक्केबाजी चैंपियन जैस्मिन लेम्बोरिया ने तिरंगा थामा और सभी 74 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के एथलीटों ने दोस्ती, एकता और खेल कौशल के जश्न में एक साथ मार्च किया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों का झंडा औपचारिक रूप से अहमदाबाद को सौंपा गया, जो मेजबानी की जिम्मेदारी के हस्तांतरण का प्रतीक था। 2030 का आयोजन ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि ये कॉमनवेल्थ गेम्स की 100वीं वर्षगांठ होगी। अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है, जहां भारत दुनिया के सामने अपनी खेल और आतिथ्य की संस्कृति की शानदार झलक पेश करेगा।

0: तो आपने अतर सईद की ये रिपोर्ट सुनी, और अब अहमदाबाद भी कह रहा होगा कि अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेल 2030 नू माटे तैयार छे। तो इसी के साथ भारत ने मेज़बानी की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन के साथ ही अब दुनिया की निगाहें इस अहमदाबाद की तरफ मुड़ गई हैं, जो 2030 में विश्व के इस दूसरे सबसे बड़े खेल आयोजन की मेज़बानी करेगा। ग्लासगो में खेलों के भव्य समापन समारोह में औपचारिक राष्ट्रमंडल मशाल हाथ में थामने के साथ ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जिम्मेदारी संभाल ली है। इस मौके पर श्री संघवी ने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस अहमदाबाद राष्ट्रमंडल खेलों के इस ऐतिहासिक आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है।
1: In 2030, the Commonwealth will celebrate its centenary. 100 years of bringing the world together through sport, and India been entrusted to host the historic edition. That is a sacred responsibility we embrace with deep gratitude. Ahmedabad is ready. Our city is compact, well connected and vibrant with possibility.
0: तो कहा जा सकता है कि तमारू स्वागत छे, अहमदाबाद बिल्कुल तैयार है स्वागत करने के लिए। और इस दौरान श्री सांघवी ने कहा कि भारत बड़े वैश्विक आयोजनों के लिए उत्साहित है, और वैश्विक खेल राजधानी के रूप में भारत अपनी पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: अहमदाबाद 2030 इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन अ लार्जर एस्पिरेशन। इंडिया इज कमिटेड टू एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज अ स्पोर्टिंग कैपिटल ऑफ अ ग्लोबल स्टेज। वी एस्पायर टू होस्ट द ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स इन अहमदाबाद इन 2036। द कॉमनवेल्थ गेम इज अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एट स्केल इंडिया इज रेडीनेस टू डिलीवर वर्ल्ड क्लास स्पोर्टिंग इवेंट्स फॉर एथलीट्स, फॉर स्पेक्टेटर्स एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड।
0: तो भारत ने तो अपनी पहचान विश्व में बनाई ही पहचान बनाई है। उन भारतीय खिलाड़ियों ने जो जब जब ग्लासगो के मैदान पर उतरे तो उनकी नज़र थी किसी पदक पे, किसी रिकॉर्ड पे, और वो सब कुछ ध्वस्त होते नज़र आए एक के बाद एक। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपने अभियान का समापन 39 पदक के साथ चौथे स्थान पर किया, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हैं। आइए सुनते हैं भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट।

0: खिलाड़ियों ने हर खेल में कई ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाए और देश का गौरव बढ़ाते हुए पोडियम पर तिरंगा लहराया। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में देश के नाम 16 पदक रहे, इनमें 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत और 5,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। जबकि स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक भारत की झोली में डाला। मुक्केबाजी में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस खेल में भारत ने कुल 10 पदक जीते, जिनमें 3 रजत पदक भी शामिल है। भारत ने जूडो में भी अपना भरपूर दमखम दिखाया। अस्मिता डे और हर्ष सिंह दोनों ने इस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किए। जूडो में भारत ने कुल 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य से समेत कुल 4 पदक जीते। भारोत्तोलन में भारत की झोली में कुल 8 पदक आए। मीराबाई चानू इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकलौती भारतीय रही। पुरुषों ने 4 रजत पदक अपने नाम किए, जबकि महिलाओं ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में झंड कुमार ने भारत के लिए पदक जीतकर पदक तालिका में देश का पर्दापण कराया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो जब भी भारतीय खिलाड़ी उतरे, उनकी नज़र थी पदक पर। और इस खेल आयोजन से पहले लगातार ये चर्चाएं थी कि कई खेलों को सूची से हटाया गया है, भारत कैसा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स से बेहतर परफॉर्मेंस किया है और देश दुनिया से, राजनीति से, सिनेमा से, हर जगह से आज इन खिलाड़ियों को, अपने इन स्टार्स को शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने भारतीय खिलाड़ियों को ग्लासगो के इस यादगार प्रदर्शन पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने सभी पदक विजेताओं और खेलों के दौरान योगदान देने वाले दल के प्रत्येक सदस्य को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के खिलाड़ियों के भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में देश को एक और गौरवान्वित करने के मौके दिए हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का इस तरह का बेमिसाल प्रदर्शन अनगिनत युवा भारतीयों को प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पूरे खेलों के दौरान हमारे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने बेहतरीन कौशल, दृढ़ संकल्प और समर्पण दिखाया है और उनकी ये कड़ी मेहनत हमारे युवाओं को प्रेरित करती रहेगी। खेल मंत्री ने कहा है कि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4th स्थान भारत ने हासिल किया है। श्री मांडविया ने कहा कि हमें हर उस एथलीट, कोच और सपोर्ट स्टाफ पर गर्व है जिसने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। संसद के दोनों सदनों ने भी भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने क्या कहा, सुनते हैं।
2: On behalf of the House and on my own behalf, I extend our heartiest congratulations to all the athletes, coaches, support staff, the Indian Olympic Association, the Paralympic Committee of India and the National Sports Federations. Our medal winners will surely serve as an inspiration not only to the budding sports talent in our country but also to every young Indian to pursue excellence through hard work, discipline, determination and perseverance.
1: वहीं दूसरे सदन लोकसभा में भी अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के प्रदर्शन की प्रशंसा की है।
3: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
1: 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में भव्य समारोह के साथ समाप्त हो गई। 25 से अधिक देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। समापन समारोह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को देश की खेल राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। इस दौरान उन्होंने सभी पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
4: हमारे प्लेयर्स ने गोल्ड मेडल जीत करके दिल्ली को दिया, भारत को दिया। और हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा ये बात कही है, केवल गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करना है बल्कि ऐसे गेम्स की मेजबानी भी करनी है। मुझे खुशी है कि दिल्ली ने ये मेजबानी बड़े मन से की है।

0: तो एक शानदार आयोजन और जिसकी भारत ने मेज़बानी की है। और अब बात की जाए बैडमिंटन की, जहां कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। हाल ही में ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा और स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे।
1: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वही पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनेत दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यन और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो जापान में शुरू होने जा रहे अगले महीने एशियाई खेलों से पहले भारतीय खिलाड़ियों के लिए एक और बड़ा मंच जहां वो अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। और अब बात की जाए कुश्ती की, जहां अजरबैजान के बाकू में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की फ्री स्टाइल टीम ने 13 पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। इसमें 1 स्वर्ण, 4 रजत और 8 कांस्य पदक शामिल हैं। सितेंद्र मलिक ने कल चैंपियनशिप के कड़े मुकाबले में रूस के सर्गेई कार्मिलियन को 3-1 से हरा करके स्वर्ण पदक जीता और 2025 के अपने अंडर 17 विश्व खिताब को भी उन्होंने बरकरार रखा है। और क्रिकेट में दिलीप ट्रॉफी की आगामी सीजन 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु के BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शुरू होगी। तो श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें आप sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्याय क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
3: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्याय कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
2: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं हैं। वहीं राज्यसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह विधेयक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन कर भुगतान में होने वाली देरी की समस्या का समाधान कर विवाद निपटान प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके अलावा भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 और बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया है। संसद के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों को जब मौका दिया जाता है तब वे बोलना नहीं चाहते।
5: सुप्रीम कोर्ट में जजेस को संख्या बढ़ाने के लिए और राज्यसभा में एमएसएमई का बिल पास किया। विपक्ष में कोई भी ऐसा नहीं बचा जो हिस्सा लेना चाहते थे। हमने सबसे आग्रह किया था कम से कम बिल में हिस्सा तो ले, बाहर जाके कहते हैं कि बोलने के लिए मौका नहीं मिलता है।
2: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की।
6: लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है या आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दे। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं।
7: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
2: भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया।
8: मांजलपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की सभी 20 दौर की मतगणना पूरी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल उर्फ सतीश पटेल को कुल 55,481 मत मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 24,851 मत प्राप्त हुए हैं। वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद रह चुके सतीश पटेल ने कहा कि जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया है। पूर्व वरिष्ठ भाजपा विधायक योगेश पटेल के निधन के कारण रिक्त हुई इस सीट पर शुक्रवार को लगभग 37% मतदान दर्ज किया गया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: उधर बिहार में पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले, जबकि नीरज कुमार को 44,827 मत प्राप्त हुए। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा कुमारी 14,273 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया।
9: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए सीट अपने नाम कर ली है। मतगणना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने हार स्वीकार करते हुए कहा कि पार्टी इस परिणाम की समीक्षा करेगी। उन्होंने चुनाव में भीतरघात का भी आरोप लगाया और कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की भावना के साथ काम करना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने कहा कि जनता ने विकास और भरोसे के पक्ष में मतदान किया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षा चरित्र निर्माण, सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण की नींव है। ओडिशा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने विश्वविद्यालयों से नैतिक, कुशल और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाने का आह्वान किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम उड़ीसा के कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ ज्ञान हासिल करने का जरिया नहीं है, बल्कि ये चरित्र निर्माण, सामाजिक बदलाव और राष्ट्र निर्माण की नींव है। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से लड़कियों, आदिवासी छात्रों और समाज के पिछड़े वर्गों की शिक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा के लक्ष्यों को हासिल करने में शिक्षण संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
2: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विसेज दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को निरंतरता, विशेषज्ञता और नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है।
2: AFHQ कैडर एक ऐसी संस्था है जो रक्षा मंत्रालय को कंटिन्यूटी, डोमेन स्पेशलिटी और पॉलिसी स्टेबिलिटी भी प्रदान करती है, और इसके साथ ही सिविल मिलिट्री सिनर्जी को सुदृढ़ करने में भी AFHQ एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज की भूमिका का निर्वाह करता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग तथा व्यापार मंत्री लाजीज कुदरतोव से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, निवेश, दवाइयों, कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्रों में बातचीत हुई है। श्री गोयल ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी व्यवसायों के लिए नए अवसर खोलेगी और साझा समृद्धि में योगदान देगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सईदोव के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसी कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। POJK से मिली रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
3: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनयिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जाँच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जाँच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने इस दावे को गलत बताया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले दो दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनावों में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर बिहार के बांकीपुर से विजयी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Lok Sabha passes bill to increase the strength of Supreme Court judges from 33 to 37. Rajya Sabha clears legislation to simplify dispute resolution and address payment delays faced by MSMEs. In assembly by-polls, Jan Suraj leader Prashant Kishore wins Bankipur seat in Bihar, BJP retains Manjalpur in Gujarat, Congress keeps Datia in Madhya Pradesh. Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar expands cabinet, inducting 19 new ministers. Red alert issued for very heavy rainfall in Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. In POJK, situation worsens overnight as security forces open fire on protesters refusing to disperse. Young cyclist Harshita Jhakhar becomes first Indian woman to feature at Tour de France Fama in Switzerland. And now the news in detail. The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m, Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा। इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। पवन जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मुकेश, बहुत अच्छा लग रहा है आपके प्रोग्राम पर आकर।
0: जी दोस्तों, आज फोन हर हाथ में है। UPI, ऑनलाइन शॉपिंग, सरकारी योजनाएं, सब डिजिटल हो गया है। सुविधा के साथ खतरा भी बढ़ गया है। फर्जी कॉल, नकली लिंक, OTP का झांसा, डीप फेक वीडियो, ठग नए नए तरीके अपनाकर हर दिन ला रहे हैं। लेकिन डरिए मत, जागरूक रहिए। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे साइबर फ्रॉड कैसे होता है, उससे बचें कैसे, और धोखा हो जाए तो सहायता कहां मिलेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का STD कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले पवन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज भारत में सबसे आम तीन तरह की साइबर धोखाधड़ी कौन सी हैं? डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम, इनमें नया ट्रेंड क्या है?
1: आज जो नया ट्रेंड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का लगा कर आता है।
0: जी
1: आजकल आप जो भी कार्यक्रम या जो भी आप ये साइबर फेंसेस देख रहे हैं
0: जी,
1: उन सब में कहीं ना कहीं मिश्रण हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उदाहरण के तौर पर आजकल डिजिटल अरेस्ट जो होता है, उसमें भी जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो डिजिटल अरेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति को आप ऑनलाइन वीडियो पर देखते हैं वो रियल नहीं होता, वो AI द्वारा जनरेटेड होता है। जो आवाज़ होती है वो AI द्वारा जनरेटेड होती है। अल्टीमेट उद्देश्य बहुत क्लियर है कि आपने लोगों को ठगना है, और अब जो ठगाई करनी है वो आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस तरीके से करनी है कि अगर पुलिस तफ्तीश भी करना चाहेगी
0: तो
1: आप तक पहुंच नहीं पाएगी, और साइबर क्राइम में मजे से अपना साइबर क्राइम भी करेगा, पैसे भी उड़ाएगा।

0: तमाशा देखेगा। तो ये आजकल नया ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी की रेप्लिकेशन मुझे और प्रकार के जो फ्रॉड्स हैं उसमें नजर आती है।
1: जी बिल्कुल। तो एक आम आदमी को कैसे पता चले कि उसके साथ साइबर फ्रॉड होने वाला है, उसके लिए तीन रेड फ्लैग क्या हो सकते हैं?
0: तीन रेड फ्लैग। पहला, अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी निर्णय लेने के लिए विवश कर रहा है तो ये पहला इंडिकेशन है कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। दूसरा, अगर कोई आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सेकंड रेड फ्लैग है कि साहब ये कहीं ना कहीं एक स्कैम का हिस्सा है। और तीसरा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको अर्जेंसी के माध्यम से आपको पुश कर रहा है कि आप एक अर्जेंट इमीडिएट एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके परिवार में कोई बंदा प्रॉब्लम में आ गया है, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, किसी का अरेस्ट हो गया है। बॉटम लाइन ये है कि आज हमारा जो ना कोविड-19 के बाद जीवन इसलिए परिवर्तित हो चुका है क्योंकि दो चीजें कोविड-19 सदैव के लिए हमारे जीवन में छोड़ चुका है
1: जी।
0: एक है डर और दूसरा है पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स ने आज इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और यही कारणवश है कि आज अधिकांश लोग, चाहे आप बहुत प्रशिक्षित हो, चाहे आप पढ़े लिखे ना भी हो, लेकिन आप डिजिटल रिस्क के और अन्य और प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं मथुरा से, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ आदरणीय, नमस्कार।
0: नमस्कार
2: महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कोई फ्रॉड हम पर कॉल करता है कि आपकी OTP दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इनकी शिकायत कहाँ दर्ज की जाए, इनका नंबर क्या है?
0: देखिए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। आजकल कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से आपको टारगेट करने का प्रयास करता है। तो द मोमेंट आपको लगे कि आप साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं या कोई आपको शिकार बनाने वाला है, तो आपके पास दो विकल्प हैं जो केंद्रीय सरकार ने आपको दिए हैं। पहला, कुछ हो या ना हो, अपने फोन नंबर से एक नंबर घुमाइए। नंबर है 1930, ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप फोन करते हैं और फोन उठता है तो फोन कोई नॉर्मल टेलीकॉम ऑपरेटर नहीं उठाता, फोन उठाते हैं पुलिस अधिकारी। अब इन लोगों का डायरेक्ट टाई अप आपके बैंक्स के साथ है, ताकि अगर आपके यहाँ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ हुआ है, आप तुरंत कॉल करेंगे, ये तुरंत ही अपने फोन के नेटवर्क पर, अपने कंप्यूटर के नेटवर्क पर देख लेंगे कि साहब आपके जो बैंक का जो चैनल है उसके अंदर पैसा है या नहीं है
1: जी।
0: अगर पैसा है तो उसको ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का मतलब यह है कि 2-3 हफ्ते में पैसा खुद ब खुद आपके अकाउंट में आ जाएगा
1: जी।
0: और अगर उन्हें कुछ और पता लगेगा तो आपको भी बताएंगे। लेकिन दूसरा जो आपको और बहुत इफेक्टिव रेमेडी सरकार ने दी है वो ये है कि आप एक वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसका नाम है cybercrime.gov.in, यानी कि ये राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। अपने घर बैठे हुए, बिना थाने जाए हुए, आप इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से, और आपकी रिपोर्ट दर्ज होते ही आपको ऑनलाइन ही एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो गृह मंत्रालय आपको प्रदान करता है। ये नंबर आपके लिए एक परमानेंट नंबर बन जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से आप कॉन्स्टेंटली अपने केस की जो प्रगति है, प्रोग्रेस है,
1: उसके बारे में
0: आप लगातार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ हो या ना हो, ये दो चीजें आप याद रखिए, 1930 1930 और cybercrime.gov.in। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में मैं मानता हूं कि दो प्रकार के लोग दुनिया में हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं
1: जी,
0: और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। तो चाहे आप को मालूम हो या ना हो, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अगर मुझे अटैक हुआ है या जब मुझे होश आया कि साहब मैं टारगेट बन गया हूं, विक्टिम बन गया हूं साइबर क्राइम का, तो ये दो विकल्पों को तुरंत इस्तेमाल करिए, बहुत इफेक्टिव हैं, और मोर इम्पोर्टेंट, सरकार द्वारा नागरिकों के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का एक नया अप्रोच है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछे क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार सर, मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से
1: जी।
3: सर मेरा सवाल ये था कि सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाता है बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें बहुत इजी लोन मिल सकता है, ऐसा दावा करते हैं, तो सर ये हम कैसे समझें कि फ्रॉड है जो ऐप्स हैं, या फिर इसमें सच में लोन मिल सकता है, या फिर धोखाधड़ी भी हो सकती है?
0: विपिन जी, आज एक चीज समझनी है, वो ये कि दुनिया में ना फ्री लंच नाम की चीज नहीं होती, कुछ चीज मुफ्त नहीं मिलती। दूसरी चीज ये समझनी है कि अगर आपको कुछ ऐसा मन लुभावना ऑफर ऑनलाइन आ रहा है, तो और वो बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी खतरे की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि जो टू गुड टू बी ट्रू ऑफर होता है वो एक्चुअली वास्तविक तौर में कहीं ना कहीं झोल लेकर आता है। तो आजकल ये जितने भी ये तुरंत लोन ऐप्स वाली कहानियां हैं, कोशिश करें कि इनसे आप मीलों दूर रहें तो अच्छी बात है। क्यों? अगर आप इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें जी, इनकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ें, ये स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपका मैं पूरा डेटा लूंगा, उस डेटा का दुरुपयोग करूंगा, आपकी निजता के अधिकार का हनन होगा और आप चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, उनके फाइन प्रिंट में कहा जाता है, बोलते कुछ और हैं, जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं तो वो बहुत ही तगड़े और बहुत ही मोटे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वीक लगाते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो पर डे लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो पर मंथ लगाते हैं। अब आज आपको जब एफडी 7% देती है और वो अगर आपसे 3% प्रति माह या 3% 2% प्रति वीक लेना शुरू कर दें तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो जल्दबाजी में मत करिए, एक तो जल्दबाजी में कोई लोन लेना नहीं, दूसरा लोन लेना है तो आप अधिकृत बैंक के पास जाइए, नेशनलाइज बैंक के पास जाइए, उनसे लोन लीजिए। ये ऑनलाइन लोन कहीं ना कहीं फ्रॉड के नए स्वरूप हैं, और जितनी जल्दी आप समझ लीजिए कि वो मछुआरे हैं जिन्होंने आपको जाल फेंक रखा है, अगर आपको पकड़ने के लिए, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आप इस जाल में फंस जाएंगे। एक बार आप फंस गए तो फिर आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। मेरे पास केस आया जहां पर एक क्लाइंट ने केवल 15,000 रुपए लोन लिए
1: जी,
0: क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए चाहिए थे। अब उन्होंने लोन तो तुरंत अप्रूव कर दिया, लेकिन हुआ क्या कि जब पैसे आए तो पैसे आए कर 12,300, तो भैया
1: पहले ही काट लिया।
0: पहले उन्होंने कहा जी मैंने प्रोसेसिंग फी भी काट ली, मैंने ये भी काट ली, और फिर उन्होंने कहा कि साहब हम पर वीक जो है 3% इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि आप समझ लीजिए महीने में 12% इंटरेस्ट। तो जितना आपने लिया नहीं उससे लगातार आपका इंटरेस्ट आता रहा, और उसके बाद आप नहीं दे पाए तो गुंडों का आपको धमकी आने लग गई, आपको प्रताड़ित करना लग गया, आपकी फैमिली को टारगेट करने लग गए। तो बॉटम लाइन ये है, छोटे लालच में नहीं पड़ना। अगर किसी से पैसा मांगना है अधिकृत बैंक से मांगिए, किसी अधिकृत एजेंसी से मांगिए। ऑनलाइन तो सारे झोल हैं, सारे साइबर क्राइम के नए स्वरूप हैं, प्लीज अपने आप को केयरफुल रखिए।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिद्वार से, रवि। रवि आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
4: नमस्कार सर।
0: नमस्कार
4: और सभी विशेषज्ञों को नमस्कार, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस तथा सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ
1: जी। सवाल पूछिए।
4: हाँ जी सर, मैं जानना चाहता हूँ साइबर क्राइम जब हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इसे आम इंसान कैसे समझे कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है।
0: मुझे लगता है ये सवाल हर आज भारतवासी के हृदय में है कि कैसे पता लगे कि साइबर क्राइम होने वाला है
1: जी।
0: मुझे लगता है कि आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल कुरुक्षेत्र के मैदान के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं, और आपको चारों दिशाओं से अटैक किया जा सकता है। अटैक करने वाले कौन है? साइबर क्रिमिनल्स हैं, अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, अलग अलग तरीकों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि आप कुछ करें या ना करें, अपने रोजमर्रा के जीवन में दो आदतें जरूर आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। पहली आदत, शक्की हो जाइए। दूसरी आदत, कंजूस हो जाइए। शक्की, हर प्रकार की जानकारी जो आपके सामने आ रही है, जिसको आप सुन देख रहे हैं, उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि आप उसकी पुष्टि स्वयं ना कर पाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप कंजूस हो जाइए अपने डेटा के संदर्भ में। आज हो क्या रहा है कि भारतवर्ष में एक नई क्रांति चल रही है, मैं से बोलता हूं भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, जहां पर सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की। चाहे वो इंटरनेट पर हो, सोशल मीडिया पर हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हो। कृपया अपने डेटा की उल्टी ना करें, अपने डेटा को किसी भी व्यक्ति के साथ अनावश्यक तरीके पर शेयर ना करें, बिकॉज ये डेटा आधार बन जाता है आपको टारगेट बनाने के लिए। फिर अब ये दो चीजें अब आपने दिमाग में रख ली, अब सवाल उठता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइबर क्राइम के शिकार हुए। अगर कोई ना कोई बंदा आपको ऑनलाइन मिलता है और वो पैसे की दिशा में आपको लेके जाता है कि आपने पैसे देने हैं, या आपको डराता है, धमकाता है, और या कहता है कि साहब आपकी नग्न तस्वीरें हम भेज देंगे, आपकी प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, जहां जहां जो जो व्यक्ति आपको डराता है, धमकाता है, आपको पैनिक के मोड पे लाता है, वो तमाम सारे इंडिकेशंस होते हैं कि साहब ये साइबर क्राइम फ्रॉड में आप फंसने वाले हैं। और दूसरी बात, बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग होने की जरूरत नहीं है। आज वो यकीन वाला जमाना चला गया है, आस्था ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन पता ही नहीं कि आप राम श्याम जदू से बात कर रहे हैं या किसी और व्यक्ति विशेष से बात कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जागरूकता और सावधानी एकमात्र आपके मूल मंत्र हैं, आपकी सुरक्षा कवच हैं, जो आपको बचाते हैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होने से।
1: बिल्कुल, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से, अमित उपाध्याय। अमित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
5: जी नमस्कार विशेषज्ञ जो भी हमारे टीम में है
1: जी, मैं
5: ये सवाल है अभी कि अभी हाल ही फिलहाल में सरकार इजी जो पीएफ का जो पैसा है उसको इजी लूप में इसको सर्कुलेट करके बना दिया है, निकालने का प्रावधान कर दिया है। इसमें अभी मामला आया था कि ओटीपी के माध्यम से कुछ पैसा का हेर फेर उसमें भी हो जा रहा है, कि इसको लेकर हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं कि मान के चलिए वो जमा पूंजी जिंदगी भर का रहता है, हम लोग को पीएफ कटता है और वो पैसा इनसिक्योर हो जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा।
0: देखिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्योंकि देखिए पीएफ के साथ कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी की गाड़ी, कमाई, आपकी मेहनत और उस मेहनत का पसीना जुड़ा हुआ है
1: जी।
0: तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पीएफ कट रहे हैं तो ऑफिशियल सोर्सेज या ऑफिशियल कंपनी या ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर ही देखें। आजकल ना गवर्नमेंट ने पीएफ की विभिन्न वेबसाइट्स दे रखी हैं, तो अच्छी बात रहती है कि ऑलवेज इन गवर्नमेंटल वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपकी पीएफ की कंट्रीब्यूशन जमा हुई हैं नहीं हुई हैं। अगर आपके एम्प्लॉयर ने नहीं जमा कराई हैं तो उन्हें निवेदन करिए कि जमा कराएं, आपकी कितना टोटल अमाउंट आया है, कितना आगे बढ़ने वाला है। थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। देखिए अगर आप सो जाएंगे तो बिल्ली तो आपके सिराने पे जो दूध है आके पी जाएगी,
1: पी ही जाएगी जी।
0: तो इसलिए आपको तो सतर्क रहना ही पड़ेगा। अगर ना सतर्क रहे तब संभावित तौर पर साइबर क्रिमिनल्स इसको हड़प सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ये मैं केसेस देख रहा हूँ कि लोग अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, छुपा देते हैं, दूसरे व्यक्ति की आइडेंटिटी को इम्पर्सोनेट कर लेते हैं और उसके माध्यम से ऑफिशियल अकाउंट से पैसा निकालने की प्रयास भी करते हैं। तो कुछ हो या ना हो अपने पीएफ डिपार्टमेंट में लिख के दे दीजिए कि साहब मेरे अकाउंट से कोई पैसा ना निकाला जाए जब तक कि मेरे हस्ताक्षर ना हो और तब तक मैं हाजिर ना हो। इसके अलावा सावधानी, सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मूलमंत्र रहेगा।
1: बिल्कुल, तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी। तो पवन जी, एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, संजय। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका हमारे विशेषज्ञ से।
6: नमस्कार मुकेश सर, एक्सपर्ट सर को भी बहुत बहुत नमस्कार
1: जी। नमस्कार जी।
6: और सर मेरा सवाल ये है कि हम क्यों हमेशा डायरेक्ट बातें ही समझने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्ट बातें नहीं समझते, जबकि डायरेक्ट खतरे बहुत कम ही होते हैं इनडायरेक्ट की अपेक्षा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम छोटे मोटे जब ऐसी घटनाएं होती हैं, हम राजनयिक संबंध तोड़ने लगते हैं दूसरे देशों से या और भी व्यापारिक वो गतिविधियां करने लग जाते हैं, है ना, रोक टोक की। तो ये साइबर अपराध तो हर देश की समस्या बनती जा रही, केवल भारत की या एक देश की तो है नहीं, क्यों नहीं सभी देश मिल करके इसके लिए कड़ाई से जो है नियम कायदे बनाते हैं और इसके लिए बड़े दंडात्मक व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी देश में कोई भी हो, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए हर साल नुकसान होते, कितने मौतें हो रही है इसकी वजह से, हत्याएं कर रहे हैं ये लोग ये अपराधी, तो इसके लिए क्या कोई ये किसी युद्ध से कम है क्या ये।
0: देखिए बहुत ही महीन और महत्वपूर्ण सवाल है आपका। आज देखिए इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, तो आप एक राष्ट्र में बैठे हुए इंटरनेट के माध्यम से किसी और राष्ट्र में विद्यमान नागरिकों को टारगेट कर सकते हैं, साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कानून एक तौर पर अपने आप ही सफिशिएंट नहीं होते इस प्रकार के साइबर फ्रॉड्स को डील करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आपको सूझबूझ और कोऑपरेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख में भी कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून आज साइबर लॉ का नहीं है जो मौजूद है। 2015 में जब मैं संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहा था तब मैंने प्रस्ताव दिया था कि आज आवश्यकता है दुनिया को एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन की ऑन साइबर लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी, लेकिन वो सन था 2015 और शायद वो समय से बहुत एडवांस वाला आइडिया आया था, तो राष्ट्र उसको बाइट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब देखिए ठीक उसी दिशा में अब संयुक्त राष्ट्र ने अब एक नई संधि को ओपन किया है, इस कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस आईसीटी कन्वेंशन टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर क्रिमिनल और इलीगल पर्पसेस। अब वो एक नई प्रकार की संधि आ गई है, उसके लिए हस्ताक्षर के लिए, रेटिफिकेशन के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। बाय द टाइम कंट्रीज उसको अडॉप्ट करेंगी थोड़ा समय लग जाएगा, बट शायद ये दुनिया की पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हो जाएगी जो एक साइबर लॉ इंटरनेशनल लॉ का काम कर सके। इससे पहले केवल बुदापेस्ट कन्वेंशन रही थी 2001 में, लेकिन वो केवल एक स्थानीय ट्रीटी थी और यूरोपियन यूनियन की ट्रीटी थी, बहुत से राष्ट्र इसका हिस्सा नहीं थे, भारत भी उसका हिस्सा नहीं था। तो आवश्यकता तो ये है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आजकल राष्ट्र और उनकी सरकारें इतनी ज़रा संकीर्णता से देश सोचती हैं कि उन्हें ब्रॉडर पिक्चर अक्सर नज़र नहीं आता। हर सरकार कहती है, हर राष्ट्र कहता है कि भैया मुझे आज की अपनी वर्तमान स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को देखना है, मुझे ग्लोबल कोऑपरेशन को नहीं देखना। यही कारणवश है कि हम अभी तक कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून इस पर बनाकर नहीं लेकर आ पाए हैं, लेकिन अब मुझे लगता है और समय की तुलना में और ज्यादा आवश्यकता हो गई है इस प्रकार के कानून को लाने की,
1: और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह का कानून बन जाएगा।
0: जी,
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, विजय कुमार। विजय जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
7: मुकेश कुमार जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार जी, पूछिए क्या सवाल है।
7: नमस्कार
1: जी।
0: जी नमस्कार,
7: मैं विजय कुमार स्वामी गाँव बस्तवाड़ तहसील जिला कोल्हापुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
1: जी
7: जी सर, मैं ब्लाइंड हूँ 100%।
1: जी,
7: मेरा बटन का फोन है।
1: वेरी गुड।
7: और ये बटन के फोन में तो धोखाधड़ी हो सकती है, ये सवाल मेरा है।
0: देखिए, धोखाधड़ी तो कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहाँ नहीं हो सकते।
1: बिल्कुल,
0: तो धोखाधड़ी तो हर जगह हो सकती है, लेकिन आपका बटन वाला फोन है तो संभावित तौर पर स्मार्टफोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जिसका उद्देश्य बनाया गया है इसको काम करने के लिए। तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन कोशिश करें अपना फोन किसी के हाथ में ना दें, क्योंकि अगर वो उसका दुरुपयोग कर पाएगा तो हो सकता है आप फ्रॉड के शिकार हो पाए। बॉटम लाइन आज ये है कि हमें जो कुछ करना है खुद करना है, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी पर विश्वास, किसी पर आश्रित रहना नहीं है। और ये स्मार्टफोन्स तो इसलिए आजकल सरदर्दी का सबब बन गए हैं क्योंकि स्मार्टफोन्स केवल आपसे फोन नहीं करते, कैमरे नहीं है, ये सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं, लगातार हमारी हर प्रकार की जानकारी को सुनते रहते हैं और फिर डेटा आपकी इजाजत के बगैर आपके सिस्टम से बाहर निकाल के बाहर भेजते हैं, बेचते हैं। और फिर यही कारणवश है, देखिए मैं आज स्टूडियो में बैठ के मुकेश जी से बात कर रहा हूँ, उन्हें कह रहा हूँ कल सुबह मुझे बॉम्बे जाना है, मेरा फोन सुन रहा है, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाएगी कि सर बॉम्बे की चीप फ्लाइट्स ले लीजिए या ये यहाँ पर चीप होटल मिल जाएंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बातें हमारी कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। तो अब जब आप बटन वाला फोन इस्तेमाल करते हैं तो वो फीचर फोन होता है। फीचर फोन आज की तारीख में सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो केवल फोन का काम करता है, कोई और नहीं करता। फिर भी जागरूकता सूझबूझ ही एकमात्र आपके लिए मंत्र रहता है।
1: पवन जी, अगर पैसे चले गए हैं तो सबसे पहले 3 काम क्या करने होते हैं? 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं, cybercrime.gov.in पर हम दर्ज कराते हैं, और बैंक को कब कॉल करें?
0: देखिए, जब सबसे पहले जब आपको पता लगे कि आपके पैसे गए
1: जी,
0: तो पैनिक नहीं करना, घबराना नहीं है, हताश नहीं होना, पहली चीज। दूसरी चीज, वो कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कि आपका कर्म प्रधान जीवन है, तो इस संदर्भ में आपको तुरंत सबसे पहले 1930 कॉल करना है।
1: ठीक,
0: कॉल करना इसलिए है क्योंकि द मोमेंट आपके पैसे गए हैं, आपके पैसे अभी भी शायद बैंकिंग चैनल में होंगे, तो अगर आपने उन्हें कॉल कर दिया और फोन उन्होंने उठा लिया और उन्होंने देखा कि उनके सिस्टम में नजर आ रहा है कि आपके पैसे बैंकिंग चैनल में हैं, तो आपके बैंक के पैसों को फ्रीज कर देंगे और 2-3 हफ्ते में पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो कुछ करें या ना करें, द मोमेंट पता लगे फ्रॉड हो, पानी भी नहीं पीना है, आपने तुरंत 1930 कॉल करना है। अगर वहां फोन नहीं लग रहा है तो दूसरा विकल्प है, आप तुरंत cybercrime.gov.in पर जाना है। अक्सर बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि चलो भैया बैंक से पैसा निकला, बैंक जाते
1: हैं। में जाना चाहिए
0: भाई, बैंक जाते जाते आधा पौना घंटा लग जाएगा, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी हो जाती है। आज की तारीख में ना, पहले हम कहते थे गोल्डन आवर होता है 60 मिनट, जब आपको पता लगता है कि आपके यहां फ्रॉड हुआ है। अब हम कहते हैं कि गोल्डन आवर श्रिंक हो गया है 10 मिनट में। अगर आपने पहले 10 मिनट में शिकायत कर दी, एक्शन ले लिया, तो हो सकता है आपका पैसा बच जाए, क्योंकि आज साइबर क्रिमिनल्स 10 मिनटों में ही आपके पैसे को आपके अकाउंट से बाहर ले जाते हैं, सलामी ट्रांजैक्शंस करते हैं और फिर म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से कैश विड्रॉल कर लेते हैं। और एक बार आपके अकाउंट से कैश विड्रॉल हो गया फिर तो फिर पैसा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है।
8: जी, मैं आपका और उपस्थित विशेषज्ञ का बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ।
1: जी नमस्कार।
8: और मेरा सवाल ये है, मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बुजुर्ग रहते हैं और महिलाएं होती हैं, यदि किसी कारणवश उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहाँ पर अपना बयान दें और कहाँ पर अपनी शिकायत लेकर जाएं? थोड़ा सा बताइएगा।
0: देखिए, अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, महिला हैं, तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आज केंद्रीय सरकार आपको कहती है कि साहब कुछ ना करिए, अपने घर बैठे अपने ही फोन से तुरंत नंबर कॉल करिए 1930। कहीं धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, वहां आपका केस दर्ज भी हो जाएगा ऑनलाइन, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगी। ना करना चाहें और वो फोन ना उठे तो आप cybercrime.gov

0: govi.in पे जा सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि साहब हमें कहीं ना कहीं थाने जाना है
1: जी,
0: और भाई थाने जाने में करीबन आधा पौना घंटा घंटा लग जाएगा, तब तक जितने पैसे हैं सब निकल चुके होंगे। तो थाने जाने की जल्दबाजी ना करें, अपना बयान देने की जल्दबाजी ना करें। भाई जब आग लगी है तो सबसे पहले आग को बुझाना है। आज जब पैसे गए हैं तो सबसे पहले दायित्व बनता है कि हम कैप्चर करें क्या वो बैंकिंग चैनल में है। अगर कहीं पर भी है तो उस बैंकिंग चैनल में उस पैसे को फ्रीज कराना है। एक बार फ्रीज हो जाएगा अपने वापस आ जाएगा। हाँ, एक बार आपने 1930 पर या cybercrime.gov.in पर शिकायत कर दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद आप बैंक जाइए, लिखित में शिकायत कर दीजिए, और ये जो आपने ऑनलाइन शिकायत करी है उसका रेफरेंस नंबर भी आप जरूर दे दीजिए, सो दैट बैंक को पता लग जाए कि साहब आप हवाबाजी नहीं कर रहे। अक्सर क्या करते हैं, बैंक आपको डरा देते हैं, धमका देते हैं, दौड़ा देते हैं, भाग जाओ कि तुम्हारी गलती है, तुमने गलत काम किया था। भाई आज आपका पैसा आपकी गाड़ी कमाई है। अगर वो आपके अकाउंट से आपकी इजाजत के बगैर निकला है तो साइबर क्राइम है, 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है, धारा 66 भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। साथ ही साथ ये बैंक जो है ये इंटरमीडियरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि द मोमेंट आप बताएं कि साहब मेरा ये अनऑथराइज ट्रांजेक्शन गया है, तब दायित्व उनके ऊपर होता है कि वो देखें कि साहब ये ट्रांजेक्शन कैसे हुआ है।
1: बिल्कुल।
0: और वो ये नहीं कह सकते कि साहब आपने यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल किया है, ओटीपी इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि वो ओटीपी का दुरुपयोग हुआ है। बहुत सारे बैंक आपको जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन आपको घूमने की आवश्यकता नहीं। वहां जाइए, बैठ जाइए कि साहब आपका दायित्व बनता है, आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ये पैसे दिलाइए, वरना इस पैसे की आपकी जो क्लेम होता है आप बैंक से मांग सकते हैं। क्योंकि देखिए बैंक की आवश्यकता कानून में होती है कि वो ड्यू डिलीजेंस सावधानी करे जब वो अपनी ऑब्लिगेशंस या ड्यूटियों का निर्वाह कर रहा है। यह है सेक्शन 79 भारत के आईटी एक्ट के तहत। और अगर वो नहीं करता है तो कानून कहता है जिम्मेवारी पैसा वापस दिलाने की बैंक की है। तो आप हताश ना होइए अगर बैंक आपको दाएं बाएं करे। आपको बैंक को कहना है कि साहब मेरा ट्रांजैक्शन नहीं है या अनावश्यक तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ये मेरी ऑनलाइन कंप्लेंट है, आप मुझे पैसा दीजिए, अगर मेरा पैसा चला गया तो मेरे पैसे की भरपाई करने की जिम्मेवारी भी आपकी है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राम जी। राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है।
2: जी जी नमस्कार सर जी, बहुत अच्छा विशेषज्ञ लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी कह रहे थे कि अगर आप सो गए तो बिल्ली दूध पी जाएगी, तो बहुत अच्छा लग रहा था।
1: जी जी सवाल पूछिए।
2: जी प्रश्न कुछ इस तरह से है कि हमारा यूज करने वाला मोबाइल और सिम गुम हो गया है और उसके साथ साथ वो बैंक से जुड़ा हुआ है
0: जी,
2: तो उसमें भी ना पैसा निकल जाने की व्यवस्था हो सकती है, तो हम क्या करें क्या ना करें? अगर मोबाइल हमारा गुम गया तो कितना जल्दी हम क्या करें ना करें, यही जानकारी हम लेना चाह रहे हैं सर जी।
0: जिस वक्त पर आपको पता लगे कि आपको मोबाइल फोन गुम हुआ है या अवेलेबल नहीं है, तुरंत सबसे पहले आपने अपने मोबाइल कंपनी को कॉल करना है और उन्हें कहना है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा है, मेरा सिम को ब्लॉक करिए, क्योंकि आपकी सिम के साथ आपके बैंक अकाउंट जुड़े हैं, ट्रांजैक्शंस जुड़े हुए हैं। तो द मोमेंट आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा उसका सीधा असर ये होगा कि कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपके साथ नहीं हो सकती। आजकल ना बहुत ये सिम स्वैप फ्रॉड्स होते हैं, आपका फ़ोन चुराते हैं, फिर आपकी नाम पर आपकी झूठी आईडी बनाकर वो डुप्लीकेट सिम ले लेते हैं। और फिर डुप्लीकेट सिम का मतलब ये होता है कि जितने सारे ओटीपीज आपके अकाउंटों में जाने हैं, आपके फ़ोन पे आने हैं, वो उनके पास आने शुरू हो जाते हैं और आपका बैंक धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। तो एक्शन तुरंत लेना है। एक बार आपने इन्फॉर्म कर दिया इस टेलीकॉम कंपनी को, उसके बाद तुरंत आप कॉल करिए 1930 पर, क्योंकि ये जो फ़ोन का चोरी करना ये भी एक दंडनीय अपराध है धारा 66B भारत के आईटी एक्ट में, और ऑफ कोर्स भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो ये चोरी के अंदर आता ही है। तो आप इसे ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ब्लॉक करवाना ज़रूरी है, और डुप्लीकेट सिम बाद में इंश्योर का ले लीजिए, इशू करा लीजिए, लेकिन कोशिश करिए कि जो कुछ करना है जल्दी करें।
1: एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश। राकेश जी क्या सवाल है आपका?
3: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई शिमला
1: जी।
3: और मेरा ये प्रश्न है, जैसे कि दिव्यांग व्यक्ति है, अगर उनसे अगर साइबर क्राइम में अगर आप गए हैं किसी कारणवश, तो वो किस तरह से जो है बच सकते हैं?
0: देखिए अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो बचने का तो एकमात्र तरीका यह है कि आपको सावधानी जो है ना अपने रोजमर्रा के जीवन में हिस्सा बनानी पड़ेगी। दूसरा, हम लोगों की मानसिकता ऐसे होती है कि साहब मैं अपने फोन पर कुछ भी करूं, कुछ गड़बड़ होगी तो सरकार की जिम्मेवारी होगी। भाई सरकार तो काम कर ही रही है, लेकिन अब हमको नागरिक होने के नाते कहीं ना कहीं आवश्यकता होगी कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें।

0: इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन फ्रॉड्स और विभिन्न प्रकार के साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना कितना आवश्यक है। याद रखिए तीन बातें। पहला, कोई भी OTP CVV पिन फोन पर मत बताइए। दूसरा, कभी भी किसी लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक मत कीजिए। और तीसरा, धोखा हो जाए तो तुरंत डायल कीजिए 1930 साइबर हेल्पलाइन। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि डिजिटल नागरिक सुरक्षित नागरिक है। आज के पब्लिक स्पीक में इतना ही। हम अपने सभी श्रोताओं का, जिन हमसे आज जुड़े हैं, और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ पवन दुग्गल जी का आभार व्यक्त करते हैं। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत सारी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और नए मुद्दे पर चर्चा के लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाले विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया से एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी है। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतेगोड़ा ने आज शपथ नहीं ली है। एक अन्य विधायक मनकला वैद्या की जगह अंतिम समय में SS मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान की आशंका है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता झाकड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। अब उनकी नज़र 2026 एशियाई खेलों में शीर्ष 10 पर अपनी जगह बनाने पर होगी। साथ ही वे 2030 राष्ट्रमंडल खेलों में भी पदक पक्का करना चाहेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by the Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbour Karnataka, was far less. A committee meeting held on the 28th of last month directed the Karnataka to release 3,500 cubics for 15 days starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today held a meeting with Uzbekistan's Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in Delhi. He highlighted that bilateral relations between India and Uzbekistan have expanded over the years and span a diverse range of domains today. Mr. Saidov also called on President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan. The IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days and in Delhi, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Ladakh, Uttar Pradesh during the next 3 to 4 days. And that is the end of this news bulletin.
1: Namaskar. आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़े, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फिर गोलीबारी की। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्धारित वार्ता के दावे के विपरीत अमेरिका के साथ जारी किसी भी वार्ता से इनकार किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। पीओजेके से मिली रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों ने आधी रात को प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए रावलकोट में गोलीबारी की। एक रिपोर्ट।
2: खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी उस समय हुई जब बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे प्रदर्शन में शामिल थे। कई महिलाएं और बच्चे पिछले 50 दिन से प्रदर्शन स्थल पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और अब ये प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की मानवाधिकार परिषद द्वारा कल तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदर्शन में 80 लोग मारे गए हैं। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक मिशनों से उपलब्ध फुटेज की जांच करने और हिंसा की तत्काल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए दबाव डालने की अपील की है। ये प्रदर्शन क्षेत्र के लोगों द्वारा बेहतर सुविधाओं और अधिक विकास की मांग के साथ शुरू हुए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही किसी बैठक की तैयारी है। ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ मध्यस्थों के जरिए बातचीत होने वाली है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर की कोशिशों से हुई बातचीत के बाद उन्होंने ईरान पर प्रस्तावित बड़े हमले को रोक दिया है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने इस दावे को गलत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोई वार्ता नहीं हो रही है और न ही कोई बैठक तय है। उन्होंने बताया कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को छोड़कर बाकी सभी वार्ताकार ईरान में हैं। बघई के अनुसार इस समय केवल ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी है। दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: रोम स्थित रूस के दूतावास ने मॉस्को के एक रेस्तरां में हुए बम विस्फोट के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। दूतावास ने इसे रूस में रह रहे इतालवी समुदाय को डराने का प्रयास बताया। दूतावास के अनुसार शनिवार रात हुए इस विस्फोट में 5 लोगों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हुए हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इस घटना को क्रूर आतंकवादी हमला बताया। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस आरोप पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों में सैन्य, ऊर्जा और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर व्यापक ड्रोन हमले किए हैं, जिनमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनकी सेना ने एंगल स्थित उस सैन्य हवाई अड्डे को निशाना बनाया जहां रूस के लंबी दूरी के बम

0: निदेशक विमान तैनात हैं। इसके अलावा सारातोव के एक तेल शोधक संयंत्र पर भी हमला किया गया। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेना ने रूस के पश्चिमी कलुगा क्षेत्र में तेल डिपो पर हमला किया, जिससे वहां आग लग गई। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। उज्बेकिस्तान गणराज्य के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडिलोविच ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री ओडिलोविच और उनके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। उन्होंने कहा कि वास्तुकला, भाषा, भोजन, संगीत और धार्मिक परंपराओं में साझा विरासत ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत किया है। दोनों देशों के हजारों अधिकारी, पेशेवर और छात्र एक दूसरे के देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंध वर्षों पुराने हैं और ये संबंध निर्माण, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव के साथ बैठक के दौरान अपने संबोधन में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में समान विचार हैं। उन्होंने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन सहित कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करते हैं। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान सरकार और जनता द्वारा आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए उठाए गए दृढ़ रुख की सराहना करता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के निवेश, उद्योग एवं व्यापार मंत्री लजीज कुदरतोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, संपर्क, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि इस बातचीत का उद्देश्य भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक आज लखनऊ में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों के साथ नीति निर्माता, विशेषज्ञ, शिक्षाविद और अन्य क्षेत्र के लोग शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता कल से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत इस BWF सुपर 300 प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। तन्वी ने कल ही समाप्त हुए ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। एक रिपोर्ट।
2: ताइपे ओपन का महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली तन्वी शर्मा अब कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। उनके अलावा अनमोल खरब, मालविका बंसोड, इशरानी बरुआ, श्रेयांशी वली शेट्टी, रक्षिता रामराज, अश्मिता चालिहा, तान्या हेमंत, आकर्षी कश्यप और मानसी सिंह भी महिला सिंगल्स दल का हिस्सा है। वही पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, थारून मन्नेपल्ली, मिथुन मंजुनाथ, रौनक चौहान और सनेत दयानंद पर नजरें होंगी, जबकि एस शंकर सुब्रमण्यम और तुषार सुवीर क्वालिफायर के रास्ते मुख्य ड्रॉ की राह तलाशेंगे। भारत ने पुरुष डबल्स में 3 और महिला डबल्स में 2 जोड़ियों को उतारा है, जबकि मिक्स डबल्स में भारत की 3 जोड़ियां मैदान में हैं। विश्व दर्पण के लिए मैं दिव्या तोमर।
0: युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का

हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, हम जिन्हें बुलाते हैं वो बेहद खास होते हैं, स्वागत है उनका जो हरदम दिल के पास होते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। वक्त हो गया है 10:31 और 19 सेकेंड। एक बार फिर से बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज हर श्रृंगार।

इंतजार तो रहता है दोस्तों, खास करके उनका जिनसे हम प्यार करते हैं, चाहे वो सच्ची मोहब्बत हो या फिर सच्चा दोस्त। और वैसे भी प्यार सिर्फ एहसास नहीं होता, वो आपके वो जज्बात होते हैं जो जब दिल से निकलते हैं तो चाहे पूरे जहान को पता चले ना चले, लेकिन जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें पता होना जरूरी है। दूसरे लोग माने या ना माने उससे फर्क नहीं पड़ता, पर जिसे आप प्यार करते हैं ना, अगर आप उन्हें बता दें और फिर उस प्यार को वो स्वीकार कर ले, तब बात बनती है, वरना दिल टूट सा जाता है।

बात पूछूं आप सभी से, क्या आपने कभी उस शांति का अनुभव किया है जब अकेलापन मन से गहरी बातें करता है, घर के किसी कोने में जब घर में कोई ना हो, आप आराम से बैठे हो, हाथ में चाय का प्याला हो और आप खुद से ही बातें कर रहे हो, क्या आपने क्या पाया और क्या खोया? दोस्तों, पाना और खोना तो किस्मत की बात है, मगर किसी को चाहते रहना तो अपने हाथ में होता है। किसी को चाहते रहने के लिए भी किसी बात, इंसान, चीज की जरूरत नहीं होती, ये काम तो खुद ब खुद हो जाता है। अगला गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज होगी, फिल्म का नाम है स्वर्ग।

जी हाँ, ये है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आज अर्पना आपके संग है हर श्रृंगार में। दोस्तों, ज्यादा तो कुछ मैं नहीं जानती मोहब्बत के बारे में, पर इतना जरूर पता है कि बस तुम सामने आते हो और तो तलाश खत्म हो जाती है। अगर ऐसा कोई आपके सामने आए और आपको लगे कि सब कुछ मिल गया उसे पाकर, तो समझिए कि आपकी खोज, आपकी तलाश पूरी हो गई। अगला गीत होगा दामिनी फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। इस गीत के बाद FM गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत संग रहूंगे आपके मैं अर्पना। 10:55 और 3 सेकेंड आप लीजिए इस गीत का आनंद, और 11 समाचार जरूर सुनिएगा। यह है आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ट्यून इन किया है आपने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक वोटों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। कर्नाटक में आज मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बेंगलुरु के लोकभवन में एक सादे समारोह में 19 विधायकों को पद की शपथ दिलाई। अब राज्य मंत्रिमंडल में 33 सदस्य हो गए हैं। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 3 जून को 13 अन्य मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया था। कांग्रेस द्वारा घोषित एकमात्र महिला विधायक गायत्री शांतिगौड़ा ने आज शपथ नहीं ली। एक अन्य विधायक मनकला वैद्य की जगह अंतिम समय में एसएस मल्लिकार्जुन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। युवा साइकिलिंग खिलाड़ी हर्षिता जाखड़ ने स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में भाग लिया। हर्षिता इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्होंने प्रतियोगिता के दूसरे चरण की औपचारिक शुरुआत में विभिन्न देशों के 8 खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Lok Sabha today passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times today amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Indrajit Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha today passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Suraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dhatia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikhabhai Rabdi of Congress with a margin of over 30,000 votes. Congress has kept the Dhatia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipoll. Voting for the bipolls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in today's three assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar expanded his cabinet today. Governor Thavarchand Gehlot administered the oath of office to 19 new ministers at a simple ceremony at Lok Bhavan in Bengaluru. D.K. Shivakumar assumed office as Chief Minister on June 3rd along with 13 other ministers. His cabinet size has now reached 33. The only woman legislator announced by All India Congress Committee, Gayatri Shanti Gowda, was not sworn in today, and another legislator, Mankala Vaidya, was replaced by S.S. Mallikarjuna at the last moment.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. Today being Monday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on your market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, listeners, do remember to prefix the Delhi STD code 011 in front of these numbers. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन. हर सोमवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधा कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें डायल कीजिए 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर. दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं, वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें श्रोताओं कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं मार्केट विशेषज्ञ शरद कोहली. शरद जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची, धन्यवाद अनुभव और सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: थैंक यू प्राची. Benchmark domestic indices rise. Sensex adds nearly 550 points. Nifty settles above 24,700. In Asian markets, South Korea's Kospi slips over 5%. And global crude oil prices tumble.
1: देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,700 पर बंद हुआ. एशियाई शेयर सूचकांकों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 5% से अधिक फिसला और दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई.
0: And before we begin the program, an important announcement. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. Prachi.
1: और श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे प्रमुख शेयर सूचकांकों ने किस तरीके का व्यवहार किया. घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख शेयर सूचकांक लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 544 अंक यानी 0.7% बढ़कर 78,639 पर बंद हुआ. निफ्टी 391 अंक यानी 1.6% की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 1.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.3% बढ़ा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड इन पॉजिटिव जोन फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे. द सेंसेक्स रोज 544 पॉइंट्स और 0.7% टू क्लोज एट 78,639. The Nifty surged 391 points or 1.6% to settle at 24,774. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index jumped 1.2% and the Small-Cap 100 Index gained 1.3%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में इंडिगो 4.2%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.5% से अधिक और इंफोसिस

0: 3.5% की बढ़ोतरी हुई। वहीं खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में सनफार्मा 2%, भारती एयरटेल और मारुति 1% और टाटा स्टील में लगभग 0.5% की गिरावट आई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors ended in positive zone. Among the top gainers, IT, as well as focused IT, advanced 2.7%, services rose 2% and industrials gained 1.3%. In contrast, hospitals lost 0.6% and healthcare dipped 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,837 companies advanced, shares of 1,552 companies declined and shares of 206 companies remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 5 पैसे मजबूत होकर 1 अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.34 रुपए पर बंद हुआ। शरद जी, हमने हम अगर आगे की बात ना भी करें कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो बाजार है उसकी चाल रहेगी, अगर हम तथापि आज की बात करें तो आज के परिदृश्य में आप किस तरीके से देखते हैं कि जो मार्केट है वो हमें क्या संदेश देना चाह रहा है निवेशकों को, खास करके जो नए तौर पर जुड़ना चाह रहे हैं?
2: देखिए, बहुत समय बाद मार्केट ने ये जो आज लेवल पे क्लोज हुआ है जिसका अभी आप जिक्र कर रही थी, तो वो लेवल बहुत समय से इंतजार था। 24,500 निफ्टी की बात करें तो 24,500 के आसपास घूम रहा था और उससे ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा था जब जब वहां जाता था। तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट से जो संदेश आया है, वॉर से ये जो एक तरह से विराम लगा है
0: जी।
2: मैं इसको ऐसे कहूंगा कि विराम की एक उम्मीद बनी है, क्योंकि पिछले 5 महीनों में ना जाने कितनी बार हम ये लगता था कि अब समझौता हो गया, अब अटैक नहीं होगा, अब होगा फिर नहीं होगा, फिर इधर से कुछ थ्रेट आता था, उधर से कोई धमकी आती थी। तो मुझे लग रहा है कि उम्मीद ये करते हैं कि थोड़ी वॉर फटीग अब जैसे आ रही है, तो अगर वॉर फटीक आ रही है तो ये वहां पर थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा और मार्केट इसी का इंतजार कर रहा है। मार्केट को देखिए, मार्केट में एक जो अनिश्चितता का माहौल बना था, और मुझे लगता है सभी लोगों को इसको जानना चाहिए, मार्केट अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, बुरी खबर को भी हजम कर जाता है, पर एक चीज जो नहीं हजम होती है वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं युद्ध कब तक चलेगा, रुकेगा कि नहीं रुकेगा और कहां तक फैलेगा, इसको लेके मार्केट अभी भी मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के चलने की जरूरत है। इसमें बहुत ज्यादा इमोशनल हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले भी पिछले 5 महीनों में ऐसा कई बार हुआ है कि युद्ध रुकने की घोषणा हुई, रुका भी रहा, पर फिर उसके बाद कुछ हो गया। तो आई थिंक अभी भी फूक फूक के पग धरने की जरूरत है, पर एक खुशखबरी जैसा आप कह रही हैं, आज बात करें तो जरूर है।
1: Of course, we will continue with this discussion, Sharadji, but before that, let me repeat the numbers. Prachi, if you'll just repeat the numbers for our listeners, where they can call us with their queries.
0: बिल्कुल श्रोताओं, आप हमें कॉल करिए, कोई भी सवाल आपके मन में हो, व्यापार, अर्थव्यवस्था या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कॉल करिए इन नंबरों पर। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106 पर। मार्केट मंत्र है ये प्रोग्राम और हमारे समक्ष जो मार्केट विशेषज्ञ हैं शरद कोहली जी, वो विराजमान हैं, तो अपना कोई भी सवाल बेधड़क पूछिए।
1: शरद जी, लेट्स गेट बैक टू द मार्केट। इफ यू लुक एट द वे द सेंसेक्स एंड द निफ्टी टुडे बिहेव्ड, सेंसेक्स रोज अबाउट 0.7%, इन कॉन्ट्रास्ट वी सॉ निफ्टी सर्जिंग 1.6%। डू यू थिंक इट हैज, एंड इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, द निफ्टी 50 जंप्ड नियरली 200 पॉइंट्स इन जस्ट 2 मिनट्स टुडे। सो इज इट समथिंग टू डू विद द न्यू यू नो दैट रूल दैट हैज कम आउट रिगार्डिंग द क्लोजर ऑफ अवर बिजनेस? If you can just explain to our listeners.
2: Yes, I think the additional 10 minutes added to the derivatives market in NSE did contribute its bit. Because let us try and understand this. Yeah. So what happens is that there is a weighted average which is calculated for half an hour, the last half an hour on the cash section. So what used to happen is that the F&O traders, you know, had to ultimately close their deals on the basis of the price final determination which happened. Now what happened was cash and F&O used to happen together. So that used to lead to a panic. So F&O traders did not get any time, sometimes they never used to get that time to settle down the prices. Now these additional 10 minutes has allowed the F&O traders to allow the cash section to close down so they can know what the price discovery is and then take a call on whether they want to carry forward the deal or they want to square it up. Yes, so because this was the first day,
1: I think happened only on the NSE.
2: on only on the NSE. Yes. So because this was the first day, Anubhav, so what has happened is that the traders were excited, they wanted to test waters. I think with the flux of time, as the days progress, you will see normalcy will return. You will not see this last minute splurges which happened today.
0: Right. Delhi se hamare saath pehle caller jud rahe hain, inka naam hai Idris. जी कार्यक्रम जी इदरीश जी कार्यक्रम में आपका अभिनंदन. कृपया अपना सवाल पूछें.
3: नमस्कार.
0: नमस्कार.
3: मैं बैंक में गया था वो नंबर लिंक करवाने खाते से.
2: हाँ जी.
3: तो मैडम का अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं ये नहीं नंबर लिंक नहीं होगा.
1: इदरीस जी आप यहाँ पर मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं और एक आपसे हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपना रेडियो प्लीज आप पीछे से बंद कर दीजिए.
3: अच्छा
1: जी. हाँ हाँ अब आप बताएं आप किस नंबर की बात कर रहे हैं.
3: खाते से नंबर लिंक करवाने गया था.
1: अच्छा जी ओके.
2: तो उन्होंने आपको कहा कि आपका मैडम का नंबर लिंक्ड है आपकी मतलब आपकी वाइफ
3: मैडम का खाता है उनका अंगूठा लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा.
2: अंगूठे वालों का नंबर लिंक नहीं होगा इसका मतलब बैंक वाले ने सिग्नेचर्स के लिए शायद इंसिस्ट किया होगा.
1: जी.
2: तो आप तो खाता आपकी वाइफ का शायद था शायद आपका.
3: हाँ,
2: नहीं होगा
3: वाइफ का है और उन्हीं का. हाँ.
2: नहीं नंबर तो उनको अगर थंब इंप्रेशन भी है तो नंबर तो उनको लिंक करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मैंडेटरी आजकल. तो इसमें इदरीस जी मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप बैंक के किसी सीनियर ऑफिसर से मिलें. आपकी हमारी आवाज वापस आ रही है फोन से तो आप प्लीज रेडियो सेट की आवाज कम करें. तो उससे आपको किसी सीनियर मैनेजर से मिलना चाहिए क्योंकि खाली थंब इंप्रेशन होने का यह मतलब नहीं है कि मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा. क्योंकि इवन आपको मैं अनुभव और प्राची को भी बताऊं कि जो बायोमेट्रिक तो आधार में भी होता है और बायोमेट्रिक आजकल फोन में भी चाहिए होता है. तो इसलिए देयर इज नो रीजन. मुझे लगता है बैंक वालों को पूरी जानकारी नहीं है. इदरीस जी आप किसी सीनियर मैनेजर से मिलिए और उनको नंबर लिंक करना ही पड़ेगा ये मैंडेटरी आज.
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल अगेन कमिंग इन फ्रॉम दिल्ली. अनिल इज ऑनलाइन विद अस. अनिल वेलकम टू मार्केट मंत्रा. प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.
4: यस मैम.
1: जी
4: कोहली साहब आई हैव अ स्मॉल क्वेश्चन रिगार्डिंग द F&O P&L टू बी सबमिटेड इन अलोंग विद द रिटर्न.
2: श्योर.
4: When we submit, we take the net debits and net credits as sales.
2: Yeah.
4: And then take out the profits.
2: Yeah.
4: Isn't it? Yes.
2: Yeah, absolutely.
4: So, but the turnover is, you say, it is high, but we are not supposed to take the actual figures of the derivative.
2: Yeah.
4: Right?
2: Yeah.
4: Only loss and profit is to be taken.
2: Absolutely. Absolutely, Anandji. You are spot on. If you take the total, then it will be very, very high. So the net profits and losses or net debits and credits are to be taken. You need not take, to make our other listeners understand with your permission, Anubha and Prachi. Because what happens is when you take a lot, suppose you're taking it in futures. So the lot size turnover may be very, very high. So that way, somebody who's made probably 30,000-40,000 rupees, he may end up showing a turnover of 60-70 crores. Yes, Anilji, your understanding is absolutely spot on and I don't need to elaborate any further because you're perfectly on track.
0: Jaipur se hamare saath Jitendra jud rahe hain. Jitendra ji, karyakram mein aapka abhinandan.
5: Thank you. Sir,
1: जितेंद्र जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है आपसे. जी आपसे दोबारा हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दोबारा अपना सवाल पूछें आराम से. जी
0: लगता है हमारा संपर्क टूट गया है. कोई बात नहीं अनुभव हम आगे बढ़ते हैं.
1: जी
0: रुक करते हैं एशिया के शेयर सूचकांकों की तरफ. एशियाई शेयर बाजार में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 5% से अधिक और जापान का निकेई सूचकांक लगभग 1% नीचे आया. जापान और अमेरिका ने जापानी मुद्रा को 40 वर्षों के निचले स्तर पर गिरने से रोकने के लिए एक समन्वित येन खरीद हस्तक्षेप की पुष्टि की है. टोक्यो ने संकेत दिया है कि यदि आवश्यक हुआ तो वह आगे भी कार्यवाही करने को तैयार हैं. जापान के वित्त मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले सप्ताह अमेरिका वित्त विभाग के समन्वय से जापानी येन की खरीद की. वित्त मंत्री कातायामा यात्सुकी ने आज एक बयान जारी कर संयुक्त हस्तक्षेप की पुष्टि की.
1: शरद जी आई लाइक टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग दैट इज हैपेंड दैट वेयर जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव कंफर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड येन बाइंग इंटरवेंशन टू हॉल्ट as Prachi just read, to halt the Japanese currency slide to 40 years low. What does it mean exactly when, you know, two countries come together and do this kind of coordinate,
2: you see,
1: like this?
2: We need to understand, Anubha, that Japan is a very close ally of the US. And it is true that the Japanese yen was collapsing, it was falling, it was sliding like anything. Although I must point out here that when a currency slides, because Japan is primarily an export driven market, so the exporters were gaining. But because of the interest rate hikes in Japan, the currency was losing value. So US, as a true ally, came to the rescue, and they started buying yen and selling dollars to stabilize the yen. But, you know, for how long this will go on is a question mark, because if they sell too many dollars, you know, it will start impacting US dollar as a currency. But for now, this has been intervened. Let's see. I'm very closely watching this particular event, because we monitor forex currency management, you know, very, very closely. And it's a very interesting alliance. You know, I wish this kind of alliance could be there with the rupee as well, but because Japanese yen is amongst the dollar index currencies, so that is why US is intervening in it.
1: So is it the first time you're looking at something like this, or this is a practice you know, which has been around?
2: No, it has happened earlier as well. Because there were a few years ago when Japanese yen, in fact, then Japan had deliberately devaluated it. We've seen China has devaluated its yuan in the past. So sometimes when you are export driven economy and your currency becomes weak, it becomes beneficial for exporters for that matter.
0: मुंबई से हमारे साथ इस बीच रत्नाकर जुड़ रहे हैं. रत्नाकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
5: हेलो, गुड इवनिंग मैडम. मेरा सवाल है कि फार्मा सेक्टर के बारे में 100% ड्यूटी लगाने की बात सुनी थी
2: जी,
5: तो वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना कैसा उचित रहेगा क्या? वैसा भी अभी आईटी सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है, आईटी सेक्टर भी बढ़ रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा? और दूसरा एक छोटा सवाल है कि मैंने 2023 में एक मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट रखा था स्टेट बैंक में, वो 1 अगस्त को अभी ड्यू होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो 26 का डिपॉजिट और 29 तक उन्होंने रिन्यू कर दिया, जो मैंने दिया ही नहीं था. तो ऐसे हालत में वो ऑटोमेटिक कैसे रिन्यू हो गया, उसके लिए
2: रत्नाकर जी, पहले आपके पहले वाले सवाल पर आते हैं. देखिए, फार्मा सेक्टर पे जो 100% टैरिफ की प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात करी है, वो 2 साल बात करी है पहले, तो अभी नहीं लगने वाले हैं. तो अभी मुझे कोई फार्मा सेक्टर में कोई खामी नहीं नजर आती, कोई कमी नहीं नजर आती. आप बहुत आराम से उसमें कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप की जब बात आती है तो दुनिया भर में अब ये चर्चा है कि वो अपने निर्णय बदल भी देते हैं, और अभी तो 2 साल बहुत दूर है. दूसरा ये भी देखना होगा कि 2028 में तो उनका टर्म ही पूरा हो रहा है, तो इसलिए उसमें फार्मा सेक्टर मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही. आप अच्छी कंपनीज का चयन करके, ऐसे ही आईटी सेक्टर में भी है जो कंपनीज अच्छी हैं, यहां हम कंपनीज का नाम नहीं लेते, पर जिन कंपनीज के नतीजे अभी अच्छे आए हैं, मुनाफा अच्छा आया है, मार्जिन अच्छे आए हैं, उनमें आप निवेश कर सकते हैं. आपका दूसरा सवाल मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट का, ये हुआ क्या होगा, जब आपने डिपॉजिट किया होगा तो उस समय इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की ऑप्शन उसमें टिक हो गई होगी, इसीलिए बैंक से वो रिन्यूअल हो गया. अब आप इसमें से निकलना चाहते हैं तो आप कभी भी निकल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. आप जब बैंक को बोलेंगे कि मैंने तो नहीं कराया था, तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं. इसमें प्रीमेच्योर एनकैशमेंट पूरी तरह से अलाउड है. आपने को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉक इन पीरियड, बैंक का कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसमें लॉक इन नहीं होता. ये पोस्ट ऑफिस में देखा जाता है जहां लॉक इन होते हैं, जहां पर आपने एक बार कर दिया तो बहुत जल्दी आप निकल नहीं सकते. तो बिल्कुल रत्नाकर जी, बैंक जाइए, और अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते, आप इसको बिल्कुल निकाल सकते हैं. कोई दिक्कत हो तो आप मार्केट मंत्र को बताइएगा, हम आपको इसको और स्पष्ट करेंगे.
1: और जो भी इनकी लास्ट डेट थी, उससे जब ये निकालेंगे तो शरद जी, जैसे कि एक कॉमन प्रैक्टिस है, उनको उतने दिन का इंटरेस्ट उनको और मिल जाएगा.
2: हाँ, पर उसमें कुछ कटौती होगी,
1: कटौती भी होगी, पर
2: उसमें थोड़ा सा पेनल्टी वो लगाते हैं, क्योंकि प्री मेच्योर माना जाता है. पर क्योंकि आप पैसा चाहते हैं, आप तो पैसा यूज करना चाहते होंगे, या कुछ और विकल्प आप ढूंढ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए.
0: देखते हैं अगला सवाल क्या है. भोपाल से शंकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. शंकर जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
6: नमस्ते शरद कोहली जी. सर, मेरा सवाल है कि थोड़ी सी मार्केट में रौनक आई है, क्योंकि ये FII का आने का सिलसिला शुरू हो गया है
2: जी.
6: तो ये अब डू यू थिंक कि अब ये ट्रंप की, और नवंबर आने वाला है, ट्रंप को थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा सा डर रहेगा उनके इलेक्शन का, तो थोड़ा स्टिमुलेट होगी हमारी मार्केट, and this will be the last time we will be seeing these levels, and we should see higher levels. Kya aapki Nifty ke bare mein guess hai for next say 2 years before Trump retires? Thank you, sir.
2: नहीं ट्रंप शंकर, पहले तो ट्रंप रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये जो इलेक्शन होता है नवंबर में ये मिड टर्म पोल्स कहलाते हैं। ये अमेरिका में दो जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होता है, वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और उसको सेनेट कहते हैं, और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 2 साल का होता है, उनका टर्म पूरा हो रहा है, सेनेट्स में भी कुछ सीट खाली हो रही है, तो वहां उसके बाद अगर मान लीजिए मेजोरिटी रिपब्लिकन्स की नहीं रहती है तो फिर उसको लेम डक प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई वो अप्रूवल नहीं ले सकते। पर आपका मूल मुद्दा ये था, मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में चला गया, आपका मूल मुद्दा था कि क्या ये रौनक रहेगी। देखिए ये अभी हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि पिछले 5 महीने से ऐसा कई दफे मौका आया जब ऐसा लगा, ये जो रौनक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि रौनक आ रही है वापस, पर जब भी रौनक आने लगती है तो फिर अब रौनक का उल्टा कुछ होता होगा तो मैं शब्द नहीं बोलना चाहता, वो होने लग जाता है वहां पर। मैं बहुत निराशावादी बात करना नहीं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ हमला हो जाता है, कहीं से कोई धमकी आ जाती है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिगड़ जाती है। तो शंकर उम्मीद तो यही करते हैं कि अब ये जो रौनक है ये टिके। वाकई हमने शुरू में बात किया 24,700 आज छुआ है, बहुत दिनों बाद ये छुआ है, 25,000 की तरफ निफ्टी की हम उम्मीद करते हैं बढ़े, पर अभी बहुत फूंक फूंक कर पग रखने की जरूरत है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि 5 महीने का अनुभव ये कहता है कि अनुभव ये कहता है अनुभव कि ये जो है अभी इस पर पूरी तरह से यकीन करना सोच समझ के
1: थोड़ा जल्दी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी।
0: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और दिल्ली से हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए। रवि जी, आप अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना सवाल पूछिए।
7: मार्केट मंत्री को नमस्कार, मैं जानना चाहूंगा जैसे जो ईरान और अमेरिका का
1: जी सवाल पूछिए प्लीज।
7: अमेरिका और ईरान का जो युद्ध विराम लग रहा है ये कब तक क्लियर होगा?
2: अमेरिका और ईरान का युद्ध विराम लग रहा है कब तक क्लियर होगा? क्लियर होगा मतलब चलता रहेगा, उम्मीद करता हूँ यही पूछ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं सर, उम्मीद पे रवि जी दुनिया कायम है, हम भी कायम है और सारी दुनिया ही ये कोशिश कर रही है, युद्ध किसी के हक में नहीं है, अभी इसी पे चर्चा चल रही है लगातार के उम्मीद करते हैं कि ये चलता रहे, हम तो यही कहेंगे। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं रवि जी ने अगर जवाब नहीं भी सुना तो बाद में मार्केट मंत्रा यूट्यूब पे भी डल जाता है, आप उस पे जवाब को कर सकते हैं, तो मैं उसको रिपीट करने से बच रहा हूं।
1: लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉल। शहनाज इज ऑनलाइन with us from Mumbai. Shehnaz, welcome to Market Mantra. Please ask your question.
8: Hi, good evening to all of you.
1: Good evening. Please.
8: Sharan ji, मुझे ये पूछना है कि मैंने आप बहुत थोड़े दिन पहले वो कर रेडियो आपको बताया था कि मेरे इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड है उसमें 18 लाख की कार दिखा रही है 26 AS में, और उसका जो 18,000 भरा भी है वो लोग ने टैक्स, राइट? इफ यू रिमेम्बर, पता नहीं, एनीवेज तो वो हिसाब से मैंने ये बार जो टैक्स किया भर दिया मैंने ऑलरेडी, तो क्या हुआ विद इन 24 आवर्स मेरे अकाउंट में 18,000 आ गए, विच इज ऑफकोर्स आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट, मैंने तो पैसे भरे भी नहीं है, तो क्या आगे चल के उसकी रिकवरी आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए आगे?
2: अगर मैं
8: मेरे 26 AS में दिखा रहा था इसलिए मैं वो तो कुछ भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल लॉस तो मुझे है ही नहीं, लेकिन जब रिटर्न फाइल किया तो दूसरे ही दिन विद इन 24 आवर्स आई रियली अप्रिशिएट द एफिशिएंसी ऑफ द टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे रिफंड आ गया। अभी दूसरी बात ये बतानी है, उसका जवाब आप देना मुझे जी।
2: शहनाज देखिए, ये ऐसा लगता है कि शहनाज यू डिड नॉट डू दैट ट्रांजैक्शन, आपने वो 18 लाख की गाड़ी नहीं खरीदी, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि गलती से पैन नंबर आपका कोट हो गया और गाड़ी आपके उसमें दिखने लगी, उसमें 1% TDS होता है 10 लाख से ऊपर की, TCS बोलते हैं उसको, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स, तो 1% का वो जमा करा, आपने रिफंड भी ले लिया। मुझे लगता है शहनाज आपको इसको वापस करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन ही नहीं है अब, क्योंकि आपके उसमें आया और आपने रिफंड, वैसे आपको कायदे से क्या करना चाहिए था कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम उसको क्लेम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपका था नहीं, तो अब हो गया है तो अब इसको वापस देने के लिए आप तैयार रहिए। मुझे उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि आजकल सब डिजिटल प्रोसेस है, वो कभी ना कभी जिसका असल में है वो व्यक्ति जब देखेगा कि मेरे में दिख नहीं रहे कहां चला गया तो पता लग जाएगा कहीं ना कहीं गया। तो शहनाज जब तक के लिए पैसे आपके पास हैं आप एंजॉय करिए, पर आप वापस देने के लिए तैयार हैं।
1: Yes, let's move on to the next story. India's manufacturing sector continued to expand in July, although the pace of growth slowed to its weakest level in nearly 5 years. According to the HSBC India Manufacturing Purchasing Managers Index PMI, released today. The seasonally adjusted manufacturing PMI eased to 53.5 in July from 54.2 in June, its lowest reading since August 2021. Despite the slowdown, the index remained above the crucial 50-point threshold that separates expansion from contraction, indicating that manufacturing activity continued to improve. The report said manufacturers continued to benefit from resilient demand, although growth in new orders, input purchases and employment moderated during the month. While domestic demand softened, export orders gained momentum, with firms reporting stronger sales to markets including Canada, Egypt, Indonesia, Kenya, Nepal, South Africa, Thailand and the UAE. Sharadji, quick comment on

11:40 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत, आपके संग है अर्पना। गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं देवानंद टीना मुनीम राखी के अभिनय से भरी हुई फिल्म की। फिल्म का नाम है लूटमार और गीत जो आप सुनेंगे उसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने, आशा है आशा भोसले की। एक बार फिर से बता दूं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, गीत मेरे मनमीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज, आनंद बख्शी के लिखे बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म हीरो से अभी आपने ये गीत सुना। अगला गीत आपको सुनाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, गीत मेरे मनमीत। तो अगला गीत जो है वो आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज है, एक बार फिर से संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत आनंद बख्शी का। फिल्म का नाम है सरगम और इसी के साथ 11:55 और 10 सेकेंड हो चुके हैं। गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत ये विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बाकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनावों में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाजपा पर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बधाई दी। नवीन ने कहा कि बांकीपुर और दतिया में भाजपा को अपेक्षित जनादेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि पार्टी इन दोनों क्षेत्रों के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक बारिश की संभावना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को अंक तालिका में 4th स्थान पर लाकर देश के खिलाड़ियों ने गौरवशाली इतिहास रचा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ये अभूतपूर्व सफलता और भी बड़ी हो गई है क्योंकि भारत अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी करने जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Lok Sabha passed the Supreme Court number of judges amendment bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court number of judges amendment bill. He said, the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times yesterday amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during the students' protest. Mr. Birla expressed concern over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha yesterday passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Datia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhika Bhai Rabadi of the Congress with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Datia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in bipole. Voting for the bipoles to the three constituencies was held on 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in yesterday's three assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in the BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. The Tamil Nadu government has approached the Supreme Court seeking directions to the Karnataka government for immediate release of the share of Kaveri water to Tamil Nadu. Tamil Nadu government alleges that the quantum allocated to it by Kaveri Water Regulation Committee, as well as that released by its neighbour Karnataka, was far less. A committee meeting held on 28th of last month directed Karnataka to release 3,500 cusecs for 15 days starting 29th of July, an order which was upheld by the Kaveri Water Management Authority later. The Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology yesterday met Meta officials in New Delhi regarding the temporary removal of Prime Minister Narendra Modi's video from Facebook. BJP MP and chairperson of the committee Nishikant Dubey criticized Meta India for removing the social media post of the Prime Minister. Talking to reporters after the meeting, Mr. Dubey said that the committee has demanded Meta CEO Mark Zuckerberg to apologize for this, and if he does not do so, then the safe harbor protection under Section 79 should be withdrawn from him. Food regulator FSSAI has prohibited Dabur India from selling many products such as honey, cow ghee and edible oil.

वक्त हुआ है 12:10, वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूँ राखी आपके साथ।

शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें फासले तो बढ़ जाते हैं मगर एहसास कभी दूर नहीं होते। आप यूं फासलों से गुजरते रहे और हम हर धड़कन में आपका नाम सुनते रहे। दूरी ने रास्ते बदले होंगे लेकिन दिल की मंजिल आज भी वही है।

रज़िया सुल्तान फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। कभी कभी दिल ऐसे ही सवाल पूछता है जिनका जवाब शब्दों में नहीं सिर्फ एहसासों में मिलता है। मोहब्बत भी शायद ऐसा ही एक सफ़र है जहां मंजिल से ज़्यादा तलाश मायने रखती है। ऐ दिले नादा आरजू क्या है, जुस्तजू क्या है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि हर उस दिल की आवाज है जो किसी अनजानी कमी, किसी अधूरे ख्वाब और किसी अनदेखी मंजिल की तलाश में भटकता रहता है।

गुलामी फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

वक्त हुआ है 12:30 और ठीक 50 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फिल्म अलग अलग से आपने गाना सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने। जब किसी का नाम ही दुआ बन जाए, मुस्कुराहट बन जाए और हर सांस के साथ चलने लगे, तब शायद यही एहसास जन्म लेता है कि तेरे नाम के सिवा कुछ याद नहीं।

तेरी मेहरबानियाँ फिल्म का गाना आपने सुना, अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत का सबसे दिलचस्प एहसास शायद इंतज़ार ही है, कभी किसी के आने का, कभी उसकी एक मुस्कान का, कभी उसके एक लफ्ज़ का। और अजीब बात ये है कि कभी कभी वो शख्स हमारे बिल्कुल पास होता है, फिर भी दिल को उसके इंतजार से फुर्सत ही नहीं मिलती।

प्रेम रोग फिल्म का गाना आपने सुना सुरेश वाटकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा अमीर गजलबाश ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अजीब है ना, दिल को सब मालूम होता है, उसे ये भी पता होता है कि कुछ रास्तों की कोई मंजिल नहीं होती, फिर भी वो उन्हीं राहों पर नजरें बिछाए बैठा रहता है।

प्यार झुकता नहीं फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। एसएच बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

वक्त हुआ है 12:58 और ठीक 4 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिय विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। दो दिवसीय ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण के अनुरूप आयोजित की जा रही है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह बैठक का उद्घाटन करेंगी। इस कार्यक्रम में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेष ज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि की भागीदारी की उम्मीद है। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। कल सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने सूचित किया कि उसने डाबर इंडिया लिमिटेड को भ्रामक 100% दावों वाले खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है, जिनमें शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिनों तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

हमीर हट फिल्म का गाना आपने सुना, मुबारक बेगम की आवाज़ में। सरस्वती कुमार दीपक ने इसे लिखा और संगीत दिया सन्मुख बाबू उपाध्याय ने। गीत सुहाने हो तो हर लम्हा कुछ और ही हसीन लगने लगता है, कुछ धुने होठों पर मुस्कान बनकर ठहर जाती हैं, तो कुछ दिल की गहराइयों में उतरकर अनकहे एहसास जगा देती हैं।

0: फरियाद फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया स्नेहल भाटकर ने। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें लफ्जों में ढालने की हिम्मत नहीं होती। हम तो बस अपने जज्बातों को दिल में संजोए बैठे थे, मगर वक्त ने हमारी खामोशी भी पढ़ ली।
1: जबर सही

जबर से हम सहे। शगुन फिल्म का गाना आपने सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कुछ रास्ते कांटों से भरे होते हैं, कुछ सफर तन्हा होते हैं, लेकिन इन्हीं सफर में हौसले की असली पहचान भी मिलती है। दर्द अगर जिंदगी का हिस्सा है तो मुस्कुराने की वजह भी कहीं ना कहीं इसी जिंदगी में छिपी है।

बाजी फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। इश्क की दुनिया में कुछ बातें जिद से नहीं प्यार से मनवाई जाती हैं। कभी एक मासूम सी गुजारिश, कभी नाज से कही गई बात, तो कभी मोहब्बत से भरी एक पुकार। यही तो इन पुराने गीतों का जादू है जो बरसों बाद भी दिल को छू जाता है।

शर्त फिल्म का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने।

वक्त हुआ है 1:30 और ठीक 52 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फिल्म जोगन का गाना आपने सुना गीता दत्त की आवाज़ में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया बुल्लो सी रानी ने।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना रफ़ी और आशा की आवाज़ में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया जयदेव ने। इस गाने को बजाने का मकसद सिर्फ इतना ही था। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अब हमें छोड़कर जाने वाले हैं, यानी कि नींद की गिरफ्त में जाने वाले हैं, तो हम आपको याद दिला दें कि अभी बहुत से प्यारे प्यारे गाने अभी बाकी हैं, तो इसलिए अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं।

0: सुजाता फिल्म का गाना आपने सुना, तलत महमूद की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया SD बर्मन ने। जब दिल किसी का हो जाता है तो आंखों में उम्मीद के छोटे छोटे दिए हर पल रोशन रहते हैं। हर आहट पर लगता है शायद वही आ रहा है। हर शाम उसकी याद का उजाला अपने साथ ले आती है।
1: चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और रफ़ी की आवाज़ में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। मोहब्बत हमेशा शोर नहीं करती, कभी कभी वो खामोशी की चादर ओढ़कर आती है, जहाँ न कोई इजहार होता है न कोई वादा, बस दो धड़कनें एक दूसरे की आहट पहचान लेती हैं।

साधना फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और रफी की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया एन दत्ता ने। दिल बड़ा अजीब मुसाफिर है, हर बार ठोकर खाने के बाद भी फिर किसी नई उम्मीद की राह पकड़ लेता है। हम उसे समझाते रहते हैं कि जरा संभल कर चल, मगर दिल है कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है।

वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 55 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल सोमवार को भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं हो सका। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा में भाग न लेने का आरोप लगाया। उधर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के संबंध में सदन में सरकार से बयान की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री राजनाथ ने कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय नागरिक सेवा दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री सिंह ने कहा कि इससे सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि वर्दीधारी और नागरिक सेवाएं दोनों ही राष्ट्र सर्वोपरि के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। जब लक्ष्य एक ही होता है तो व्यवस्था का प्रत्येक तत्व राष्ट्रीय शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिले चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाघाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर हैं, जहाँ 380 गाँव और 14,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र जलमग्न है। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है, जहां 11,066 विस्थापितों को आश्रय दिया गया है। इसके अलावा 17 राहत वितरण केंद्र भी बनाए गए हैं। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। डाक विभाग ने प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल के शताब्दी वर्ष पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस टिकट का विमोचन कल नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दाग फिल्म का गाना आपने सुना। किशोर कुमार की आवाज में साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दिल की हर बात शब्दों में नहीं ढलती, कुछ एहसास नजरों की खामोशी में पलते हैं, कुछ धड़कनों की लय में छिपे रहते हैं और कुछ बरसों तक बस एक मुस्कान के पीछे अपना ठिकाना बना लेते हैं।

आपकी कसम फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मोहब्बत की सबसे प्यारी शुरुआत अक्सर शब्दों से नहीं नजरों से होती है। एक पल की नजर, एक मासूम सी मुस्कान और दिल को खबर भी नहीं होती कि कब एहसासों का सिलसिला शुरू हो गया।

रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में संतोष आनंद ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। मोहब्बत का असली मतलब साथ निभाना है, सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि हर इम्तिहान, हर दूरी और हर मुश्किल घड़ी में भी। जो रिश्ता भरोसे की नींव पर खड़ा हो उसे समय भी कमजोर नहीं कर पाता।

मेरे जीवन साथी फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 14 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

डार्लिंग डार्लिंग फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। नजरों की भी अपनी एक जुबान होती है, कुछ बातें बिना कहे ही दिल तक पहुंच जाती हैं। कभी एक मासूम सी नजर मुस्कान बन जाती है तो कभी वही नजर दिल की धड़कनों को तेज कर देती है, और जब कोई यूं ही ठहर कर देख ले तो दिल अचानक ही गुनगुना उठता है।

0: कभी कभी फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खय्याम ने। मोहब्बत की मासूमियत, दिल की बेकरारी और किसी एक चेहरे में पूरी कायनात को देख लेने का खूबसूरत एहसास।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा फिल्म का आपने गीत सुना रफ़ी और लता की आवाज़ में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। कितना प्यारा सा चुलबुला और दिल को छू लेने वाला नगमा, जिसमें छेड़छाड़ भी है, अपनापन भी और इजहारे मोहब्बत की मीठी सी आहट भी।

मंजिल फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। बारिश की बूंदों में एक अजीब सी जादूगरी होती है। ये सिर्फ धरती को ही नहीं भिगोती बल्कि दिल के उन एहसासों को भी जगा देती है जो अक्सर लफ्जों में नहीं ढल पाते।

0: खुद से।
1: शर्मीली फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में, नीरज ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 2:56 और ठीक 28 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही अर्चना सचदेवा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। श्री किशोर ने भाजपा के नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रही। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। उन्होंने कहा, भारत उज्बेकिस्तान सरकार और वहां की जनता द्वारा आतंकवाद के हर रूप और अभिव्यक्ति से निपटने के लिए उठाए गए कड़े रुख की सराहना करता है। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वे विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब ₹25.50 प्रति लीटर होगा, जबकि ATF पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर ₹22 प्रति लीटर कर दिया गया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर बसा के देखो। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना, किनारों को जैसी लहरों की आस होती है, किनारों को जैसी लहरों की आस होती है, अंधेरी रातों को जैसे दिए की तलाश होती है। प्यार तो बहुत देखा है इस दुनिया में हमने, पर तेरे प्यार में जो बात है वो सबसे खास होती है।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म वो कौन थी से ये गीत आपने अभी सुना। कभी लफ्जों में बयां हो तो वो बात क्या, कभी लफ्जों में बयां हो तो वो बात क्या, अगर प्यार नजरों से ना छलके तो वो रात क्या। जो खामोशी को भी चुपचाप समझ ले, उस सच्चे हमसफर के आगे फिर कायनात क्या।

सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज में फिल्म साथी से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही कार्यक्रम में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में।

दोस्तों, जब दो दिल एक दूसरे के होते हैं तो वो सिर्फ प्यार ही नहीं करते बल्कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम भी खाते हैं। और वादा, वादा तो मोहब्बत की वो डोर है जो दो रूहों को हमेशा के लिए बांध देती है। आइए सुनते हैं हाथ की सफाई फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लीडर से अभी आपने गीत सुना। सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है, सपनों की दुनिया भी कितनी अजीब होती है, पलकों के बंद होते ही हर आरजू करीब होती है। यूं तो हर रंग से सजी है जिंदगी की राहें, पर तेरे संग देखे सपनों की बात ही अलग होती है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड से ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शिकारी से अभी ये गीत आपने सुना। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि कल को जुदाई सहना मुश्किल हो जाए। ये दिल तो नादान है, समझता नहीं कुछ, कहीं तेरी आदत ही मेरी कमजोरी न बन जाएगी।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज में फिल्म छाया से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और बातिश, सुधा मल्होत्रा की आवाज में, बरसात की रात से।

दोस्तों, अब जाने का समय नज़दीक आ गया है और हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूँगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हरा दिया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। ये सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। बुधवार सुबह आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा नीति वक्तव्य जारी किए जाने की संभावना है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वो विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्त बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। इससे पहले चक्रवर्ती पर्यवेक्षण विभाग में मुख्य महाप्रबंधक का प्रभार संभाल रही थी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में संशोधन किया है। सरकार ने अगले पखवाड़े के लिए नई दरें अधिसूचित करते हुए कहा कि डीजल पर निर्यात शुल्क अब 25 रुपये और 50 पैसे प्रति लीटर होगा, जबकि एटीएफ पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 22 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क बढ़ाकर 3 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें आज से प्रभावी हो गई हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हुई। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि पहला चरण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्त्रीकरण का होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the apex court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in that ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times yesterday amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla expressed concerns over the deliberate disruptions by some opposition members. Minister of Statistics and Program Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers Books Evidence Bill 2026. The Rajya Sabha yesterday passed the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill amid ruckus. The bill aims to further amend the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006. It aims to address payment delays and simplify dispute resolution. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Banjalpur in Gujarat and Congress has kept Tatiya constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. RJD candidate Rekha Kumari finished third with 14,273 votes and forfeited her security deposit. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival, Bhikabhai Rabari of the Congress, with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Datia seat in Madhya Pradesh, with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival, Ashutosh Tiwari of the BJP, by over 6,000 votes in by-poll. Voting for the by-polls to the three constituencies was held on the 30th of last month. Bharatiya Janata Party National President Nitin Naveen has said that the party accepts the mandate received in yesterday's three assembly by-elections. In a social media post, he expressed gratitude to the people of Manjalpur Assembly constituency in Gujarat for expressing their faith in BJP. He extended congratulations to all the dedicated workers and office bearers of the BJP for this victory. The central government has revised the special additional excise duty on exports of petrol, diesel and aviation turbine fuel, ATF. The government has notified the new rates, saying that the export duty on diesel will now be 25.5 rupees per litre, including 1.5 rupees road and infrastructure cess, while the exports duty on ATF has been raised to 22 rupees per litre. Meanwhile, the export duty on petrol has been increased to 3.5 rupees per litre. The revised rates notified by the Finance Ministry came into effect from yesterday. However, there is no change in the existing excise duty on petrol and diesel meant for domestic consumption. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian athletes have scripted joyous history by making India the fourth highest medal-winning nation at the Glasgow Commonwealth Games 2026. In a social media post, Mr. Shah said that this meteoric success scales to an even greater height as India now officially takes over as the proud host nation of the CWG 2030 to be held in Ahmedabad. The minister congratulated every athlete and all citizens on this moment of double delight. He said India takes a bow in Glasgow and assumes charge of Ahmedabad 2030 Commonwealth Games. And the India Meteorological Department IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Assam, Meghalaya, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till today. Heavy rainfall is also expected in Arunachal Pradesh, Nagaland and Bihar over the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
3: 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अरुणिमा।

सुबह के 4:11 और 15 सेकंड हुए हैं। अरुणिमा कार्यक्रम में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और एक विश्वास भी होता है कि जिंदगी और सुहानी और आनंदमयी हो जाएगी।

येसुदास की आवाज़ में फिल्म अय्याश से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो वो काम जल्दी भी हो जाता है और उसे करने में बहुत आनंद भी आता है, और आपने देखा होगा कि उसमें थकान भी नहीं होती है। इसलिए एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ते रहिए। आइए सुनते हैं नया दौर फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

दोस्तों, ये जिंदगी भी एक पहेली ही है जिसका उत्तर हमें जल्दी से समझ ही नहीं आता। कभी ये हमें हंसाती है और कभी रुलाती है, पर फिर भी हिम्मत रखकर हमेशा आगे बढ़ते रहिए और कोशिश कीजिए कि हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी बढ़िया से बीत जाए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म आनंद से ये गीत।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अरुणिमा में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं, चांदनी फिल्म से सुरेश वाडेकर और अनुपमा देश पांडे की आवाज़ में।

दोस्तों, आजकल के माहौल में अब ऐसा लगता है कि जैसे सीधे साधे इंसानों का इस दुनिया में कोई काम ही नहीं है। उनको तो सब मूर्ख बनाकर आगे चल पड़ते हैं। पर दोस्तों, देखा जाए तो जो थोड़ी बहुत इंसानियत बची है वो उन्हीं लोगों से ही है। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म तू नहीं और सही से ये गीत।

0: लगता है कोई आया।
1: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब, नहा रहे हैं।

बिल्कुल दोस्तों, गाना आए या ना आए पर फिर भी गाने की कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। अभी आपने गीत सुना पति पत्नी और वो फिल्म से, आशा भोसले सुषमा श्रेष्ठा और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। दोस्तों, आजकल के समय में पैसा सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, पर ये ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा हम पैसे के पीछे भागेंगे उतना ही अपनों से दूर होते चले जाएंगे। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म लावारिस से ये गीत।

0: मन्ना डे की आवाज़ में दिल की राहें फिल्म से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जब सुरों की वर्णमाला से प्यार का नगमा बनता है तो दिल झूम उठता है। आइए सुनते हैं फिल्म अभिनेत्री के इस सुरीले गीत के साथ सुर में सुर मिलाते हुए सारे गामा पा।
1: हसो मत, बोलो

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म अभिनेत्री से ये गीत आपने सुना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म सौतन से।

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक, और कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।
1: आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्यायिक क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने के उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित अन्य न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 किए जाने का प्रावधान किया गया है।
0: राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को दिए गए बकाया ऋण में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर से जीत ली है। उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,000 से अधिक मतों से हराया। उधर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट जीत ली है। यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और 1995 से पार्टी कभी भी इस सीट से नहीं हारी थी। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। उपचुनाव में पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा के आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक मतों से हराया। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति के जोखिमों के बीच भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा कल नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रा स्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई द्वारा सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। रिजर्व बैंक ने जून में अपनी प्रमुख नीतिगत रेपो को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा था। रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय में और वित्तीय बाजार नियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य की 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित शिवसागर जिले में कल बाढ़ से 2 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता ईरान के लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने उम्मीद व्यक्त की कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पहला चरण होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलना है, जबकि दूसरा चरण परमाणु निरस्तरीकरण होगा और इसमें थोड़ा समय लगेगा। गजा में युद्ध के बाद के बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्तरीकरण समझौते पर चर्चा करना था। शांति बोर्ड ने एक बयान में कहा कि गजा के उच्च प्रतिनिधि निकोले म्लादेन्यू ने प्रधानमंत्री और उनकी टीम के साथ रचनात्मक और विस्तृत बातचीत की। बयान में कहा गया है कि लक्ष्य स्पष्ट है और इस पर कोई संदेह नहीं है कि गजा पट्टी में हथियारों का पूर्ण निरस्तरीकरण और बंदूक के शासन का अंत होगा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। यह 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। The Lok Sabha passed the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. The bill aims to increase the number of judges of the Apex Court from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. In May this year, President Draupadi Murmu had promulgated an ordinance in this regard. Union Minister of Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill. He said the bill is an important step in the ongoing reform process within the judicial sector. The Lok Sabha was adjourned several times amid protests by opposition parties over several issues. Earlier, when the House began its proceedings at 11 a.m., Speaker Om Birla congratulated the athletes for their outstanding performance at the 23rd Commonwealth Games at Glasgow. After that, Mr. Birla tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Minister of Statistics and Programme Implementation Rao Inderjeet Singh introduced the Indian Statistical Institute Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Bankers' Books Evidence Bill 2026. In assembly by-elections, Jan Swaraj leader Prashant Kishore has won the Bankipur seat in Bihar, while BJP has retained Manjalpur in Gujarat and Congress has kept Dathia constituency in Madhya Pradesh. Prashant Kishore defeated BJP candidate Neeraj Kumar by a margin of 19,324 votes, securing 64,151 votes. In Gujarat, BJP candidate Satish Patel defeated his nearest rival Bhikabhai Rabari of the Congress with a margin of over 30,000 votes. The Congress has kept the Dathia seat in Madhya Pradesh with the party candidate Ghanshyam Singh defeating his nearest rival Ashutosh Tiwari of the BJP by over 6,000 votes in by-poll. Voting for the by-polls to the three constituencies was held on the 30th of last month. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar held talks with Uzbekistan Foreign Minister Bakhtiyor Saidov in Delhi yesterday. Both ministers undertook a detailed review of the strategic partnership with particular focus on energy, infrastructure, trade, defence, education and culture. Union Home Minister Amit Shah has said that Indian

सुबह के 5:11 और 10 सेकंड हुए हैं। भोर सुहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, एक सुबह का समय ही ऐसा है जब हम शांतिपूर्वक भजन सिमरन कर सकते हैं, बाकी पूरा दिन तो भागदौड़ में ही बीत जाता है। तो आइए इस शांत माहौल में कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से भजन से, जो गाया है सुराज सिंह ने।

दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर फिर भी हम फालतू की चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसा होगा।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सूरज और चंदा से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, किसी का साथ होना बहुत ही अच्छी बात है, पर किसी के साथ पर डिपेंड हो जाना वो गलत है। अगर कोई साथ नहीं भी है तो अकेले चलना सीखिए, क्योंकि ये तो हम सबको ही पता है कि अकेले आए हैं और अकेले जाना है। संबंध फिल्म से आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में ये गीत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म पेइंग गेस्ट से।

दोस्तों, हमारी जिंदगी अपने ही परिवार के कार्यों में ही बीत जाती है, उसी में हम पूरा दिन लगा देते हैं। पर दोस्तों, जीना तो वो है जब हम दूसरे के लिए जीते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म बादल से ये गीत।